100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 9 जून 2026 दिन मंगलवार प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि शक संवत 1948, तदनुसार 9 जून 2026 दिन मंगलवार, प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

भोर की पहली किरण जब मंदिर की घंटियों से टकराती है तो मन खुद ब खुद उस असीम शक्ति की ओर खिंचा चला जाता है। नमस्कार, मैं हूँ स्वेच्छा और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है पुष्पांजलि। यहाँ शुरू की खुशबू है और श्रद्धा के फूल। तो आइए अगले कुछ पलों के लिए खो जाते हैं भक्ति के इस पावन सागर में।

किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम बिना अधूरी है, जो विघ्न हरता है, बुद्धि के सागर हैं। और हम सबसे पहले नमन कर रहे हैं रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी को।

एक तरफ अनंत वैराग्य और दूसरी तरफ अटूट शक्ति। शिव और शक्ति का मिलन ही इस सृष्टि का आधार है। जहां महादेव का मौन है, वहीं मां पार्वती की ममता और दृढ़ता। आइए चलते हैं उस पावन पर्वत की ओर, जहां गूंजता है नमः शिवाय का स्वर।

जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का और माता सीता का नाम लेते हैं तो याद आता है धैर्य, त्याग और अटूट विश्वास। एक ऐसा रिश्ता जिसने युगों युगों को जीवन जीने की कला सिखाई।

राम जी का नाम आए और हम हनुमान जी का कोई प्रसंग ना बताएं। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी कामयाबियों पर अहंकार करने लगते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कला भी सच्चे प्रेम और सरलता के सामने छोटी पड़ जाती है। और ऐसा ही एक प्रसंग है हनुमद रामायण का। एक बार महर्षि वाल्मीकि जी हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पहाड़ों की चट्टानों पर एक अद्भुत रामायण लिखी थी। वो रामायण इतनी सुंदर और भावुक थी कि उसे पढ़कर वाल्मीकि जी रो पड़े। उन्हें उदास देखकर हनुमान जी ने इस बात का कारण पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान, तुम्हारी लिखी ये राम कथा इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि इसके सामने मेरे रामायण को तो कोई पूछेगा ही नहीं। मेरी बरसों की मेहनत बेकार हो जाएगी। वाल्मीकि जी को उदास देखकर हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, मैंने यह रामायण किसी नाम या तारीफ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने प्रभु राम जी के प्रेम में लिखी थी। अगर इसे देखकर आप दुखी हैं तो मुझे इसकी कोई चाह नहीं। और ये कहकर हनुमान जी ने अपने लिखे हुए इस सर्वश्रेष्ठ रामायण को समुद्र की लहरों में विसर्जित कर दिया। हनुमान जी सिखाते हैं कि जब आप कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो आपको वाहवाही की जरूरत नहीं होती। जिनके पास असीमित हुनर हो वही जब सबसे ज्यादा सरल और विनीत बन जाते हैं तो वो भगवान के दिल में बस जाते हैं। तो अगली बार जब अपने हुनर पर थोड़ा सा भी घमंड आने लगे ना, तो हनुमान जी के इस त्याग को याद कर लीजिएगा। रिश्तों की खुशी किसी भी कामयाबी से बहुत ऊपर होती है।

6:44 का वक्त और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम पुष्पांजलि, आज स्वेच्छा के साथ। भक्ति केवल पूजा का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सरल और सकारात्मक बनाने का मार्ग है। जब मन अशांत होता है तो भक्ति शांति देती है, और जब जीवन उलझता है तो प्रभु हमें मार्ग दिखाते हैं।

बिना कृष्ण के राधा अधूरी है और बिना राधा के कृष्ण का नाम पूरा नहीं होता। ये प्रेम नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जहां बांसुरी की धुन है और निस्वार्थ समर्पण की पराकाष्ठा।

आज की पुष्पांजलि के भजन आपके दिन को एक नई ऊर्जा और शांति देंगे। आज के लिए बस इतना ही। न्यूज ब्रेक के उस पार मिलेंगे हम कार्यक्रम सदाबहार गीत के साथ। तब तक मंगलवार का पावन दिन, ज्येष्ठ माह का महीना और हनुमान जी का ये प्यारा सा भजन आप सभी के लिए।

तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वस्त्र क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप व्यापक कौशल विकास कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उद्योगों को समय पर प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। कौशल विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य केवल प्रशिक्षण तक सीमित न होकर युवाओं को रोजगार और आजीविका से जोड़ना होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल सम्पन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में 10 जून तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा दो पालियों में राज्य के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश गतिविधियों और शहरीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित, उत्तरदायी और जन सुविधा केंद्रित बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उपनिबंधक कार्यालयों को चरणबद्ध ढंग से पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा और असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

नमस्कार सुप्रभात, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं स्वेच्छा। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है सदाबहार की, और कहते हैं वक्त पंख लगा कर उड़ जाता है, लेकिन कुछ धुने ऐसी होती हैं जो वक्त को वहीं रोक देती हैं। आज के इस सुहाने सफर में हम यादों की धूल झाड़ेंगे और नगमों को गुनगुनाएंगे जिन्होंने कल भी दिल जीता था और आज भी धड़कन में बसे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की।

खबर। प्यार कितना छोटा सा लफ्ज है ना, लेकिन जब ये किसी से होता है तो पूरी कायनात का रंग बदल सा जाता है। धूप मध्यम लगने लगती है और हवाओं में एक साज बजने लगता है। पुराने गानों की यही तो खासियत है, इनमें इश्क की वो सादगी है जो

0: कहानियां सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

रेडियो की ये सुइयां जब पुराने गानों से टकराती हैं तो मानो एक टाइम मशीन चल पड़ती है। हम लौट जाते हैं उस दौर में जहां खत लिखे जाते थे, जहां नजरों से बातें होती थी और जहां इंतजार में भी एक अलग ही मजा था। तो आई हम गुजरे जमाने के उस सादगी की सैर पर चलें इस अगले सदाबहार गीत के साथ।

हवाओं में एक अलग सी ताजगी और सूरज की किरणें जब खिड़की से झांक कर पूछती है ना कि कोई पुराना गाना नहीं बजेगा क्या, तो सुबह की चाय और इन गीतों के साथ एक बेहतरीन शुरुआत हो जाती है। तो आइए अपने इस अगले गाने का लुत्फ उठाएं अपनी चाय की चुस्की के साथ, मोहम्मद रफी जी की आवाज़।

सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

7:38 का वक्त और मैं हूं स्वेच्छा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। रेट्रो गानों की एक जादुई ताकत होती है, ये हमें उस दौर में ले जाते हैं जहां बचपन की गलियां थी और अपने अपनों का बेपनाह प्यार। रेडियो पर बजता ये गाना शायद हमें किसी पुराने दोस्त, किसी अपने की याद से मिला देते हैं।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा।

पहले की बात करें तो लोगों के पास साधन कम थे पर जुड़ाव ज्यादा था। आज हमारे पास दुनिया भर की सुविधाएं हैं, लेकिन हम अक्सर उन पुराने दौर के सुकून को कहीं ढूंढते रहते हैं। इसलिए जब रेडियो पर कोई पुराना गाना बजता है ना, तो वो सिर्फ संगीत नहीं होता, वो हमें उस मासूम दुनिया की सैर करा देता है जहाँ खुशियाँ महंगी नहीं थी, बस सच्ची हुआ करती थी।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

7:55 का वक्त हो गया है और मैं स्वेच्छ आप सभी से अब इजाजत लेती हूँ कार्यक्रम गुड सदाबहार गीत से और गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में हम जल्द मिलेंगे ठीक 8:15 बजे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ है। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार हिंदी में जो कि रिले किए जाएंगे हमारे

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा।

0: मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार, मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं

0: इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत

0: और श्रीलंका एक क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: याहो ट्रैफिक का हाल,
1: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
2: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
3: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, 8:16 का वक्त, गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और आपके दो दोस्त हाजिर हो चुके हैं। मैं हूँ स्वेच्छा और हमारे साथ हैं,
4: जी हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को, आकांक्षा है आपके बीच और सुबह से आप शिक्षा के साथ जुड़े थे बहुत बेहतरीन सॉन्ग्स के साथ, बेहतरीन सी आवाज, लेकिन अब इस एंटरटेनमेंट की डोज को और बढ़ाने का वक्त है क्योंकि प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग
2: लखनऊ
4: लखनऊ। और शिक्षा आज बहुत कुछ खास है
2: जी,
4: क्योंकि भाई आज तो सोनम कपूर का भी बर्थडे है, हैप्पी वाला बर्थडे, और इसी के साथ आज अमीषा पटेल का भी बर्थडे है। बहुत सी यादें जुड़ी हैं इन सारी एक्ट्रेसेस से। वेल सोनम कपूर तो आज के दौर की हैं, अमीषा पटेल भी आज भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो सॉन्ग्स अमीषा पटेल के थे और भी बहुत स्पेशल डेज प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और एंजॉय करते रहें ये बेहतरीन सा प्रोग्राम।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो

0: सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र। जी 8:24 और एक थॉट जो आपके दिन को बना दी है खूबसूरत पॉजिटिव, तो आज का जानते हैं क्या है मॉर्निंग मंत्र।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र हमसे कह रहा है कि एक वृक्ष की सुंदरता उसकी फूल और पत्ती पर निर्भर करती है, वैसे ही उसी प्रकार एक व्यक्ति की सुंदरता उसके चरित्र और व्यवहार पर निर्भर करती है।
0: बिल्कुल, अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं या चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें या चाहते हैं कि आप जिससे भी मिले उसको ये फील हो कि भाई इस इंसान की वाइब्स बड़ी अच्छी हैं, तो हमेशा कद्र करिए अपने नेचर को, अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए, ताकि छोटा हो या बड़ा, कोई आपसे कमज़ोर हो या ताकतवर, उसको ये एहसास ना हो कि आप कैसे हैं। आप सबके लिए सेम हैं, सबके लिए एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, जैसे प्रकृति सबको बराबर बांटती है।

0: जी हाँ, हर चीज गाती है, गुनगुनाती है, और अगर वो प्रकृति से जुड़ी है, नेचर से जुड़ी है, तो बेशक आप एक मधुर संगीत, कहते ना जीवन संगीत है ना, उसी तरह से ये प्यारा सा ट्रैक जिसमें हर किसी की धुन बताई, हर जीव हो या पत्तियां हो या झरने हो, हर चीज अपना म्यूजिक, अपना गीत गुनगुनाती है।
1: बिल्कुल, और हर चीज में कहते हैं ना फीलिंग होती है, हमारी कोई चीज है, हमारी कोई वस्तु है या फिर जो पशु पक्षी है, इनमें तो होती ही है। और इसी से रिलेटेड एक बहुत खास दिन है आज, और हम मना रहे हैं वर्ल्ड पेट मेमोरियल डे, यानी कि विश्व पशु स्मृति दिवस। और इस दिन को हम मनाते हैं दूसरे मंगलवार को जून महीने के। और ये दिन बहुत खास है क्योंकि ये जो जानवर हैं, जो पशु हैं और जिनको हम पालते हैं, खासकर उनसे एक हमारा खास रिश्ता बन जाता है।
0: जी हाँ, रिश्ता बन जाता है और काफ़ी अटैचमेंट भी हो जाता है जिनके घर में पेट्स हैं, किसी भी तरह का पेट हो, और आप जब उसके साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब आप परेशान होते हैं, आपको कोई ज़रूरत होती है या फिर आप खुश होते हैं, तो आपकी फीलिंग्स के साथ इक्वली वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपको एंटरटेन भी करते हैं, आपकी टेंशन को दूर करते हैं। तो इतनी ढेर सारी जब यादें बन जाती हैं ना किसी के साथ, तो शिक्षा कभी ना कभी हम सबको पता है कि वो कोई भी है जो यहाँ पर आता है वो छोड़ के एक ना एक दिन जाता है। तो जब ऐसा कोई हमारे बीच नहीं रहता, बेजुबान थे लेकिन हमसे हर तरह की बातें वो हमारी समझते थे, तो जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं किसी न किसी कारण, तो आज का दिन यही समर्पित है कि आज है वर्ल्ड पेट मेमोरियल डे। तो आज का मुद्दा भी हम कुछ ऐसे ही शिक्षा अपने लिसनर्स से पूछना चाहेंगे कि देखिए, बहुत से रिश्तों की बातें तो हम करते हैं कि भाई आपकी अजीज दोस्त कौन था, फ्रेंड कौन है, कौन सा ऐसा रिलेशंस है जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन आज बात होगी बेजुबानों की।
1: जी,
0: तो आज का मुद्दा कुछ ऐसा।
2: मुद्दा आज का,
1: बिल्कुल आज का मुद्दा हमारा यही है कि ऐसे कौन से आपके पेट थे, जो थे हम इसलिए बोले क्योंकि उनके मेमोरी का ये दिन है, उनके मेमोरी को याद करने का ये दिन है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा पशु था, कोई ऐसा पेट एनिमल था जिससे आपका बहुत अटैचमेंट था, आप उससे जुड़ गए थे, और उसके जाने के बाद कैसी फीलिंग रही, कैसे आप उसे आज भी याद करते हैं, आपको ये बताना है।
0: बिल्कुल, शिक्षा कहना चाहती है कि कौन सी ऐसी प्यारी सी खूबसूरत सी यादें, क्योंकि बेजुबान होके भी वो गई जिंदगी के हमें सबक देख जाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी वो खूबसूरत यादें थी आपके पेट के साथ, हमसे शेयर करिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: जी हाँ, जब आपका कोई ऐसा पेट या फिर कोई ऐसा एनिमल आपसे जुड़ जाता है, आप कहें ना शिक्षा, जब वो घर के बाहर भी आते हैं, ऐसे कोई कई जानवर आते हैं कि जब आप सिर्फ खाना डाल देते हो, चिड़ियों को आप सिर्फ दाना डाल देते हो, एक दिन दो दिन आप ये करते हो, अगले दिन मतलब हर दिन वो दिखाई देते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर जानवर को हम घर में रखें, किसी पिंजड़े में कैद करके रखें। प्यार ऐसी चीज है ना जो आपस में एक दूसरे को बांध देती है।
1: जी, स्वतंत्र भाव से जब हम प्यार करते हैं ना, तो वो कनेक्शन और भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। फिलहाल हमने ये मुद्दा आपको दिया है, आपको एक बड़ी खूबसूरत सी याद हमारे साथ शेयर करनी है हमारे मेल आईडी पर fmakashwanilakhnow@gmail.com। और अब आपको थोड़ी आपके शहर से जुड़ी और आपके काम की खबरों को बता देते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए शिक्षा, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ साथ टेक्निकल चेंजेस के साथ साथ बहुत से रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें नई टेक्निक्स लानी है। तो इन्वेंशन पे इन्वेंशन और ऐसे खूबसूरत इन्वेंशंस के बारे में हम लोगों को बताएं तो बेहतरीन होता है। आपको भी बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बहुत ही अच्छी चीज़ इन्वेंट करी है, ई नोज। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ई नोज क्या है, तो आपको बता दें कि जैसे कि घरों में आजकल गैस लीकेज है या फिर कोई आपकी फ्रिज की गैस लीक हो रही है, एसी की गैस लीक हो रही है, साथ ही साथ जब कार ड्राइविंग में ऐसी बात होती है कि लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए ई नोज लाई गई है जो कि फटाक से पता चला, पहले ही सूचित कर देगी। अगर हल्की सी स्मेल भी आएगी तो पहले ही बता देगी कि भाई ये रिस्क है और आप सतर्क हो जाएं।
1: जैसे बीच में आया था ना, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दीजिए, तो वो एक इलेक्ट्रिक सिस्टम था। अब ये भी इलेक्ट्रिक एक तरीका है और ये बहुत से ऐसे घरों को बचाएगा जहाँ पे बड़ा सा बड़ा हादसा टलने से बचाएगा।
0: बिल्कुल, आपको पता है शिक्षा, सबसे अच्छी चीज है कि आपके हाथ में सबसे ज्यादा पूरे दिन आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं?
1: मोबाइल फोन।
0: तो ये सारे

0: अलार्म जब आपके घर, अगर घर में गैस लीकेज हो रहा है या किसी भी तरह की गैस लीकेज हो रही है, तो ये सारे अलार्म आपके फोन पे पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी, बहुत अच्छी चीज़ों, कहते हैं ना, बहुत अच्छा इन्वेंशन एक हुआ है हर किसी के लिए जो आप तक बहुत सही समय पर पहुंचा देगी खबर को। एक और खबर ये है कि जो नर्सिंग प्रवेश परीक्षा हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, उसकी उत्तर कुंजी जो है वो कल जारी कर दी गई है, और इसका आप मिलान इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, abvmuup.edu.in पर। साथ ही एक और काम की खबर यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2025-26 में जो PhD पार्ट टाइम प्रवेश प्रक्रिया के बायोमेट्रिक और एजुकेशन विषय के लिए प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, तो ये भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये खास खबरें के साथ थी स्वेच्छा, और भी बहुत ढेर सारे इन्वेंशंस के साथ हमने आपको बताया कि भाई क्या क्या हो रहा है अच्छी चीजें। तो हम जैसे कहते हैं ना, स्वेच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं है और समझ में नहीं आता क्या करें, लेकिन ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का स्कोप है। तो इस तरह से सोचिए, और सोचिए आज के मुद्दे पर भी कि भाई ऐसी कौन सी खूबसूरत सी यादें हैं, या फिर ऐसा कोई सबक आपको बेजुबानों से मिला हो जो आपसे कनेक्ट था कभी, तो हमसे शेयर करिए, क्योंकि आज का मुद्दा यही है कि बेजुबानों से आपकी जो खूबसूरत यादें हैं उनको शेयर करना है, और यहाँ की जो मटरगश्ती है वो तो चलती रहेगी।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर।
1: जी हाँ, 8:48 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। स्वेक्षा और आकांक्षा है आपके साथ।
2: और अब बारी है आप सभी के मेल्स की। भाई सुबह से आप सभी ने जो इतने सारे इतने प्यारे प्यारे मेल्स हमें किए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। तेज बहादुर यादव जी हमें सुबह पुष्पांजलि कार्यक्रम में मेल करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम और सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मऊ गाँव मऊ शर्की जिला रायबरेली से ये रहने वाले और गुरुग्राम हरियाणा से हमें सुन रहे हैं हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप से। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है, हरियाणा से एक और मेल आया है हमारे पास। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग आपको भी। संतोष हमें मेल कर रहे हैं और थैंक यू सो मच। अगर आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आगे भी ऐसे एंजॉय करते रहे। सुधांशु भी कुछ हमें कह रहे हैं,
2: कार्यक्रम सदाबहार गीत के गाने बहुत अच्छे लगे और पुष्पांजलि भी अच्छा लगा। सुबह 5:55 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बख्शी का तालाब से।
1: अच्छा सुरक्षा, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही मेहनत करते हैं, बल्कि हमारे
2: लिसनर्स जो है वो ज्यादा मेहनत करते हैं हमें सुनने के लिए, इतने सुबह सुबह उठ जाते हैं। और बाकी यही सबसे बड़ा हम लोगों के लिए कहते हैं रिटर्न गिफ्ट जैसा होता है कि आप हमें सुनते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल। रामराज भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर रहे हैं प्रोग्राम के बारे में और कुछ नाम इन्होंने लिए हैं। सदाबहार गीत प्रोग्राम की तारीफ करी है, रायबरेली से हमें मेल कर रहे हैं। रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु बजरंगी, मिर्जा, इमरान बेग, सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद दिया है। थैंक यू सो मच। रोज सुनते हैं और कह रहे हैं भाई मेरा मेल शामिल कर लीजिए तो बहुत कृपा होगी। कृपा करने की बिल्कुल बात नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है कि आपके मेल्स आए तो हमें शामिल करना है। राममोहन गुप्ता जी का भी हमारे पास मेल आया
2: है, लिखते हैं
1: ढेर सारी कविताओं के साथ,
2: अपनी पंक्तियों में पूरी बात कह जाते हैं। पुराने समय और आज के समय की करके बात, स्वेच्छा ने लेजर विराम की जल्द मिलने की बात, सदाबहार गीतों में मधुर नगमों को खूब सुनाकर बताया फिर मिलेंगी, गुड मॉर्निंग लखनऊ में आकर जाने से कुछ पहले भली भांति हम सबको बताया, पहले मिल बैठे बैठ करते थे बात, अब ऐसा वक्त आया खोए रहते हैं खुद में ही साथ, बैठे रहकर भी दूरी, कैसा आया जमाना, बातचीत का वक्त है ही नहीं, ऐसे में बहुत जरूरी कुछ वक्त अपने लिए निकालें, कहें सुने कि दूजे की दिखावे का अपनापन ना पालें। राममोहन गुप्त अमर लखीमपुर खीरे से बहुत खूबसूरत मेल हमें कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, आपकी ये मेहनत है ना, हम तो

0: वहाँ पे बस हमारे पास मेल आता है, हम पढ़ देते हैं फटाफट. लेकिन ये लगता है कि कितनी मेहनत से आप टाइप करते हैं, कहीं ऐसी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको लगता है कि भाई ये आरजे को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी. तो थैंक यू सो मच मेल करने के लिए. शक्ति वाजपेयी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं. गुड मॉर्निंग आपको भी शक्ति जी, और हम दोनों बढ़िया हैं. फैजुल्लागंज लखनऊ से आप हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बात मेरी शादी से पहले 2011 की है. मेरे पास एक कुत्ता था जो मेरे बिना एक मिनट नहीं रहता था. मैं कहीं भी जाती थी मेरे पीछे पीछे जाता था, यहाँ तक कि स्कूल भी जाता था स्कूल के बाहर बैठा रहता था. मेरी शादी के भी बाद अचानक उसने खाना पीना बंद कर दिया, और जिस दिन मैं ससुराल से उसे देखने आई उसके दूसरे दिन उसने दुनिया से अलविदा कह दिया. मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, और उसके बाद मैं कभी कोई भी पेट कोई भी डॉग नहीं पाला. बिल्कुल ये इमोशंस जब जुड़ते हैं ना, और कई ऐसे एक्सपीरियंस हम सुनते हैं शिक्षा कि जब ऐसा कोई छोड़ के जाता है ना तो हमारा मन भी नहीं करता कि उसकी जगह पे हम किसी और पेट को लाएं.
1: जी बिल्कुल, और ऐसे ही हमारे मुद्दे से जुड़ा हुआ एक और मेल है राम सेवक जी का. लिखते हैं, मेरे यहाँ पेट डॉग था. जब मैं वर्क करती थी तो मेरे बच्चे के झूले के नीचे से निकल जाता था, झूला झूलता था. आज बहुत याद आती है. इन्होंने हमें हसनपुर उन्नाव से मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: जब आप अपनी ऐसी यादें शेयर कर रहे हैं ना तो बिल्कुल हमारे भी दिल में बहुत सी ऐसी यादें आ रही हैं, दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं कि बहुत से पेट हमने भी पाले और किस तरह से उनसे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं. हम भी आपसे शेयर करेंगे, आप भी शेयर करना मत भूलिए. आज का मुद्दा है कि आपके घर में ऐसा कोई पेट था या फिर कोई ऐसा जानवर जिससे आपका लगाव हुआ, आपकी बेहतरीन यादें सजी, आपकी वो दुनिया बना, तो हमसे बेशक शेयर करिए. FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर.

0: बिल्कुल, जब ये सॉन्ग चल रहा था ना तो हम अपनी दुनिया के उन बेजुबानों की बातें कर रहे थे जो हमसे जुड़े थे। और ज़रूरी नहीं, मैंने पहले भी कहा ना कि बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें हम अपने घर में कैद करके रखे, पाल के रखे, उन्हीं से बहुत यादें जुड़ी हों। कुछ ऐसे भी पेट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो कहीं रास्ते में मिल जाते हैं, कहीं वर्क प्लेस पर मिल जाते हैं, कहीं आपको कोई दे जाता है कुछ दिनों के लिए।
1: बिल्कुल, अभी बैकस्ट मतलब कहते नहीं, गाने के पीछे हमें आकांक्षा दीदी अपने लाइफ की एक्सपीरियंस बता रही थी। इतनी सारी स्टोरीज है इनके पास। हम अगले कट में गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ में आप सभी को ज़रूर वो सभी कट्स, वो सभी स्टोरीज आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल 8:58 का वक्त, ठीक 9 बजे आप सुनेंगे अखबारों की सुर्खियाँ और फिर गुड मॉर्निंग लखनऊ का सेकेंड हाफ लेकर हम एक बार फिर से हाजिर होंगे।

नमस्कार, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अग्नि सुरक्षा और आपात सेवा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, दुर्घटनाओं से निपटने के लिए बनेगा विशेषीकृत बचाव दल। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर लिखा है, आपदाओं में राहत देगा SRG। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टाम्प और पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक भी अखबारों की सुर्खियां हैं। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, पासपोर्ट केंद्र जैसे होंगे रजिस्ट्री कार्यालय। अमर उजाला ने लिखा है, पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह विकसित होंगे रजिस्ट्री दफ्तर। वॉइस ऑफ लखनऊ ने लिखा है, पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित होंगे रजिस्ट्री ऑफिस। लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के शुभारंभ की खबर को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के कथन के आधार पर लिखा है, यूपी अपना मौसम उपग्रह विकसित करने को तैयार। अमृत विचार ने लिखा है, मौसम की सटीक जानकारी के लिए यूपी का होगा अपना सैटेलाइट। तृणमूल कांग्रेस में टूट की खबर को भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने लिखा है, लोकसभा के 20 सांसदों ने ममता का छोड़ा साथ, एनडीए को समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, इधर विपक्ष की बैठक उधर तृणमूल में टूट। हिंदुस्तान ने लिखा है, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद हुए बागी। राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया की खबर भी अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है, राजकीय माध्यमिक शिक्षकों की 12 जून से शुरू होंगी स्थानांतरण प्रक्रिया। हिंदुस्तान ने लिखा है, फैसला राजकीय माध्यमिक शिक्षकों के भी तबादले होंगे। अमर उजाला लिखता है, माध्यमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की सूची 12 को आएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की खबरें भी अखबारों की सुर्खियां हैं। हिंदुस्तान लिखता है, सामान्य ज्ञान के सवालों ने छकाया, हिंदी ने संभाला। दैनिक जागरण ने लिखा है, पहले दिन 25% अभ्यर्थियों ने छोड़ी लिखित परीक्षा।

टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की जीत को भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, भारत की सबसे बड़ी जीत में नए सितारे का उदय। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, फिरकी के फंदे में फंसी अफगान टीम। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
5: जी हाँ, वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। स्वेच्छा और आकांक्षा है आपके साथ, और आज की बता दे मुद्दे की बात, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी अपना रेडियो ट्यून इन किया और बता रहे कि भाई साहब मुद्दा मिस हो गया हमसे।
6: जी, तो आप सभी को बता दें कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड पेट मेमोरियल डे, और इस पर इसी से जोड़ते हुए बड़ा ही साधारण, बड़ा ही अच्छा सरल सा मुद्दा हमारा ये है कि बेजुबानों से जुड़ी यादें आपकी कौन सी है, आपको हमारे साथ शेयर करना है। वो आपका पेट एनिमल भी हो सकता है, या आपके दरवाजे आती हुई कोई गाय हो सकती है, कोई ऐसा जानवर जिससे आप रोज मिलते हैं।
5: बिल्कुल, तो बस फटाफट से शेयर करिए, और भी बातें, और भी स्पेशल डेज, आज क्या है खास आपको जल्द ही बताएंगे।

0: जी हाँ, 9:00 के 9 मिनट पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिसमें आकांक्षा और स्वेक्षा हैं आपके साथ.
1: और हमने बहुत सारे स्पेशल डेज की बात की थी कि आप सभी को धीरे धीरे करके एक एक चीज बताएंगे, और आज हम मना रहे हैं इसी में विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे. ये हर साल 9 जून को ये दिन मनाया जाता है, और इस दिन गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मानकों के महत्व को रेखांकित करता है हुआ ये दिन है. प्रत्यायन यानी एक्रेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई संस्था, प्रयोगशाला, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान या उद्योग निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार कार्य कर रहा है.
0: बिल्कुल, अगर बात करें तो ओवरऑल ये डे समर्पित है कि किसी भी काम की क्वालिटी को बढ़ाना है. क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इसीलिए आज मनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस. इसी के साथ एक और है खास दिन आज. आज है इंटरनेशनल आर्काइव्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस. हर चीज का लेखा जोखा आप तो रखते ही हैं, और तो बस इस दिन को भी आज विश्व स्तर पर समर्पित किया गया है. 9 जून को ये दिन मनाया जाता है, और ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेखों और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स के संरक्षण के महत्व को उजागर करता है ये दिन. अभिलेखागार किसी भी देश, समाज और संस्था की स्मृतियों को संजोकर रखने का एक कार्य करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास, संस्कृति और विरासत को समझ सके.
1: और ये दिन ज्ञान और विरासत को सहेजने के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करता है, और इसी पर ये आज का दिन समर्पित है.
0: बिल्कुल, तो ये रहे आज के खास दिन. और एक और खास दिन जिस पर आज का है हमारा मुद्दा, कि आज है वर्ल्ड पेट मेमोरियल डे. तो इस पर हमने आपसे पूछा था कि भाई आपका ऐसा कौन सा पेट है, कौन से बेजुबान है जिनसे आपकी यादें जुड़ी हैं, हमसे शेयर करिएगा. कहीं पर नहीं, बस यहीं पर fmakashwani@gmail.com पर हमें रहेगा आपके मेल्स का इंतजार. तब तक एक प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: जी हाँ, वक्त हो रहा है 9:16 और आपका ये वक्त है कि आप ऑफिस के लिए फटाफट से तैयार हो रहे होंगे, तो क्यों ना आपके रास्ते आसान कर दिए जाए। तो बस डेली की तरह लेकर के चलते हैं आपको TSI विकास सिंह जी के पास, जहां पर हम जानेंगे कि क्या है आज का ट्रैफिक का हाल।
3: हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में लखनऊ शहर में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं पर अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। पीक आवर्स का समय चल रहा है, जिस पीक आवर्स में हमारा ट्रैफिक लोड रहता है रोड पर, परंतु वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज जो है, जैसा कि आप सभी को विदित है, बड़ा मंगल है।

0: और बड़े मंगल के अवसर पर हमारे लखनऊ शहर में 5 प्रमुख हनुमान जी के मंदिर हैं, जहां पर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। ऐसे में अलीगंज का 2 प्रमुख मंदिर पंचमुखी हनुमान मंदिर तथा पुराना हनुमान मंदिर, वहीं अगर हजरतगंज की बात करें तो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, चौक की बात करें तो बालाजी और कोनेश्वर महादेव मंदिर, वहीं दूसरी तरफ महानगर में अगर बात करें तो हनुमान सेतु पर हनुमंत धाम और हनुमान सेतु मंदिर, ये जो 2 मंदिर है यहाँ पर अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। यहाँ पर हमने अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। अगर आप हनुमान सेतु मंदिर के पास जा रहे हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पार्किंग स्थल तथा कालविन तालुकेदार का पार्किंग स्थल, साथ ही हनुमान सेतु के पीछे पार्किंग स्थल जो है सृजित है पार्किंग व्यवस्था के लिए। वहीं हनुमंत धाम के लिए हमने लक्ष्मण मेला मैदान का पार्किंग स्थल पार्किंग व्यवस्था के लिए किया है। यदि आप दर्शन पूजन के लिए हनुमान मंदिर के आसपास हनुमान मंदिर जा रहे हैं तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप पार्किंग स्थल पे अपने वाहनों को पार करें, कोशिश करें इधर उधर रोड पर वाहन को ना पार करें, जिससे कि लोगों को असुविधा का सामना करना पड़े। साथ ही जो है आज उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और ये एग्जाम 2 पालियों में हो रहा है, सुबह 10 बजे से और शाम को 3 बजे से। तो ये 2 पालियों में जो एग्जाम है इस दौरान हमारा चारबाग, कैसरबाग, अवध बस अड्डा और आलमबाग बस अड्डे के पास में, तो चारबाग रेलवे स्टेशन का एरिया जो है इन 2 समयों में लगभग सुबह के 10 बजे से 12 बजे के 10 बजे से पहले और 12 बजे के बाद यहाँ पर अत्यधिक संख्या में आवागमन रहता है परीक्षार्थियों का। तो ऐसे में अगर अति आवश्यक न हो तो आज इस मार्ग के प्रयोग से बचें और अवॉइड करें। यदि कहीं आपको लगता है कि मेडिकल इमरजेंसी है या किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा से विषय से कोई वो है कि कहीं आप ट्रैफिक में फंस रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 94-54-41-55। हम तत्काल आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे ताकि आपको अपने गंतव्य तक हम सुगमता से पहुंचा सकें। जी मैम,
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर।
0: जी धन्यवाद।
2: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ TSI विकास सिंह जी, जिन्होंने हमें हमारे शहर से जुड़े ट्रैफिक का हाल बता दिया कि भाई आपको कैसे किन किन जगहों से बचते हुए निकलना है।
1: और भाई भंडारे का आज दिन है तो बिल्कुल आप एंजॉय करिए इस दिन को और श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण करिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि किसी के दिल को चोट ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो।

0: शहर आपका, धुन आपकी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: जी हाँ, गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ 9:24 स्वेक्षा और आकांक्षा के साथ आप सुन रहे हैं। और अब बारी है हमारे शहर के मौसम से जुड़ी हुई कि भाई क्या रहने वाला है हाल। इसके लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर।
3: जी गुड मॉर्निंग,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। और आज का मौसम कैसा रहने वाला है?
3: देखिए मौसम की बात करें तो आज धूप अच्छी खिली रहेगी, थोड़ा गर्मी का एहसास होगा, तो आज और कल दो दिन का गर्मी का सबब बना रहेगा। बाकी परसों से जैसा कि धीरे धीरे बादलों की आवाजाही बनेगी
2: जी जी,
3: तो परसों से धीरे धीरे तापमान में गिरावट होने की संभावना है।
2: बिल्कुल, तो हम परसों से थोड़ी सी राहत की उम्मीद कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, हल्की हल्की राहत धीरे धीरे स्टार्ट होगा, बाकी आज और कल थोड़ा गर्मी का एहसास जारी रहेगा।
2: बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर।
3: ओके धन्यवाद।
2: दोस्तों ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने बताया कि भाई देखिए आज की सुबह की जो थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई ना, उससे लग रहा होगा आपको कि कहीं कहीं फिर से ये आसार ना बन जाए, लेकिन धूप अपने स्तर पर रहेगी, गर्मी रहेगी दो दिन। तीसरे दिन हम थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ राहत मिले। वेल, मौसम अपने रंग बदलता रहेगा, लेकिन FM रेनबो के जो रंग हैं वो सतरंगी रंग ऐसे ही बने रहेंगे।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, देखिए, एंटरटेनमेंट का ख्याल और इन्फॉर्मेशन का ख्याल हम रखते हैं, साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। और इसीलिए तो टाइम टाइम पर, वैसे एक हमारा प्रोग्राम संडे स्पेशल में आता है हेल्थ एंड फिटनेस, लेकिन बीच बीच में भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं जो आपसे जुड़ी हैं, आपकी हेल्थ से जुड़ी हैं, उनसे भी आपको निदान मिले, आपका आपको सलाह मिले। इसके लिए एक और हमारी कोशिश, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते पीते समय बार बार खांसी आती है तो आपको पता है इसे डिसफेजिया का हो सकता है, आपको इसके संकेत हैं, लक्षण हैं। और डिसफेजिया है क्या, इसके कारण, लक्षण, बचाव के बारे में जानकारी जानने के लिए सुनिए हमारा खास प्रोग्राम, यानी कि FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर एक विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार को होगा 10 जून 2026 को, और इसका जो समय है वो 11 बजे से है। तो 11 बजे से आप, ऐसी कोई समस्या है खाने पीने में, अगर आपको निगलने में समस्या होती है तो इसे डिसफेजिया कहते हैं, और इनसे जुड़ी समस्याएं क्या है इसका लक्षण, आप इससे जुड़ सकते हैं।
5: जी, और जिसकी जानकारी देने के लिए, आप सभी को सलाह देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद होंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन। इससे जुड़ी आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा हमारे चैनल FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नेशनल डिफेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल, तो इसीलिए आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए ये खास कार्यक्रम कल है, सुनना मत भूलिएगा। 11 बजे से आप फोन के जरिए या फिर मेल्स के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर से 0522 22 38 845, दूसरा नंबर है 0522 22 38 852। तो बस आपकी ऐसी कोई अगर समस्या है या फिर किसी को घर में ऐसी कोई समस्या है डिस्फेजिया की, तो कल डिस्फेजिया डे पर ये खास फोन इन प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें आप अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं।

0: आज मैंने म्यूजिक पे अप किया कि भाई देखिए म्यूजिक पे कैसे आप रिस्पांस करते हैं. बहरहाल जब हैप्पी बर्थडे वो गाती तो साथ में सब सुर मिला लेते हैं हैप्पी बर्थडे. लेकिन भाई टेस्ट तो ये है कि म्यूजिक पे गा के दिखाइए.
1: तो भाई आप सभी को आपके खास दिन की आपके हैप्पी हैप्पी बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं. आपका जो स्पेशल डे है बहुत सारी खुशियां लेकर आए, हम बस यही प्रार्थना करते हैं.
0: बिल्कुल. और आज अपना ये खास दिन आप किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं ये जानना भी जरूरी है. तो आपको हम बता दें कि आज बहुत से ऐसे खास नाम हैं जिन्होंने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया. साथ ही साथ कई ऐसे राइटर्स हैं, कई ऐसे कहते हैं कि संगीतकार हैं जिन्होंने संगीत भी बद्ध किया और वो गीत वो प्रेयर्स आज भी हमारी जिंदगी का एक अच्छा खासा अनमोल हिस्सा है. तो सबसे पहले हम बात कर ले जयंती की. चौधरी दिगंबर सिंह जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था. स्वतंत्रता सेनानी थे और 4 बार लोकसभा सांसद भी रहे. इन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया. किसानों की भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी संशोधन का पहला प्रयास इनका ही था. किसानों की बात संसद में कहने के लिए दिगंबर सिंह को प्रसिद्ध माना जाता था क्योंकि वो हमेशा किसानों के हक की बात करते थे. और इसी के साथ ऐसा भी कहा जाता है शिक्षा कि मथुरा में आकाशवाणी की स्थापना करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है.
1: क्या बात है. साथ ही एक और नाम है, बड़ा नाम है, भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था. और संगीत लहरियों से फिल्मी दुनिया को सजाने संवारने वाले महान संगीतकार वसंत देसाई जी के संगीतबद्ध गीतों की रोशनी फिल्म जगत की सतरंगी दुनिया को हमेशा रोशन करती रही है.
0: फिल्म 2 आंखें 12 हाथ का प्रसिद्ध गीत ए मालिक तेरे बंदे हम, ये आज भी बहुत सी स्कूल्स में या फिर यूं कहें कि हमारी जिंदगी का बहुत ही सुंदर सा हिस्सा है. तो ये प्रेयर हमें आज भी याद है. लक्ष्मण प्रसाद दुबे जी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ. भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, शिक्षकीय कर्तव्य को अपना साधन मानने वाले लक्ष्मण प्रसाद दुबे का संपूर्ण जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता जिस कारण उन्हें गुरुजी के रूप में जाना जाता है. उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को शिक्षित कर उनके मन में देशभक्ति की भावना को जागृत किया, वहीं कई लोगों को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया.
1: और एक और बड़ा नाम, सुप्रसिद्ध भारतीय कवि, संस्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा सहृदय समीक्षक अजीत शंकर चौधरी जी का भी आज के दिन जन्म हुआ था. कवि के रूप में उनकी केंद्रीय उपस्थिति थी और अपने कविता संग्रहों में अकेले कंठ की पुकार, अंकित होने दो, ये फूल नहीं, घरौंदा, हिरनी के लिए जैसे कई इन्होंने कविता संग्रह लिखे. और इनकी उन्होंने कविता को नया मुहावरा देने के साथ साथ उसे ऐसे अर्थ ले दिए जिन्हें जिसमें दैनंदिक जीवन के साथ साथ मनुष्य के संघर्षों की अनुगूंजों भी ध्वनित होती है.
0: क्या बात है. तो आप सभी को हम नमन करते हैं, आपके योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे. इसी के साथ बदेस की बात करें तो किरण बेदी का भी आज ही के दिन बर्थडे है. जी हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम वरिष्ठ महिला अधिकारी आप रही हैं. और अब चलते हैं बॉलीवुड की ओर.
1: हमने सुबह ही आपको दो नाम बताए थे, बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल और सोनम कपूर, दो बेहतरीन अदाकारा और अपने अपने टाइम की दोनों ही दिग्गज एक्ट्रेसेस हैं और बड़ी ही खूबसूरत एक्ट्रेस है. बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया. अमीषा पटेल की बात करें तो मुख्य रूप से बॉलीवुड की कई फिल्मों में वो दिखाई दी और उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था. साथ ही इन्होंने 2000 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
0: बिल्कुल गदर. और इसी के साथ साथ आप मुझे अच्छे लगने लगे, हमराज, बहुत सी ऐसी मूवीज में अमीषा पटेल है. और भाई अभी गदर 2 में भी आपको देखा, एक नए अंदाज साथ, बिल्कुल खूबसूरती में कोई कमी नहीं, एक्टिंग में कोई कमी नहीं. वही गदर जो हमारी ओरिजिनल वाली थी, पहली गदर, उसी की तरह एकदम वैसी खूबसूरती के साथ आप नजर आईं. और दूसरा नाम है सोनम कपूर का. जी हाँ, इनको हम कैसे भूल सकते हैं. आज

भी बॉलीवुड की जान बन चुकी हैं और बहुत सी मूवीज आपने करी हैं. दिल्ली 6 की बात कर ले या फिर हम बात करें कि ऐसी कई मूवीज आपने दी जिनका नाम हमें याद है. तो क्यों ना शिक्षा हम बात कर रहे हैं इन बॉलीवुड हस्तियों की, तो एक प्यारा सा ट्रैक मैंने बोला ना मसक कली, तो मुझे ये मसक कली का एक ये ट्रैक बहुत पसंद है. तो बस इंजॉय करिए अपने बर्थडे के दिन, जिनका बर्थडे नहीं है वो इन ढेर सारी विशेष के साथ भी इंजॉय करिए मसक कली का ये ट्रैक.

0: या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: जी हाँ, 9:48 और अब ये वक्त है कि आज आपके मेल्स को शामिल करने का वक्त है।
5: और बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं। सुधांशु जी क्या लिखते हैं?
4: जी हाँ सुधांशु, राधे राधे आपको भी। भगवतीपुर से आप हमें मेल कर रहे हैं और जिला लखनऊ। आज का सुविचार इनको अच्छा लगा, टॉपिक पर कहना चाहते हैं कि हमारे घर में एक काली गाय थी, वो पूरे परिवार को बहुत प्यारी थी, लेकिन बाहरी व्यक्ति को मारती थी इसलिए उसे बेच दिया गया, परंतु जब से खरीदने वाले लोग आए थे तो वो गई तो बहुत हम लोग रोए और हमें दुख भी हुआ। थैंक यू सो मच, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है।
5: अफजल अंसारी गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम में लिखते हैं, लखीमपुर से मेल कर रहे हैं। मुद्दे पर ये कहते हैं कि हमारे घर एक डॉगी था, जब वो छोटा था तो उसकी मम्मी उसे छोड़ कर चली गई थी, तो हम उसे अपने घर लाए और वो बीमार था, हमने उसे दवा खिलाया और फिर उस दिन से वो हमारे साथ रहने लगा और हमने उसका नाम मोती रखा। वो भी हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स की तरह हमारे साथ रहने लगा, सब उसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक वो मेरे दादाजी के साथ घूमने गया था एक दिन, तो बाहर वहाँ पर उसे चोट लग गई, शायद से किसी ने मारा था या फिर दादाजी उसे घर लाए, हमारे डॉक्टर को बुलाया और उसकी बहुत इलाज करवाया गया पर वो बच ना सका। आपने जब ये मुद्दा उठाया तो हमें उसकी याद आ गई, थैंक यू सो मच एक बार फिर से उसकी याद दिलाने के लिए, थैंक यू सो मच आपका हमें मेल करने के लिए।
4: निधि चौरसिया गुड मॉर्निंग आपको भी, और भाई कह रही 7 बजे वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा था, थैंक यू। और मेरे घर में मेरी अम्मा जानवरों को पालती थी, बट उनके जाने के बाद अब कुछ नहीं है। आज हम सब वो गाय और उसके बच्चे को बहुत याद करते हैं। और शालिनी चौरसिया बालागंज लखनऊ से हमें मेल कर रही हैं।
5: रोशनी रावत हमें सुन रही हैं चंडीगढ़ से, मुद्दे पर लिखती हैं, 9 साल पहले लगभग बात है, मेरे पास 2 डॉग्स थे, मैं कहीं भी जाती तो मेरे साथ चल पड़ते थे, वो पल मेरे जहन में हमेशा रहते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें इनके साथ हैं।
4: क्या बात है। दीपक मिश्रा जी, मेरे गिल्लू एंड मिल्लू के नाम से इन्होंने मेल किया है, बहुत ही प्यारा नाम। गिल्लू जब भी कोई बोलता है ना तो हमें महादेवी वर्मा की वो रचना गिल्लू याद आ जाती है, जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड थी। और मैं नमित और नमिता मिश्रा ये हमें मेल कर रही हैं, विलेज करनपुर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। मेरे गिल्लू मिल्लू, गिलहरी के 2 बच्चे, जब इनकी आंखें भी नहीं खुली थी तब ये मेरे भाई को स्कूल के जीने पर मिले थे, वो इनको घर ले आया और उनके लिए प्लास्टिक की बॉटल में रबर लगा के मिल्क पिलाते थे। वो हमारे साथ 5 महीने हमारे साथ रहे और वो हमारे घर का हिस्सा, और मॉर्निंग में हमारे साथ चाय पीने के टाइम पे पापा जी के हाथों पर टहला करते थे, डरते बिल्कुल नहीं थे। किचन में जाते उनके आने से घर में अच्छी वाइब्स आ गई थी। थोड़े बड़े होने पर वो बाहर जाने लगे, पेड़ों पे जाने लगे और कुछ खाने पीने के लिए भी आ जाते थे घर। आते ही गोली हमारे हाथ से ले लेते थे और फिर पेड़ पे चढ़ जाते थे। अब वो किसी पेड़ पर होंगे, कहीं और चले गए हैं। और हम लोग जब भी किसी स्क्विरल को, किसी गिलहरी को देखते हैं तो हमें गिल्लू और मिल्लू की याद आती है। कितनी प्यारी यादें हैं, थैंक यू सो मच।
5: जी, और साथ में एक बड़ी ही सुंदर तस्वीर इन्होंने भेजी है अपने, वही कोई व्यक्ति है उनके ऊपर उनकी गिल्लू मिल्लू खेल रहे हैं। साथ में हमारे पास अरुण कुमार जी का मेल आया हरदोई से, हैं सभी सुनने वालों साथियों को गुड मॉर्निंग, सुपर हिट गाने लग रहे हैं। मुद्दे में कहने के, मेरे गांव में एक बार एक काला कुत्ता रात में छत से आकर कुछ ना कुछ नुकसान करके भाग जाता था। एक दिन मैंने उसे पत्थर से मार दिया, वो जमीन पर गिर के चीखने लगा, वो ठीक तो हो गया पर उस दिन से मैंने ये निर्णय लिया।

0: मैंने निश्चय किया कि मैं किसी भी जानवर को मारूंगा नहीं। तब से आज तक मेरे पास एक कुत्ता है, मैंने पाल रखा है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उस घटना के बाद से कोई भी जानवर हो, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ।
1: बिल्कुल, जानवर कैसा भी हो, छोटा सा भी हो ना, अब उसकी एक्टिविटीज देखेंगे तो आपको बहुत कुछ रियलाइज होगा कि उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, और वो आपके बातों पर रिएक्ट करते हैं अगर आप उनको प्यार वाली वाइब्स देते हैं। महेंद्र दीपन जी का हमारे पास मेल आया, नमस्कार। और राजस्थान नागौर जिले रूड़गांव से आप हमें मेल कर रहे हैं। वैसे तो मैं सभी बेजुबान जीवों का सम्मान करता हूँ, मुझसे जितना बन पड़ता है उनकी सेवा जरूर करता हूँ, लेकिन अगर बात मेरे सबसे गहरे लगाव की है तो मेरे दिल प्रकृति हरियाली के लिए धड़कता है। मुझे पहाड़ों की वादियों में घूमना, घने पेड़ों के बीच समय बिताना बेहद पसंद है। मेरे लिए पेड़ सिर्फ जीवन नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे साथी हैं, जो निस्वार्थ भाव से हमें छाया ऑक्सीजन देते हैं। मेरा मानना है कि यदि हम सब एक एक भी पेड़ लगाएं तो उसकी देखभाल करें तो ये पृथ्वी और भी सुंदर हो जाएगी। जी हाँ, पेड़ लगाइए, साथ ही साथ उसका ख्याल भी रखिए।
0: मोनू सेठ जी लिखते हैं, बेजुबानों को बांध कर कभी नहीं रखा, यानी इन्होंने कभी पाला नहीं है, और लगभग 50 डॉगीज को इन्होंने अपने हाथों से रोटी खिलाया है, और कितने तो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी नहीं भूलते। इन्होंने महसूस किया कि इनसे वफादार दुनिया में कुछ नहीं है।
1: क्या बात है वकील अहमद, गुड मॉर्निंग आपको भी, आवाज़ अच्छी लग रही है। और कह रहे हैं घर में एक डॉग था, खाना थाली में रखा रहता था, कोई आइटम लेने चले जाए तो खुद नहीं खाता था, दूसरे मजा ले कि कोई दूसरा जानवर और परिंदा आ जाए इनके घर पर। और हमारे घर का कोई खेत में होता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि छू सके, उसका दिल चाहता था तो वो गाँव के 10 किलोमीटर तक, हर गाँव में चाचा रहते थे, हर गाँव में चाचा इनके रहते थे, वहाँ पर चला जाता था। रास्ते में कोई किसी भी से डरता नहीं था, उसका नाम शेरू रखा था, और कह रहे हैं अभी भी हम उसे भूल नहीं पाए हैं।
0: क्या बात है। वारिस अली जी लिखते हैं हमें कि मानना है बेजुबान जानवर की मोहब्बत में दिखावा नहीं होता, वो वफादार होते हैं। एक वाक्या शेयर कर रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग को रोजाना खाना देता था, वो डॉग मुझसे बहुत हिल गया था। जब मैं शाम की अपनी जॉब से लौटता तो वो हमारे घर के मोड़ पर मेरा इंतजार करता था, लेकिन उसमें एक खराब बात वो थी कि वो रात के 10 बजे के बाद किसी को भी मेरे घर के सामने से नहीं जाने देता था, अगर कोई गुजरता तो उसे दौड़ा लेता था, इसलिए मैं उसे रात में बांध देता था। लेकिन किसी ने एक दिन उस पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और वो नहीं रहा, लेकिन आज भी मेरी बहन शहनाज उसे याद कर कर रोती है।
1: क्या बात है, ऐसे बहुत से प्यारे मेल्स आपके और बहुत से प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस स्वेक्षा। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने भी एक्सपीरियंस बहुत शेयर करूंगी आपको। मैं बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हूँ, मुझे स्नेल भी पसंद है, मैंने स्नेल भी पाले हैं। और एक किस्सा बताऊंगी, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, कि जब इतने लोग अपनी बातें बता रहे तो मेरा भी मन कर रहा है कि कुछ रखूं आपके सामने। कि एक मेरे फ्रेंड थे, उनके यहाँ काले वाले चूहे बहुत हो गए थे, तो उन्होंने वाइट चूहों को पाला था। कुछ एक दो दिन वो रख पाए अपने घर में, उसके बाद उन्हें कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में उनको रख लूँ। और वो दो थे, जब आए थे तो बहुत गंदे थे क्योंकि बस एक दो दिन हुआ था, वो मार्केट से लेके आए थे तो उनकी अभी वो सफाई नहीं कर पाए थे। मैंने उनको घर में रखा और धीरे धीरे जानने की कोशिश करी कि ये खाते क्या हैं। जो भी चावल देने दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा, खाते थे। और सबसे बड़ी बात स्वेक्षा, वो गर्म चावल ही खाते थे, ठंडे चावल उनको नहीं पसंद थे, बादाम और मूँगफली बहुत पसंद थी। और जब उनकी साफ़ सफाई भी मैं करती थी, उनको नहलाती भी थी, बड़े आराम से रहते थे। और जब मैं रूम में उनके सामने जाके अपना खाना लेके बैठती थी तो उनका पेट भरा रहता था, फिर भी वो दोनों पिंजड़ों पे ऐसे चढ़ के और अपना मुंह आगे करके ऐसे जैसे बोलते हो कि पहले मुझे दो फिर तुम खाओ, अपनी थाली से निकाल के फिर उनकी थाली में रखना। और डेली का ये प्रोसेस, दिन में अगर जो भी आप खा रहे हैं आप उनको रखो, शेयर करो, ऐसा लगता था कि वो मांगते हैं। धीरे धीरे वो साथ में खेलते भी थे, टहलते थे, कहीं भागते नहीं थे, मतलब कि वो अपने पूरे कंफर्ट जोन में आ गए थे। लेकिन एक दिन वो भी आया कि जब उनके मालिक आ गए, उनके मेरे फ्रेंड आ गए वापस, तो उन्हें वो अपना पिंजरा वापस लेने आए। उस दिन मैं बहुत रोई थी क्योंकि अटैचमेंट एक ऐसी चीज होती है, वो चाहे कोई भी जानवर हो। मेरे घर में आज भी एक्वेरियम है, वहां पे हमारी सबसे पुरानी मछली है, उसका नाम है डूडू। और आपको सच बताऊं, आप उसका टाइम है सुबह शाम खाना खाने का, और हम जैसे ही सुबह उसके सामने खड़े हो जाते हैं, वो प्रॉपर मुंह आगे करके पानी में ऐसे अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप करती है कि बस मुझे खाना दो क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है। तो कोई भी जानवर हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, एक वाइब्स होती है। तो इस खूबसूरत चीज़ के साथ एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद एक प्यारा सा ट्रैक, और हाँ, आकांक्षा आपसे मांगेगी अनोती प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, लेकिन आगे का सफर आज आप मेरे साथ ही तय करेंगे। शिक्षा कहेगी आपको टाटा बाय बाय,
0: होगी किसी और दिन किसी और वक्त हमारी आपकी एक बार फिर से मुलाकात।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रह

0: से रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। विशेष आपात परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में 10 जनपदों में SRG की स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए 240 कर्मियों को NDRF, BSF, ITBP, CISF तथा अन्य विशेषज्ञ संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल लखनऊ में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से शहरी, औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन एवं आपात सेवा व्यवस्था को भी समय की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों के तहत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। देश में वनों के संरक्षण उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी महिला T20 विश्व कप के लिए कमेंटेटर्स की सूची जारी कर दी गई है। इस बार कमेंट्री टीम में कई दिग्गज महिला खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, जिनमें भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति के नाम प्रमुख हैं। इसके साथ दिनेश कार्तिक और जतीन सप्रू भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुक्रवार को होगा। उद्घाटन मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: शहर आपका, धुन आपकी।

जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रोग्राम है सुपर हिट सॉन्ग्स, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 10 से 11। बने रहिए आकांक्षा के साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

10:27 और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट आप एंजॉय कर रहे हैं आकांक्षा के साथ। जी हाँ, प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स में। इसी के साथ, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते पीते समय बार बार खांसी आती है तो इसे डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार यानी कि कल दिनांक 10 जून 2026 को 11 बजे ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपको जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर।

0: ना बोले, एफएम रेनबो 100.7 एफएम रेनबो नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम। हमारा फोन नंबर है 0522-2238-845। इसी के साथ हमारा दूसरा फोन नंबर है 0522-2238-852।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: शहर आपका, धुन आपकी।

10:43 मिनट। जी हाँ, आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट सुपरहिट सॉन्ग्स प्रोग्राम आकांक्षा के साथ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

10:53 मिनट। जी हाँ, अब वक्त है कि ये प्रोग्राम यानी कि सुपर हिट सॉन्ग से आकांक्षा को दीजिए अनुमति। अगला प्रोग्राम है हमारा संदेश आपके गीत हमारे, जिसमें आप अपने मैसेजेस क्या बात कहना चाहते हैं वो हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com पर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्रप्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत ने अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप निबंधक कार्यालयों को चरणबद्ध ढंग से पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि डिजिटल गवर्नेंस विभागीय सुधारों का प्रमुख आधार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश गतिविधियों और शहरीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग को अधिक पारदर्शी, तकनीकी आधारित और जनसुविधा केंद्रित बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा और असुविधा का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा एवं भीड़ प्रबंध को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। 3 दिवसीय लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए आजमगढ़ बलिया, आजमगढ़ गोरखपुर, बलिया आजमगढ़ तथा वाराणसी सिटी गोरखपुर मार्गों पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्टेशनों पर वाणिज्य विभाग द्वारा 24 घंटे हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। इन हेल्प डेस्क पर विशेष ट्रेनों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। यह जानकारी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो इसराइल कड़ी कार्रवाई करेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: शहर आपका, धुन आपकी।

नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। जी हाँ, प्रोग्राम है संदेश आपके, गीत हमारे। तो बस फटाफट से तैयार कर लीजिए, आपने जो भी मैसेजेस हैं या फिर जो भी बात हमसे रखनी है, करनी है, कुछ शेयर करना है कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, दिन कैसा बीत रहा है। आज वैसे मंगलवार है और भंडारों की तो रौनक लगी हुई है। हर मंगलवार इस बार स्पेशल जा रहा है, क्योंकि भाई देखिए बहुत सी रौनक दिखती है। आप जब गाड़ी लेके घर से बाहर निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस आज अगर पानी भी नहीं मिला, वैसे पानी के लिए तो जगह जगह पे प्याऊ बनवाए गए हैं जहाँ पे आप जाके पानी पी सकते हैं, गर्मी से राहत पा सकते हैं, लेकिन खाने पीने का भी इंतजाम हो जाता है। तो बस प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में आकांक्षा है आपके साथ। फटाफट से मैसेज भेजिए और हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0522 22 38 845, दूसरा नंबर है 0522 22 38 852। इसके साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com पर।

0: 11:10, जी हाँ, प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस लेके हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दो दोस्त। तो आइए सुनते हैं कि वो हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। प्रीति बिजनौर से हमसे बात कर रही हैं, और क्या कहना चाहती हैं प्रीति आप?
1: मैम यही है, मतलब संदेश है कि हमारे यहाँ दो जो वर्ड होते हैं छोटे छोटे बच्चे से, तो उनको दाना पानी क्या और रखा, जैसे धूप ना लगे, छाँव ना लगे, मतलब ज्यादा धूप।
0: अच्छा प्रीति, प्रीति थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको रोक रही हूँ, आप मोबाइल में थोड़ा सा तेज़ से बोलिए, और एक ही मोशन में रहिए, हिलिए नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी आवाज़ ना आ रही है जा रही है, तो ये पता चल रहा है कि आप इधर उधर देख के बात कर रहे हैं, है ना?
1: नहीं मैम, हम तो बाहर हैं सिले में।
0: अच्छा, तो आराम से आप थोड़ा सा तेज बोलिए।
1: ओके मैम।
0: जी हाँ, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे।
1: मैम यही संदेश की जो पक्षी होते हैं, जैसे चिड़िया है, जो पक्षी है उनके लिए दाना पानी।
0: अच्छा
1: जी मैम।
0: हाँ, जो पक्षी होते हैं, चिड़िया होते हैं, उनके लिए हम, इतनी गर्मी हो रही है।
1: उन्हें जरूर देखना चाहिए, उन्हें रियायत।
0: बिल्कुल प्रीति जी, और भाई थैंक यू सो मच अपना ये मैसेज देने के लिए। हमारे साथ थी प्रीति बिजनौर सी, और आज जैसे कि वर्ल्ड पेट मेमोरियल डे भी हमने सेलिब्रेट किया है भी आज ये दिन, और इसी पर इन्होंने कहा कि भाई जो भी पक्षी हैं, जो भी जंतु हैं, बेजुबान हैं, और गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज़ है, तो आप कोशिश करिए कि उनके लिए दाना पानी ज़रूर रखिए। एक और फ्रेंड हमारे साथ हमारी लाइन पर जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी नमस्ते, सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम और प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, क्या संदेश है आपका?
2: जी दीदी, आपको भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: जी जी, गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए।
2: जी जी, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल फैज जी, क्या कहना चाहते हैं आज आप?
2: जी दीदी, आज का मेरा संदेश ये रहेगा कि जैसे गर्म बहुत पड़ रही है, तो छोटे बच्चे खास करके घर के बाहर ना निकले
0: जी,
2: और मतलब बड़े भी ज्यादा अगर बहुत जरूरी काम हो तब निकले, बाकी ना निकले।
0: बिल्कुल।
2: और एक मेरा और संदेश है कि सभी लोग अपना ख्याल रखें, नींबू पानी पीते रहें, और अपना बहुत से ज्यादा ख्याल रखें। दीदी कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ।

0: बिल्कुल ले सकते, बोलिए
1: जी। सबसे पहले मोहम्मद सईद भाई हैं, मोहम्मद सद्दाम भाई हैं, आसिफ भाई हैं, रिंकी पिंकी, समा परवीन अप हैं, गुलाब साहब भी हैं, साहिब अंसारी हैं, सादिया अंसारी हैं, यासिर हमीद भाई हैं, बाबू अंसारी भाई हैं और सुरभि सिंह हैं।
0: ओके, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए।
1: हेलो दीदी, हाँ हाँ, और सईद अहमद बाल कटिंग वाले बस।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग और
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू, और अपना संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत ढेर सारे मेल्स आ चुके हैं। अरैया कॉलेज, अच्छा अरैया से हमें कोई मेल कर रहा है और कह रहे हैं कि भाई फैसल इमाम हमसे कह रहे हैं कि हमारा ये फेवरेट ट्रैक प्ले कर दीजिए। और आपको बता दें कि फरमाइशी गीतों का एक प्रोग्राम हमारा आता है जहाँ पर आप ये फरमाइश कर सकते हैं। इसी के साथ प्रवीण जी आपको भी गुड मॉर्निंग, और हरि कृष्णा, अमित जी हमें मेल कर रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि समृद्ध स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत 2.5 वर्षीय राष्ट्रव्यापी महाअभियान की ये इन्होंने रूपरेखा भेजी है कि हमें भाई क्या क्या इसमें सुधार हुए हैं, क्या क्या चीज़ें बदली हैं। और इसी के साथ अरुण आनंद जी आपको भी गुड मॉर्निंग। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है, कभी रिश्ते से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं, इसलिए चलते रहिए, रिश्ते निभाते रहिए। थैंक यू सो मच ए के आनंद, आप अरुण आनंद हैं, आप हमें मेल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के मेल्स का, और रहेगा कॉल्स का इंतज़ार, लेकिन एंटरटेनमेंट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे। तो बस ये प्यारा सा गीत इंजॉय करिए और हमें कॉल और मेल करते रहिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जी हाँ, 11:19 और ये वक्त है आपके मैसेजेस का, आपके कॉल्स का। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
3: हेलो
2: जी, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग, पहले तो अपना नाम बताइए।
3: जी, हम गुलाब शाह से बोल रहे हैं।
2: गुलाब शाह, हमसे बात करिए संडीला से, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?
3: जी मैम, आप पहले बताइए आप कैसे हैं।
2: एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आप लोग कैसे हैं?
3: हम लोग बहुत बढ़िया हैं, बैठे थे अभी आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। आपने पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा किया।
2: अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। और ये हमारी कोशिश रहती है, और जब आपकी तारीफें मिलती हैं तो हमारी कोशिश जो होती है, कोशिश वो सफल हो जाती है।
3: कोई भी काम करे, अगर तारीफ हो जाती है तो काम अच्छा और भी हो जाता है।
2: जी बिल्कुल। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?
3: मैसेज मैम यही है, बेजुबानों को हमें मारना नहीं चाहिए। मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं, मार देते हैं, तो मारना नहीं चाहिए। जी मैम, और उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: बहुत है।
2: जी जी,
3: टाइम टाइम से पानी बदलते रहना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल, टाइम टाइम पे पानी बदलते रहना चाहिए, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है।
3: पानी तो बिल्कुल बिना रखे हैं।
2: जी जी, तो
3: मैम बेटा नाम ले लें।
2: हाँ बिल्कुल, आप नाम ले सकते हैं।
3: जी मैम, रोशनी रावत है, और क्षमा परवीन है, साहिबा अंसारी है, साजिया अंसारी, और जितने लोग सुन रहे हैं मोहम्मद शेर भाई, जितने सुन रहे हैं हम सभी।
2: बिल्कुल, थैंक यू सो मच गुलाब साहब हमें कॉल करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुलाब साहब, और बहुत से लोगों का यही कॉमन मैसेज है कि भाई देखिए गर्मी बढ़ रही है, दाना पानी रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। अगर कोई खास बात जो आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं जो लोगों के लिए एक सबक हो सकता है, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं, तो हमें मेल कर सकते हैं वो बातें, और साथ ही साथ आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल की लाइन अगर बात करिए, देखिए हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो हेलो, अभी होल्ड पे थे, शायद बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा इसलिए इन्होंने कॉल डिसकनेक्ट कर दी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिएगा। हमारा जो फ़ोन नंबर है उसी पे आप ट्राई कर सकते हैं, हम आपसे बातें ज़रूर करेंगे। और बातों के सिलसिले से आपको बता दें कि मेल्स बहुत आते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। आपको पता होता है कि भले जब लाइंस बिजी होंगी तो कम से कम हमारे मेल्स तो आप तक, हम तक पहुंच ही जाएंगे। और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी हमें मेल कर रहे हैं कि आपको प्रणाम, आपको भी प्रणाम, और कह रहे हैं पिंकू सोनी मेरा कहना है। अच्छा, ये पिंकू सोनी मेल आईडी अलग नाम से होती है, मेल कोई और करता है। कह रहे हैं जो माता पिता अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, कृपया वे बच्चों के सामने ना किया करें, इससे बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ता है और बच्चे भी आगे चल कर कुछ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि आप अगर मैच्योर हैं तो उसी तरह से आप काम करिए। बाराबंकी से आप हमें मेल कर रहे हैं, और कुछ नाम है कुलदीप, आकाश, रिंकी, पिंकी। थैंक यू सो मच सभी लिसनर्स को, इन्होंने गुड मॉर्निंग बोला है। रामराज जी का भी हमारे पास मेल है, श्री गणेशाय नमो। और संदेश आपके गीत हमारे रायबरेली से आप हमें मेल कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारी तरफ से नमस्कार, नमस्कार आपको भी। और संदेश है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारा सभी से अनुरोध है कि ऐसा ना करें। अरुण आनंद जी, एक बार फिर से आप कुछ कविताओं के साथ, जिसमें ढेर सारे फ्रूट्स हैं और बहुत ढेर सारी मिठाइयों के साथ है। फुर्सत नहीं इंसान को इंसान से मिलने की, ख्वाहिशें रखता है दूर बैठे भगवान से मिलने की। दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना है क्या? झरने ने बड़ी विनम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से अच्छा है छोटा रहकर मीठा ही रहूं। क्या बात है, बहुत ही प्यारी लाइंस। और इसी तरह से अच्छी अच्छी मेल्स हमें करिए, कॉल हमें करिए, अच्छे मैसेजेस के साथ जो आप संदेश देना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है संदेश आपके

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: शहर आपका, धुन आपकी।

0: जी हाँ, 11:29 और प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, जिसमें दो कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो मैम।
0: हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: सबसे पहले तो अपना नाम बताइए।
1: जी मैं सबीना बोल रही हूँ, इमामगंज से।
0: एक बार फिर से अपना नाम बताइए। आपका नाम में ना वहीं पे फंबल आ गया, वहीं पे सारा नेटवर्क चला गया।
1: जी समीना बोल रही हूँ।
0: समीना
1: जी,
0: इमामगंज से क्या कहना चाहती हैं आप हमसे?
1: जी मेरा कोई संदेश नहीं है, बस मैं यही कह रही थी कि कॉल लगा रही, बहुत दिन से लग नहीं रही है।
0: अच्छा, तो फाइनली आज लकी डे हो गया आपका।
1: जी बहुत दिन से लगा रहे हैं, बकरा इससे पहले से।
0: अरे कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं तो एक दिन सफल जरूर होती है। कुछ कहना चाहते हैं? कोई मैसेज नहीं है आपके पास?
1: नहीं, कोई संदेश नहीं है, बस यही है मैं बहुत खुश हूँ मेरी कॉल लग गई।
0: अच्छा ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। और देखते हैं कि एक और फ्रेंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं वो कौन है। हेलो।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छा, अपना बताइए आप कैसे हैं?
0: एकदम बढ़िया। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो नाम बताइए।
2: साहिबा अंसारी बोल रहे हैं, महवागंज लखीमपुर खीरी से। इस वक्त हम बोल रहे हैं बड़ा गाँव बढ़ेरा से लखीमपुर खीरी।
0: क्या बात है साहिबा, क्या आप मैसेज देना चाहती हैं लोगों को?
2: मैम संदेश ये देना चाहते हैं, हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं, सुबह के टाइम जल्दी काम किया करें, 11 बजे के बाद काम ना करें क्योंकि बहुत तेज धूप हो जाती है, शाम को फिर काम कर लिया करें।
0: बिल्कुल भाई, जितने भी किसान भाई हैं उनको खासकर धूप में खड़े होकर काम करना पड़ता है, बहुत सी चीज।
2: अपने गाँव आए हुए हैं, यहाँ ददिहार में आए हैं, यहाँ सब दूर दूर तक खेत दिख रहे हैं, सभी भाई काम कर रहे हैं।
0: अरे हाँ, तो वही देख कर आपको रियलाइज हुआ कि ये बात कहनी चाहिए लोगों से।
2: जी
0: बिल्कुल, और अगर आसपास पेड़ की छांव होती है तो वहाँ पे बैठ के भी आराम से रह सकते हैं।
2: यहाँ पेड़ और बहुत लगे हैं, हम गांव में आए हैं तो गांव पेड़ में बहुत लगे हुए हैं।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच साहिबा इतना प्यारा मैसेज देने के लिए।
2: जी हम कुछ नाम भी लेना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
2: सबसे पहले मैम आप आशीफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, वकील अहमद भाई है, बाबू अंसारी भाई है, सत्यम कुमार भाई है, गुलाब सिद्दीकी अप्पे है, समाप्पे है, साजी अंसारी है, महक अंसारी है, महक अंसारी है, और हम जितने दस है सभी लोगों को बस यही संदेश है कि धूप में काम ना करें।
0: कोई छूटा तो नहीं? चलिए, सबके नाम आपने ले लिए और सभी को गुड मॉर्निंग। और भाई साहिबा का कहना है कि कोई धूप में काम ना करे।
2: जी मैम बिल्कुल, थैंक यू फोन उठाने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।

0: भाई काला चश्मा याद आ जाता है क्योंकि धूप बहुत तेज है और काला चश्मा लेकर निकला करिए, गमछा वमछा लेकर निकला करिए, कुछ ऐसे ही मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन है। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैम मैं आकांक्षा देवी सोची से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, आज आकांक्षा आकांक्षा से बात करेगी।
1: यस मैम।
0: तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आकांक्षा?
1: मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने समय गर्मी ज्यादा हो रही है, तो मतलब लोग कहीं ज्यादा धूप में निकले ना, और जो लोग जाते हैं वगैरह इतने समय हो रहा, तो उनको जितना खाना हो उतना ही प्रसाद वगैरह लें, ज्यादा ना लें, मतलब वेस्ट करते फेंकते हैं।
0: बिल्कुल, भंडारे का टाइम है और बहुत ज़्यादा खाना लेते भी हैं और उसके बाद वेस्ट करते हैं, वेस्ट करने के बाद ऐसे वैसे कहीं भी फेंक देते हैं।
1: यस मैम।
0: बिल्कुल, आप डस्टबिन का यूज़ करिए क्योंकि जिस तरह से आप अपने घर को साफ रखते हैं उस तरह से अपने शहर को भी, अपने देश को भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू सो मच।
1: पहली बार कॉल लगा है।
0: हाँ, और कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: मैम और कुछ नहीं, बस
0: बस ओके, थैंक यू सो मच आकांक्षा कॉल करने के लिए। तो भाई देखिए, भंडारे में लोग इतने लोग जाते हैं और खाना लेते हैं, वेस्ट करते हैं, वेस्ट करने के बाद उसको इधर उधर फेंक देते हैं, तो ऐसा मत करिए। प्रसाद है, प्रसाद को उतना ही लीजिए जितना आपकी ज़रूरत है, और खाने के बाद जो दोने हैं, पत्तल हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं उनको यथास्थान, या कि डस्टबिन है, अगर आपको डस्टबिन नहीं दिखता तो आप कोई कैरी बैग है उसमें कैरी कर लीजिए, जहाँ पे आपको डस्टबिन दिखे वहाँ पर फेंक दीजिए। एक और हमारे साथ दोस्त जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग मैडम जी।
0: सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: मैडम जी, मैं सुखदेव कुमार प्रजापति, अबोर, जिला फाजिलका, पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: क्या बात है सुखदेव जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे लिसनर्स को?
2: वैसे यही जी मैडम जी, जो पंछी है उनको पानी, ठंडा पानी डाल के रखना चाहिए जी, और दाना दूना रखो जी उनके लिए, और घर से बाहर निकलो तो सिर पे कपड़ा जो चश्मा चश्मा लगा के निकलना चाहिए जी।
0: हाँ चश्मा, बिल्कुल चश्मा वगैरह लगा के और सर पे कपड़ा रख के निकलना चाहिए, और साथ ही साथ जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं वैसे पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए।
2: पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए जी।
0: अच्छा, आप रखते हैं दाना पानी?
2: हाँ जी, मेरे घर फालसे का पौधा लगा हुआ जी, बहुत बढ़िया
0: जी।
2: उसके फालसे लगे जी, चिड़िया लेके जा रही है, पानी रख रखा जी, पानी पी रही है और चिड़िया लेके जा रही है जी, और फालसा खाती है जी।
0: अच्छा फालसा, क्या बात है, बड़ी अच्छी याद दिलाई आपने, और आपने इंतजाम किए हैं, इस बात से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी
2: जी। मैडम जी
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए
2: जी। मैडम जी,
0: तो भाई देखिए कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस लेके लोग आते हैं और हमें उम्मीद होती है कि कुछ वैसा ही वो भी बर्ताव करते हैं, क्योंकि अगर आपके कहते हैं ना जहन में इतनी अच्छी बात है तो आप बेशक वैसा ही रिएक्ट करते होंगे, वैसा ही काम करते होंगे। और रही बात आपकी मेल्स की जिसमें बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, मोनोसेट हमें लिख रहे हैं, गणेश भगवान ने माता पिता को की परिक्रमा करके सब कुछ जीत लिया, और हम सभी अगर माता पिता की सेवा कर लेते हैं तो भगवान को भी आशीर्वाद हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि माता पिता ही भगवान है। मोनोसेट खालिसपुर भेल अमेठी से आप हमें मेल कर रहे हैं। बिल्कुल, माता पिता का दर्जा भगवान को ही दिया गया है, वो एकदम भगवान के समान है, तो उनकी सेवा कर लीजिए, आपकी बहुत ढेर सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आलोक साहू जी हमें मेल कर रहे हैं, ये संदेश है कि जो सही है वही कीजिए, बहुत शॉर्ट में लिखा है इन्होंने, जो आपका दिल कहे, जो आपकी आत्मा कहे कि यहाँ पर ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, उसको आप रियलाइज़ कर लेते हैं। जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हैं ना, तो अंदर से एक बार जो आपकी अंतर आत्मा होती है वो नॉक करती है कि ये गलत है। इसी के साथ छबी राम सिंह जी हमें लिख रहे हैं, रेनबो के दीवाने, मैं छबी राम सिंह, राजपूत, ज़िला फरुखाबाद से ये हमें मेल कर रहे हैं, नियमित श्रोता है, और कह रहे हैं कि सभी लोग ध्यान से सुने, हमें सभी को रेडियो सुनना चाहिए, हम सभी को, हमारे यही मैसेज है कि आज का रेडियो हमें हर प्रकार की जानकारियां मिलती हैं आज के रेडियो से, खेतीबाड़ी से जुड़ी, मनोरंजक समाचार, मौसम समाचार भी मिलता है, रेनबो से हमारे दिल की धड़कन है, और हमारा यही अनुरोध है कि सभी से रेनबो को ज्वाइन करें, क्योंकि रेनबो आज का नहीं सबसे बरसों पुराना साथी है। तो भाई थैंक यू सो मच, आपका ये स्पेशल मैसेज सिर्फ रेनबो के लिए है, और हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत देर से इनका ब्लिंक कर रहा है मैसेज, मोहम्मद आसिफ जी, और कह रहे हैं कि हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं हमें प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगता है। और संदेश है कि बिजली की बचत करें, बिना मतलब बल्ब ना जलाएं और ज़्यादा देर तक फ्रिज का दरवाज़ा ना खुला रखें, गर्म खाना ना रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सारे सौर ऊर्जा का आप प्रयोग करिए, उस पर फोकस करें जिससे बिजली की बचत होगी। कुछ नाम ले लीजिए, बिल्कुल आप के नाम जो आपने भेजे वो लिया जाएगा। सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा और गुलाब शाह का नाम लिया गया है। थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए, और इसी तरह से आपके मेल्स का रहेगा हमें इंतजार। लेकिन इंतजार नहीं करना होगा आपको ट्रैक्स का, तो एंजॉय करिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: बिल्कुल भीगने की उम्मीद आप कर रहे होंगे कि भाई कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम भीग सके, लेकिन ये तब होगा जब बारिश आएगी, इसका आपको इंतजार करना होगा। बहरहाल प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, जिसमें हमारे पास एक बहुत ही प्यारा मैसेज है जिसमें संदेश दिया है महेंद्र दीपन जी ने। जी हाँ, और आपको भी गुड मॉर्निंग नमस्ते। ग्राम रूड़ नागौर राजस्थान से आप हमें मेल कर रहे हैं और बहुत ही प्यारी सी ये जैसा कि हर बार पिक्चर बनाते हैं और हमें सेंड करते हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि बच्चे किस तरह से मोबाइल में उलझे हुए हैं एक साइड में, और एक साइड में अगर उनके पास ढेर सारे खिलौने हैं, एक्टिविटीज़ हैं, किताबें हैं, और नेचर से कनेक्शन है, खेल कूद है, और फैमिली टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो उनमें क्या डेवलपमेंट होता है। महेंद्र दीपन जी, वाकई आपकी मेहनत बहुत सुंदर होती है। जब लिखा है इन्होंने, जो पिक्चर बनाई है उसमें लिखा है कि अगर बच्चे मोबाइल देखते हैं कंटिन्यू, तो जो नीली रोशनी ब्लू लाइट होती है, उससे आंखों की रोशनी कम होने का खतरा है और एकाग्रता में कमी आती है, याददाश्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घंटों मोबाइल देखने से गर्दन, पीठ और आंखों की भी दर्द की समस्या है, नींद में कमी होती है, तनाव, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। महेंद्र दीपन जी, ये बात बच्चों के साथ तो लागू होती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बड़े भी अगर कंटिन्यू मोबाइल देखते तो सेम इफेक्ट उन पर भी आता है। और दूसरी ओर आपने बड़ी प्यारी सी तस्वीर बनाई जिसमें कुछ बच्चे खिलौने खेल रहे हैं, किताबों से दोस्ती कर रहे हैं, प्रकृति के करीब जा रहे हैं, खेलकूद व्यायाम कर रहे हैं और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। तो इससे बच्चों का जो बचपन अनमोल है, इसे मोबाइल की कैद में मत कैद करें। और आज का संकल्प इन्होंने लिखा है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उन्हें बेहतर और स्वस्थ भविष्य दें। थैंक यू सो मच, आपके ये जो प्रयास होते हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि इतनी क्रिएटिविटी से आप ये हमें भेजते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें कि आप इतनी कोशिश करते हैं। शीलू मौर्य जी का हमारे पास मेल आया है, मैम मेरा कहना है कि हम सबको पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग मोटर चालू करके अपना काम में बिजी हो जाते हैं ताकि टंकी से पानी भर जाता है और बहता रहता है। मैं गांव में रहती हूँ, वहाँ पे हैंडपंप से पानी आता है। मेरे यहाँ अब पानी, ससुराल में आई हूँ तो पता चला है कि यहाँ तो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और किसी टाइम पे पानी जाता टंकी में तो बहुत मुश्किल हो जाती है जब पानी ख़त्म हो जाता है टंकी में। बहुत सोच समझ के पानी का उपयोग करते रहें। देखिए, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना, उनका उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और इससे पहले कि हम थोड़ा सा और वक्त लें, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं कौन है वो हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: मैम, मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवर दीवानों के शहर, जिला रायबरेली।
0: बहुत बहुत स्वागत है पिंकी, कैसे हैं आप?
1: थैंक यू दीदी, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे फ्रेंड्स को?
1: जी, सबसे पहले तो मंगलवार की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज बड़ा

0: मंगलवार है।
1: बिल्कुल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: हेलो
1: जी जी बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक।
0: जी मैम, मेरा मैसेज ये है कि मैम अभी गर्मियों का सीजन है और बच्चों की छुट्टी भी चल रही है, तो अपने बच्चों को अपने गांव को घुमाएं और बाग बगीचे भी दिखाएं और अपने गांव की विशेषताएं भी बताएं, ताकि बच्चों को गांव में बहुत ही अच्छा लगता है और उनको खेल भी खेलना सिखाएं।
1: बिल्कुल भाई, देखिए जो समर वेकेशंस का एक दौर था, जब अगर किसी को कहीं भी जाना होता था तो बहुत ज़्यादा दूर घूमने नहीं जाते थे, सिर्फ नानी का घर होता था या अपने गांव जाते थे घूमने।
0: क्योंकि गांव में बच्चे जब आते हैं ना गर्मियों की छुट्टी में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और मेरे घर में मेरी दीदी की छोटी सी बिटिया है, वो भी मेरे यहाँ आई हुई है, वो गांव में रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है उसे, वो बोलती मैं गांव से कहीं नहीं जाऊंगी।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच
0: उसके
1: पिंकी,
0: चेहरे
1: बहुत।
0: पर एक अलग ही खुशी
1: हाँ
0: रहती है।
1: हाँ बिल्कुल, एक अलग ही खुशी रहती है। और जो बच्चे आज सिर्फ शहर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, और जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वो जब
0: क्योंकि मतलब बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो पढ़ाई की वजह से वो कहीं आ जा भी नहीं पाते हैं, तो मतलब एक गांव में जो खूब पल होता है, जो खूबसूरत एहसास होता है ना, सिर्फ
1: सिर्फ वहीं
0: एक
1: पे
0: साथ
1: पता चलता है।
0: बैठना, रेडियो
1: बिल्कुल
0: सुनना, बहुत अच्छा लगता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच पिंकी हमें कॉल करने के लिए।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्कार। तो ये थी हमारे साथ पिंकी, जिन्होंने बताया कि भाई देखिए, अगर आप गांव जाते हैं और समय कुछ निकाल करके, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो बच्चों को बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलता है। बस इसी तरह से हमें मेल करते रहिए, मैसेज करते रहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 11:49 हो चुका है हमारी क्लॉक में, तो बस एंजॉय करिए ये प्यारा सा ट्रैक।

अगर आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है तो इसे डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुने हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11 बजे से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। सुनना न भूले हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें आप बात करने के लिए हमारे फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर से 0522 2238 845, दूसरा फोन नंबर है 0522 2238 852। और कार्यक्रम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, 11:54 हो चुका है और अगले कार्यक्रम के लिए शिखा बिल्कुल तैयारी कर रही है हमारे पीछे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वक्त है कि हम आपके मेल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ले सकते हैं। रोशनी रावत हमारे पास मेल कर रही है, गुड मॉर्निंग, आपको भी प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, फटाफट से आपका जो संदेश है कि मेरा संदेश ये है कि वक्त कैसा भी हो सब गुजर जाता है, धैर्य रखना चाहिए सभी लोगों को, एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए। जिला उन्नाव से आप हमें मेल कर रही हैं और गीता सेठ जी का हमारे पास मेल आया है और कह रही हैं, आकाशवाणी ने रिश्तों को मजबूत किया है, जिस प्रकार पौधों को पानी की जरूरत होती है, हम लोगों को मनोरंजक जानकारी के लिए रेडियो आकाशवाणी की जरूरत होती है। हम घर में पकवान बनाते रहते हैं, घर के कार्य भी निपटा लेते हैं और आकाशवाणी सुना करते हैं, हम सभी आकाशवाणी के दीवाने हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार और कहते ना सपोर्ट देने के लिए। आंचल सेठ आपको भी गुड मॉर्निंग, कह रही है योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप है जो भारतीय समाज में हजारों सालों से पहले विकसित हुआ था, जिसके बाद लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए विभिन्न प्रकार के रोगों और अक्षमताओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल है। थैंक यू सो मच एक अच्छा सा मैसेज देने के लिए। भाई इंटरनेशनल योगा डे भी आने वाला है तो शायद उसी से कनेक्ट करते हुए आपने हमें ये मेल किया। श्यामू चौहान हमें मेल कर रहे हैं, सुबह की चाय सिर्फ एक आदत नहीं होती, ये वो छोटा सा सुकून होता है जो इंसान को कुछ देर के लिए दुनिया की भाग दौड़ से दूर ले जाता है। जितने भी चाय प्रेमी हैं उनके लिए आपने लिख दिया, कभी खामोशी के साथ, कभी बारिश की आवाज़ के साथ और कभी किसी अपनों की यादों के साथ। असल में चाय का स्वाद चीनी या अदरक से नहीं बल्कि उस वक्त की एहसास से बनता है जिसमें इंसान उसे पी रहा होता है, और हमारी सुबह की चाय थोड़ी दुआओं जैसी होती है, धीरे धीरे दिल को सुकून देती है। क्या बात है, आज तो आपका जो पूरा मैसेज है ना वो चाय, जितने भी चाय लवर्स होंगे उनके लिए आपने कर दिया। श्यामू चौहान जी थैंक यू सो मच। और कुछ नाम ले लूं जो इन्होंने भेजे हैं, राजकरण, हरिओम, सुनील, आकाश, संदीप और सभी दोस्तों को, तमिलनाडु से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आप सभी के मेल्स के लिए वारिस अली खान जी थैंक यू सो मच, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। और कहते हैं कि बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यासा भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया। क्या बात है, संदेश है कि मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा में दान करने से पहले अपने आसपास के लोगों को देखें, शायद आपकी दान की ज़रूरत इन लोगों को हो और आप इस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके मेल्स के लिए और 11:56 आपके मेल्स और कॉल्स का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। और अगला सफर आप तय करेंगे, अगले प्रोग्राम को आप इंजॉय करेंगे शिखा के साथ, आकांक्षा को दीजिए अनुमति, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे। तो वाइंड अप हो रहा है, अगला प्रोग्राम आप शिखा के साथ इंजॉय करेंगे और यहीं पर बने रहिए ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने ऐतिहासिक उलगुला आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को जागृत किया और जनजातीय समुदायों को अपने अधिकारों, पहचान और गरिमा की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नमन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वस्त्र क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप व्यापक कौशल विकास कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उद्योगों को समय पर प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। कौशल विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य केवल प्रशिक्षण तक सीमित न होकर युवाओं को रोजगार और आजीविका से जोड़ना होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सुचारू और सफल संचालन के लिए शीर्ष अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबान जिले का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संभागीय आयुक्त ने यात्री निवास, चंदरकोट में आवास, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, बिजली की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था सहित विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: शहर आपका, धुन आपकी।

और आज है ट्यूसडे, यानी सजने सवरने और खुद को स्टाइलिश बनाने का दिन। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस करा आपने भाई कि आज हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। पर बातों का ये सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

जी दोस्तों, 12:03 और शिखा हो गई है हाजिर आपका अपना प्रोग्राम शत्रुपा लेकर, जिसमें हर दिन कुछ खास होता है हमारी सुंदर सुंदर महिलाओं के लिए, जो बना देता है उन्हें हर क्षेत्र में एक्सपर्ट।

0: मुस्कुराइए
1: कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

दोस्तों कहते हैं कपड़ों में नहीं किरदार में होता है फैशन, कपड़ों में नहीं किरदार में होता है फैशन, आत्मविश्वास से चलना यही है असली पैशन। हम महिलाओं का सेंस वो जादू है यारों, हम महिलाओं का सेंस वो जादू है यारों, जो सिंपल सूट को भी बना दे हाई फैशन। सही कहा ना, क्योंकि अब हमें उसी सेंस का यूज करना है। जी हाँ, उसी सेंस का यूज करना है खुद को स्मार्ट और स्टाइलिश दिखाने में। तो कैसे हम खुद को दिखाएं स्मार्ट और स्टाइलिश? तो आपको बता दूं कि आपको अपनाना होगा 7 आउटफिट रूल। जी हाँ भाई, आपको जब कहते हैं ना स्टाइलिश और स्मार्ट दिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें फॉलो करने होंगे कुछ ऐसे 7 आउटफिट रूल। दोस्तों अक्सर कपड़ों से भरी अलमारी, फिर भी रोजाना एक ही सवाल, आज क्या पहनूं? इसका एक ही सॉल्यूशन हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। और वो है फैशन का नया फॉर्मूला, जिसे कहते हैं 7 आउटफिट रूल। तो भाई अभी हम जानेंगे कि 7 आउटफिट रूल होते क्या हैं, लेकिन एक गाना मेरा बड़ा मन कर रहा है कि भेज दूं आप तक। तो चलिए एक प्यारा सा गाना आ रहा है आप तक, पहले उसको एंजॉय करते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या होते हैं 7 आउटफिट रूल।

जी दोस्तों, 12:19 का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भाई फैशन की, क्योंकि ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन हम बात करते हैं सजने संवरने की और खुद को स्टाइलिश बनाने की। दोस्तों, आज मोस्टली वुमेन घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करती हैं और घर के जब सारे काम निपटा कर खुद को तैयार होने की बारी आती है तो सबसे बड़ा एक सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि भाई क्या पहनूं? अलमारी कपड़ों से भरी फिर भी कुछ नहीं पहनने लायक, तो लगता है ना कि क्या करना चाहिए। तो भाई आपको फॉलो करना है एक स्मार्ट फैशन फॉर्मूला जिसकी मदद से आप बहुत ही सीमित कपड़ों से पूरे हफ्ते के लिए अलग अलग और स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं। बस थोड़ा सोच समझकर कपड़ों को मिक्स करें और सही एक्सेसरीज के साथ जोड़ दें और अपनी पर्सनालिटी को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के सामने पेश करें तो ये आपके लिए ना बहुत इजी हो जाएगा और आप दिखेंगी एलिगेंट। तो ये जो 7 आउटफिट जो फॉर्मूला आज हम बात कर रहे हैं उसका ये पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। तो फॉलो तो आप करिए और सोचिए इसके बारे में कि हमारे वार्डरोब में कितने ढेर सारे कपड़े हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करना भी चाहिए क्योंकि वो कपड़े जो अलमारी में भरे पड़े हैं वो हमने बड़े शौक से खरीदे थे, तो भाई अब वो टाइम आ गया है आपको उसको यूटिलाइज करने का कि कैसे हम सीमित कपड़ों के अंदर जो हमारे पास हैं उसी में ही अपने को एलिगेंट दिखा सकते हैं। तो आप इसके बारे में सोचिए और साथ ही ये प्यारा सा ट्रैक इन्जॉय करिए, बहारा बहारा। जी हाँ, चलिए इन्जॉय करते हैं ये ब्यूटिफुल सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

जी दोस्तों, 12:27 का वक्त और इतनी ढेर सारी बातें हम आपसे करते हैं। तो देखिए, आपकी हेल्थ का हमें इतना ज्यादा ध्यान रहता है क्योंकि आप हमारे हैं दिल के बहुत करीब। तो आपसे कुछ पूछ लूं, तो भाई आप हमें जरा ये बताइए, कहीं आपको खाना निगलने में परेशानी तो नहीं होती, या खाते पीते समय बार बार खांसी तो नहीं आती? तो ये अगर हो रहा है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। हाँ, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते पीते समय बार बार खांसी आती है तो यह डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन, देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से बुधवार को। तो सुनना ना भूलें हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम, और हमारा फोन

दिन है जो फोन नंबर है हमारा 0522-2238-845 0522-2238-852। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।

तो क्यों हुई ना काम की बात? तो इसी तरीके की काम की बात हम आपके लिए लेकर आते हैं। बस आपको रहना क्या, करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि जुड़ना होता है हमसे और जुड़ के हमसे प्यार भरी बातें करनी होती है मेल्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। और बस आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ पे, लखनऊ की जिस पे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं शत्रुपा।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जी दोस्तों, 12:35 का वक्त और आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में। और आज हम बात कर रहे हैं 7 आउटफिट रूल के बारे में। जी हाँ, जिसको हम महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम महिलाओं को क्यों ज़रूरत है, क्योंकि भाई हमारे पास कपड़े तो बहुत होते हैं वार्डरोब में, लेकिन सच में ये एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है कि क्या पहनूं, ये एक सवाल जो रहता है ना, वो हर महिला के दिमाग में ज़रूर आता है। तो आपको बता दूं, ये जो 7 आउटफिट रूल की जो शुरुआत होती है ना, ये होती है एक स्मार्ट बेसिक वार्डरोब से, जिसमें आपको शामिल करना होगा ऐसे कपड़े जो आप हर मौके पर मैच कर सकें। जैसे सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, एक फॉर्मल ब्लेजर, न्यूट्रल कलर की स्कर्ट, कुछ बेसिक टॉप। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे सफ़ेद शर्ट हो गई, ब्लैक ट्राउज़र हो गया, फॉर्मल ब्लेजर हो गया, न्यूट्रल कलर की स्कर्ट, कुछ बेसिक टॉप्स जो हो गए, एक क्लासिक डेनिम जो आपके वार्डरोब में होना चाहिए और एक स्टेटमेंट कुर्ती होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें आपकी वार्डरोब में हैं, और डेफिनेटली होंगी, और अगर है तो आपकी जो समस्या है ना, वो बहुत हद तक हल हो गई है। इस रूल की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि कम कपड़ों से भी आप ज्यादा तरीकों से खुद को स्टाइलिश दिखा सकती हैं।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: जी 12:43 का वक्त और आज शत्रुपा प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 7 आउटफिट रूल की, जो आपको दिखाएंगे एलिगेंट और वो भी सीमित कपड़ों में। और ये बात सुनकर कितना अच्छा लगता है ना कि क्या ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि हम बहुत सीमित कपड़ों में बहुत एलिगेंट और गॉर्जियस लुक पा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास ना, हम महिलाओं के पास इतनी क्रिएटिविटी होती है। अगर आप क्रिएटिव हैं

मिक्स एंड मैच करना जानते हैं तो भाई आप समझ लीजिए कि आप बन गए हैं लकी, क्योंकि आपको वो कला आ जाएगी जिसके लिए लोग सोचते हैं कि हमें ये कला आ जाए। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको क्रिएटिव और मिक्स एंड मैच करना सीखना होगा। जैसे अगर आप सफ़ेद शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र और ब्लेज़र पहने तो नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को वही सफ़ेद शर्ट स्कर्ट के साथ ट्राई कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने कि वही जो सफ़ेद शर्ट आपने पहनी थी उसको आप ब्लैक ट्राउज़र के साथ ट्राई कर सकती हैं और पा सकती हैं एक एलिगेंट लुक। और नेक्स्ट डे यानी वेंसडे को ब्लैक ट्राउज़र स्टेटमेंट कुर्ती और डेनिम पहन सकती हैं आप एक स्मार्ट लुक के लिए। तो भाई इस तरीके का क्रिएटिव दिमाग लगाकर आप ऑफिस में, जी हाँ ऑफिस में हर दिन एक नया लुक और फ्रेश लुक पा सकती हैं। तो आप इसके बारे में सोचिए और ज़रा आज अपनी जो वार्डरोब है उसको पूरे बेड पे फैला दीजिए, उस पर कपड़े सारे फैला दीजिए और देखिए कि हर पूरे हफ्ते हमें कैसे कैसे मैच करना है। तो वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, लेकिन एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, उसको इंजॉय करते हैं फिर बातें करते हैं आपसे ढेर सारी। कहीं जाइएगा नहीं, बस सुनते रहिए 100.7 FM ब्रेन, वो धड़कन लखनऊ की।

जी 12:51 का वक्त, और आज आपने ये जाना ही कि कैसे मिक्स एंड मैच सेंस का यूज करके दिखना है सुंदर, पर एक चीज जो आपके मिक्स एंड मैच खेल में जान डाल सकती है वो है एक्सेसरीज। जी हाँ, एक्सेसरीज आपके जो क्रिएटिविटी है और मिक्स एंड मैच का जो सेंस है ना, उसमें जान डाल सकती है। तो आप हर रोज अपनी ड्रेस के हिसाब से स्टेटमेंट इयररिंग्स, स्कार्फ, बेल्ट एंड वॉच, मिनिमल ज्वेलरी और बोल्ड बैग या शूज ट्राई कर सकती हैं, जो ना आपके लुक को बिल्कुल पॉलिश कर देगा। जी हाँ, आपको आप बिल्कुल इतना सुंदर दिखने वाली हैं, मतलब मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि आप कैसे लगेंगी अपनी हर ड्रेस के साथ, हर पूरे वीक में जो आप ड्रेसेस पहनने वाली हैं, और जो ड्रेसेस आप पहनेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है एक्सेसरीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जो एक्सेसरीज आउटफिट के साथ आप ट्राई करेंगी वो आपकी पर्सनालिटी को निखार कर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको कहीं हद तक वो बढ़ा देगी। तो एक चीज और है जो बताऊंगी आपको, लेकिन एक प्यारा सा गाना भेज दूं, फिर बात करते हैं कि एक और चीज़ क्या है जिसको हमें अपने ये जो 7 आउटफिट रूल हैं उसमें यूज़ करना है। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 107 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, अपनी दोस्त शिखा के साथ।

जी बिल्कुल, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और ये जब आप रूल जो फॉलो करेंगे ना, आउटफिट, 7 आउटफिट रूल जो आज हम लोगों ने बात करी, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करी और बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, तो जब ये 7 आउटफिट रूल जब आप ट्राई करेंगे तो सब आपसे यही कहेंगे, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये रूल ही कुछ ऐसे हैं, जब आप इसको पूरे हफ्ते ट्राई करेंगे ना तो बिल्कुल लगने वाले हैं एलिगेंट। तो चलिए एक बात, एक कुछ और चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचा दें। तो श्रोताओं, एक और रूल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रंगों का चयन। तो आपको ऑफिस के लिए ब्राइट या ओवर डिज़ाइन आउटफिट से बचना होगा। कोशिश करें कि न्यूट्रल या पेस्टल शेड्स में आपके आउटफिट हों। अगर आपको ब्राइट रंग पसंद है तो कोई नहीं, आप वीकेंड या फ्राइडे आउटफिट की तरह इसे पहन सकते हैं। और दोस्तों, ये 7 आउटफिट रूल जो है ना, ये तभी काम करता है जब आप प्लानिंग से चलें। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको प्लानिंग करना होगा। तो क्या करेंगे हम, रविवार को 15 मिनट का टाइम निकाल कर पूरे हफ्ते के लिए आउटफिट तैयार कर लें, जिससे आप हर दिन के लिए पहले से ही रेडी हो जाएं। और क्या पहनूं वाला जो प्रश्न है ये आएगा ही नहीं। तो भाई, इतनी ढेर सारी बातें तो आपसे कर ली, और मुझे पक्का पता है कि जो 7 आउटफिट रूल जो आज हमने बात करी है, ये आप अपनी डेली रूटीन में बिल्कुल अपनाएंगी। तो इसी के साथ अपनी दोस्त शिखा को दीजिए इजाज़त, क्योंकि समय कह रहा है टिक टिक करती हुई कि स्टूडियो क्लॉक कह रही है कि टाइम अब फिनिश हो गया है और वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम शत्रुपा को। लेकिन आपको बने रहना है हमारे साथ और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि भाई आपका ये जो प्रोग्राम है अगला, वो भी आप एंजॉय करेंगे अपनी दोस्त शिखा के साथ। और प्रोग्राम का नाम क्या है, होठों पे तेरी बात। तो तब तक के लिए आप अपने को

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतना ही विकास की गति भी तेज होगी। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही प्रदेश सरकार की तरफ से व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। विशेष आपात परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में 10 जनपदों में SRG की स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए 240 कर्मियों को NDRF, BSF, ITBP, ICISF तथा अन्य विशेषज्ञ संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल लखनऊ में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से शहरी औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन एवं आपात सेवा व्यवस्था को भी समय की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप निबंधक कार्यालयों को चरणबद्ध ढंग से पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि डिजिटल गवर्नेंस विभागीय सुधारों का प्रमुख आधार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश गतिविधियों और शहरीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनसुविधा केंद्रित बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा और असुविधा का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। 3 दिवसीय लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए आजमगढ़, बलिया, आजमगढ़ गोरखपुर, बलिया आजमगढ़ तथा वाराणसी सिटी गोरखपुर मार्गों पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर वाणिज्य विभाग द्वारा 24 घंटे हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। इन हेल्प डेस्क पर विशेष ट्रेनों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: शहर आपका, धुन आपकी, सुनते रहिए 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून आप सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को। 1:05 का वक्त और समय हो गया है आपके अपने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ। और जब शिखा होगी आपके साथ तो ढेर सारी बातें तो होंगी ही ना, पर बातें शुरू करने से पहले एक गाना एंजॉय करते हैं, फिर लौट कर आते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं आपसे।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का इफ्तिताह किया। इससे देही और आधे शहरी इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
1: एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में फायर और इमरजेंसी खिदमत डिपार्टमेंट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रियासत में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
0: एक दीगर मीटिंग में वजीर आला ने हैंडलूम और महकमे कपड़ा सनत और खादी और ग्रामोद्योग महकमे का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत लिबास और मलबूसात शोबे में सरमायाकारी प्रोडक्शन और रोजगार के नजरिए से मुल्क की सफे अव्वल रियासतों में अपनी शिनाख्त मजबूत कर रहा है। दरियसना वजीर आला ने डिप्टी रजिस्ट्रार दफातर को मरहलावार तरीके से पासपोर्ट खिदमत मराकज की तर्ज पर फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला ने कल लखनऊ में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन महकमे के कामों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती 2025 के तहरीरी इम्तिहान का आज दूसरा दिन है। यह इम्तिहान दो मीटिंगों में आज भी मुनक़िद किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मेरठ और आगरा समेत सभी जिला में बनाए गए इम्तिहान मराकज़ पर CCTV की निगरानी में यह इम्तिहान मुनक़िद हो रहा है। तकरीरी बोर्ड मुनसिफाना और नकल से पाक इम्तिहान कराने के लिए हुकूमत और ज़िला इंतजामिया के साथ पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। वाज़ह रहे कि तकरीरी के अमल के तहत कुल 32,679 ओहदों के 28,86,797 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त की थी। इम्तिहान के लिए पूरी रियासत में 1,183 इम्तिहान मराकज कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क़यादत में गुज़िश्ता 12 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बुनियाद पर हिंदुस्तान में काबिले ज़िक्र तरक्की हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी हुकूमत के 12 सालों के मुख्तलिफ शोबों में की गई कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम सेहत खिदमात के शोबे में हुकूमत की कोशिशों की जानकारी दे रहे हैं।
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की।
0: वजीर बनाए सेहत और कुनबे बहबूद जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में वजीर आजम महफूज जिचगी मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस स्कीम का खसूसी मकसद बेहद जोखिम वाले हमल का जल्द पता लगाना और फौरी इंतजाम करके माँ और बच्चे की शरेआमवाद को कम करना है। इस प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में जिचगी की सेहत खदमात को मजबूत बनाने में मदद की है। कौमी इम्तिहान एजेंसी NTA ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले NEET UG दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहरों की फहरिस्त जारी कर दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर की जानकारी हासिल कर

सकते हैं। और रियासत में तेज धूप, शदीद गर्मी और उमस से अवामी जिंदगी मुतासर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मशरकी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में, खसूसी तौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वांचल में मौसम खुश्क रहेगा और शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

जी दोस्तों, 1:16 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात। दोस्तों, जीवन का हर पल अनमोल है। जैसे समय बीतता जाता है, हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और वही पल जो बीते थे वो जिंदगी की याद बन जाते हैं और उन्हीं यादों को अक्सर हम याद करके हंसने लगते हैं। होता है ना कि कई कई चीज़ ऐसी होती हैं जो हमने बचपन में करी होती हैं और उन चीज़ों को हम अक्सर याद करते हैं, तो क्या होता है, एक छोटी सी स्माइल हमारे चेहरे पर आ जाती है और सोचते हैं कि क्या हम सच में ऐसा भी करते थे। आज आपको वही लम्हे हमसे शेयर करने हैं। जी हाँ, वही लम्हे हमसे शेयर करने हैं कि, और ये बात कहने का मतलब ये है कि बचपन की कोई ऐसी बात जो आज भी आप याद करके हंस देते हैं और वो याद आपको गुदगुदा देती है, तो बस वही याद हमसे शेयर करनी है। और शेयर करनी है, कहाँ शेयर करनी है? जी हाँ, शेयर करनी है हमारी ईमेल आईडी पर, और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। तो बस खो जाइए बचपन में और जाइए पीछे, जल्दी बैक चले जाइए और ढूंढिए उसमें से कोई इतनी प्यारी हुई होंगी तो बहुत ढेर सारी, लेकिन एक ऐसी घटना जो आज भी आपको याद है और वो हंसाने वाली घटना, तो वो आप हमसे शेयर करिए, बिल्कुल शेयर करिए। और हमें है आपकी मेल्स का इंतज़ार, और साथ ही ये प्यारा सा ट्रैक भी इंजॉय करिए। और इंजॉय करते करते सोचिए कि हमने क्या ऐसा किया था जिसको सुनकर आज भी हम हंसने लगते हैं।

जी, 1:22 का वक्त और कितनी सही बात कह दी इस गाने ने, तू है तो मैं हूँ। और वही जो फील है ना, वो आपके साथ भी आता है, जो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और दोस्तों देखिए, आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बातें करते हैं हम, बातें आप तक पहुँचाते हैं और आप हमसे अपनी राय शेयर करते हैं, तो आपको एक और भी बहुत ज़रूरी सूचना दे दें, कुछ बता दें आपको इम्पोर्टेंट, कि आपको अगर खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते पीते समय बार बार खांसी आती है, तो यह डिसफेजिया का संकेत हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल इसको अनदेखा नहीं करना है, ये डिसफेजिया का संकेत हो सकता है। और डिसफेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार को दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन, देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना ना भूलें हमारे चैनल यानी एफएम रेनबो 100.7 एफएम, जो है धड़कन लखनऊ की, नेशनल डिसफेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। और हमारा फोन नंबर है 0522-2238845। मैं नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ, 0522-2238845। और एक और फ़ोन नंबर है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, 0522-2238852। फिर से रिपीट करती हूँ, 0522-2238852। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnau@gmail.com। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जी दोस्तों, 1:31 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं होठों पे तेरी बात, जिसमें आज हमने आपको विषय दिया था कि बचपन की कोई भी ऐसी याद जो आज भी आपको गुदगुदा देती है। जी हाँ, उसको सोचकर आप खुद ब खुद हंसने लगते हैं। तो बस वही याद हमसे आपको शेयर करनी, और हमारे पास बहुत ढेर सारे मेल आ गए हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारे पास मेल आया है गीता जी का, लिखती हैं जी को, दीदिया जी को राम राम। भाई आपको भी राम राम। जब हम बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते थे तो यह दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती थी। आंगन की गीली मिट्टी में खेलना, आम के पेड़ों की छांव, और दोपहर में दादी नानी की गोद में सिर रखकर सो जाना, यही असल जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। तो बहुत अच्छी याद इन्होंने लिखी है, लेकिन मतलब क्या ये याद सोचकर आप हंसने लगती थी? तो याद किसी भी तरीके की होती है, अगर आपको खुशी देती है तो बस वही खुशी आज आपको हमसे शेयर करनी है। और बहुत ही प्यारी बात इन्होंने शेयर करी कि आंगन की वो गीली मिट्टी और आम के पेड़ों की छाया और साथ में दादी नानी की गोद में सिर, तो भाई ये जो इमेजिन करके एक खुशी मिलती है ना, तो वो किसी चीज़ में मिल नहीं सकती। और मोनू सेठ जी का, भैया मोनू सेठ जी ने हमें मेल किया है, बचपन में रोना वो आज भी हंसना ही लगता, समझ ये नहीं आता कि क्या मैं इतना शरारती था। एक बार आम के बाग में बहुत से आम लगे हुए, बारिश का मौसम था, मैं और मेरे दोस्त बड़े भैया सभी लोग निकल पड़े। पहले ही पता लगाया कि जो रखवार है वो बजेजन करने गया है या नहीं, सब एकदम हम सबके सोच के हिसाब से चल रहा था। और हम भैया नीचे आम बीनने के लिए चुने गए, क्योंकि गिनती फर्स्ट आती थी, अरे वाह, कि इतने आम टूट चुके हैं। और 3 मित्र लोग चढ़ गए थे आम तोड़ने के लिए, कुछ ही आम टूटे और रख कर दौड़ते हुए हम पहुंच गए। भैया तो आम छोड़कर भाग निकले, लेकिन जो मित्र पेड़ पर चढ़े थे उनमें से 2 उतर के भाग गए, एक को पकड़ लिया और धुनाई हो गई। वाह क्या बात है। और उसी की वजह से सबका पता चल गया कौन कौन था। फिर क्या सबके घर पर शिकायत पहुंची, अम्मा जी ने हमारी खूब धुनाई की और कान पकड़कर उठक बैठक कराया, और बड़े भैया जी बस उठक बैठक ही लगाते रहे, और तब से आम तोड़ने नहीं गए, ना ही जाएंगे, क्योंकि वो बचपन अब आएगा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और कितनी अच्छी बात आपने शेयर करी कि कहाँ 3-4 लोग मिलकर आम तोड़ने जाते थे, और वो एक सीन भी मतलब अलग ही लगता है जब आज अगर आप सोच लीजिए तो। तो बहुत प्यारी सी आपने अपनी जो क्या कहते हैं याद है वो हमसे शेयर करी। अजीत कुमार जी ने हमें मेल किया है, इन्होंने लिखा है जिला उन्नाव तहसील हसनगंज के रसूलपुर बकिया गांव से, बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, 25 वर्ष की उम्र है, मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट की शुरुआत 2025 से हुई थी जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं हिंदुस्तान अखबार में पत्रकारिता करता हूँ, 2025 में मुझे लॉटरी के माध्यम से ठीक है, इन्होंने मतलब बहुत कोई ऐसी, अजीत जी आपको कुछ ऐसी मुझे लगता है याद शेयर करनी चाहिए थी ना, कि जिसको आप भी

अभी भी हंसते हैं उसको याद करके, और हम भी थोड़ा हंस लेते हैं, और हमारे जितने लिसनर्स सुन रहे हैं ना वो भी खुश हो जाते हैं कि भाई इतनी प्यारी सी याद है। तो चलिए आप हमसे अपनी यादें ताज़ा करिए और सोचिए कि कौन कौन सी शरारतें आपने करी थी, और साथ ही एंजॉय करिए ये प्यारा सा गीत।

जी 1:40 का वक्त और आज आपकी दो शिखाएं आपके साथ प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आज हमने आपको दिया था अपनी राय भेजने के लिए, और वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बचपन की कोई भी ऐसी याद जो आज भी आपको गुदगुदा देती है, हंसा देती है, तो वो शेयर करना है आपको हमसे। तो देखिए, हमारे पास इतने ढेर सारे मेल आ गए हैं, और ये जो मेल है ना, वो सिर्फ मेल नहीं है, ये आपका प्यार है जो हम तक आया है। तो चलिए हम मेल पढ़ते हैं। सोनू परवाना जी ने हमें मेल लिखा है, और लिखा है सोनू परवाना, खालिसपुर ऊंचा गांव अमेठी से, जिंदगी की दौड़ भाग में खो सा गया मेरा बचपन, बेफिक्र मौज मस्ती वाला मेरा राज दुलारा बचपन, माँ के आंचल में छुप जाना नज़र उतारने वाला बचपन, भले ही भूखी हो मगर मुझे तृप्ति कराने वाला बचपन, आज क्यों खो सा गया या मैं बचपन के या बचपन को पीछे छोड़ आया, याद आते बचपन के दोस्त, उनके संग खेलना बतियाना, पर आज सब अपने काम में व्यस्त हैं, दूसरे से मिलना भूल गए हैं, बचपन ना मौज मस्ती, अब सिर्फ सर पर भार लदा रोज इनका उनका हिसाब रहा। मोनू भाई की स्टोरी से याद आया कि नाना जी की साइकिल के चेन में भी आम तोड़कर भागने में टूट गई थी, नाना जी से भी मार पड़ी थी। कितनी अच्छी बात इन्होंने मतलब एक कविता के माध्यम से हम तक पहुंचा दी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आज हम मिस करते हैं, है ना, बचपन कहीं खो सा गया, और वो बचपन हम लोग ये सब प्रे करते हैं काश एक बार लौट के आ जाता, लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं, जो ये मेमोरी है ना, वो आपके साथ जीवन भर रहने वाली है। तो चलिए हम मेल पढ़ते हैं। हमारे पास एमन का भी मेल आ चुका है। हेलो डियर शिखा दी, कैसी हो आप? शिखा दीदी, आज तो आप मेरे बचपन में मुझे ले गई, एकदम से सारी यादें मेरी आँखों के सामने आ गई। ऐसी बहुत सी यादें हैं जो बहुत ही मज़ेदार हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि बचपन से अभी तक बहुत जिद्दी हूं। अरे वाह, बचपन में भी मेरी जिदें ऊंट पटांग रहती थी। जैसे एक दिन मैंने जिद की कि गैस को खुला रखो और मैं उसको देखूंगी, गैस अगर बंद तो मेरा रोना शुरू। और दूसरी बात जो बहुत याद आती है, मैं सभी को पीछे से धक्का दे दिया करती थी। अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन बचपन है, बचपन में तो हम कुछ भी करते थे। मेरी इस हरकत से सब बहुत परेशान रहते थे, बस इसी हरकत से अम्मी ने मेरा स्वागत कर दिया, मतलब पिटाई कर दी। और तीसरी बात, मैं हर चीज़ को उल्टा बोलती थी, जैसे तकिया को कतिया। ऐसी बहुत सी यादें हैं, सोच सोच के हंसी आती है। लॉट्स ऑफ लव दी एमन नवाब संडीला से। देखिए कितनी कितनी मतलब होता है ना कि जब हमको कोई चीज़ दी जाती है कि इसके ऊपर हमें, तो हमारे पास हमें कितना खजाना खुल जाता है, और लगता है कि हमारे पास कितना कुछ है कहने के लिए और क्या क्या कहें हम। तो बस आप कहिए हमसे, और साथ ही एंजॉय करिए ये प्यारा सा गाना, और भी ढेर सारे मेल हमें करते जाइए और बताते जाइए कि भाई बचपन में आपने क्या क्या शैतानियाँ करी थी।

जी, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपने सुना अभी। कुछ तो है तुझसे राबता, जी हाँ रिश्ता तो है सबसे, कहते ना, लेकिन वो जो बचपन से रिश्ता है वो किसी से नहीं है, क्योंकि ये बचपन ही है जो हमको हर पल याद आता रहता है। अक्सर जब हम कहीं खो से जाते हैं, कभी बैठते हैं एकांत में, तो याद करते हैं कि वो बचपन कितना अच्छा था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ प्यार ही प्यार था, चारों तरफ प्यार था। और उस प्यार में ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती थी, जो डांट भी पड़ती थी, आज वो लगता था कि वो आज आज लगता है कि वो जो डांट पड़ती थी उसमें भी कितना ज़्यादा प्यार होता था। तो चलिए मेल पढ़ते हैं आप जल्दी से। आंचल सेठ जी ने हमें मेल किया है। बचपन चहकना भूल गई, उड़ना भूल गई, पिंजड़े बैठी मैना के जैसे, आसमान से क्यों लड़ाई हो गई, आज खेल का नाम सुनकर बचपन के समंदर गोता लगाया। जी हाँ, थोड़ा सा वर्डिंग्स इधर उधर हो गई है। मन को बहकाया, दौड़ाया, भगाया, फिर से आज खेल सबको हराया, चीखे चिल्लाई ठहाके लगाई, ये कौन थी आज बिल्कुल समझ ना आई। जी हाँ, समझ तो बिल्कुल खो सी जाती है जब हम पीछे घूमते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या क्या शरारतें हमने बचपन में करी थी, और आज भी वही शरारतें करना चाहते हैं, लेकिन वो शरारतें जो करते थे वो टाइम अलग था, वो प्यार अलग था, वो बचपन अलग था। प्रवीण जी का मेल आया है हमारे पास। बचपन में मुझे गड्ढे खोदने की आदत थी, कोई खेलने के लिए नहीं आता था तो मैं एक लकड़ी लेता था और गड्ढा खोदना शुरू कर देता था, फिर उसमें पानी भर देता था। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई कि मैं तो हंस रही हूँ और साथ में जितने हमारे लिसनर्स हैं ना वो भी हंस रहे होंगे। और एक ये खेल में देखिए ना, इन्होंने कितनी अच्छी चीज़ कर दी कि ये गड्ढा खोदते थे और उसमें पानी भरते थे, तो वाटर सेव भी करते थे ये।

मोहम्मद आसिफ जी ने हमें मेल किया है हैदराबाद तेलंगाना से। सुन रहा हूँ मैम, बचपन में इतनी शरारती थे कि मोहल्ले में अगर कोई बच्चा किसी से लड़ाई करता था तो न्याम मेरा आता था और वही मैं सोच कर हंसता हूँ कभी कभी। मैम जब मैं क्लास वन में था तो स्कूल में भाग जाता था पूरा दिन घूमते थे। एक दिन टीचर ने हमको अच्छे से पिटाई करी क्योंकि पूरा स्कूल के लीडर में मैं था। अच्छा, पूरे स्कूल के ही लीडर थे और स्कूल से अक्सर ही भाग जाते थे इसलिए पिटाई भी हो जाती थी। तो कितनी अच्छी अच्छी यादें हैं। तो यादें अभी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे पास है अभी समय 10 मिनट बचा हुआ है। तो आप हमसे अभी अपनी और भी यादें जो आपको याद आ रही हैं और अभी आपने, और वो यादें आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते तो भाई हमसे शेयर करिए, हम तो हैं आपकी बातें सुनने के लिए। गुलफ्सा सिद्दीकी ने हमें मेल किया है। हेलो, गुड आफ्टरनून शिखा मैम, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से। मैम मैं बचपन में बहुत शरारती थी। मैम मैं और मेरे सब दोस्त किया करते थे जब दिवाली आती थी तो उसमें दिए जलाए जाते थे घर के, यहाँ खेतों में भी जलाते थे तो हम लोग वो बुझा कर बहुत खुश होते थे। सुबह होते ही उन दियों से तराजू बनाते थे और बहुत खेलते थे। अब जब दिवाली होती है तब मुझे वो सब याद आता है और बहुत हंसती हूँ। तो कितनी अच्छी गुलफ्सा ने बात करी कि ऐसी छोटी छोटी सी जो शरारती होती है ना, और आज भी हम देखते हैं लेकिन हमारे बच्चे उस तरीके से अब शरारतें नहीं करते। शरारती वो बहुत हैं लेकिन जो हम लोग करते थे वो लगता है कि अभी भी नहीं होता है। तो चलिए एक प्यारा सा ट्रैक हम भेज रहे हैं आप तक, एंजॉय करते हैं। खैरियत पूछो, तो भाई एक दूसरे की खैरियत, जो बचपन में आपके दोस्त इधर उधर हो गए हैं और बात नहीं होती तो ज़रा खैरियत ज़रा ले लीजिए क्योंकि बचपन की मित्रता होती है ना वो हमेशा रहती है साथ।

तो दूरियां चाहे जितनी भी हों भाई, उनको नज़दीकियों में बदलिए और भाई अपने प्यारे प्यारे पुराने जितने भी मित्र हैं उनसे एक बार बात ज़रूर करिए। हमारे पास मेल बहुत ढेर सारे आ गए हैं, हमारे पास समय कम है लेकिन हम कोशिश है कि नाम सबके ले लें। भैया मोनू सेठ जी ने हमें मेल किया, बसंत कुमार सिन्हा जी ने मेल किया है, सतीश अनेजा जी ने मेल किया है, बसंत कुमार सिन्हा जी ने, बेनित कुमार जी ने, अमन नवाब, प्रवीण आंचल सेठ खालिशपुर से, मोहम्मद आसिफ, गुलफसा सिद्दीकी, अमन नवाब, सोनू परवाना, महेंद्र दीपन जी ने मेल किया है, पवन कुमार, सुधाकर जाधव जी ने मेल किया है, अजीत कुमार जी ने मेल किया है, बहुत लोगों ने मेल किया। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतने प्यारे प्यारे रिस्पॉन्स दिए और हमको तो हंसाया ही हंसाया और साथ में जितने हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए आपकी बातें सुनकर। तो अब दोस्तों समय कह रहा है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा, जी हाँ, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि अगला प्रोग्राम भी होगा फुल मस्ती और धमाल भरा और वो भी आप एंजॉय करेंगे अपनी दोस्त शिखा के साथ, रेनबो हॉटमेल। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों

कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही विकास की गति भी तेज होगी। डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। विशेष आपात परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में 10 जनपदों में एसआरजी की स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए 240 कर्मियों को एनडीआरएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ तथा अन्य विशेषज्ञ संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल लखनऊ में अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से शहरी औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। 3 दिवसीय लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए आजमगढ़ बलिया, आजमगढ़ गोरखपुर, बलिया आजमगढ़ तथा वाराणसी सिटी गोरखपुर मार्गों पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर वाणिज्य विभाग द्वारा 24 घंटे हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। इन हेल्प डेस्क पर विशेष ट्रेनों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने आज आगरा में महिला उत्पीड़न की रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक और जन सुनवाई की। बैठक में बबीता चौहान ने महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर आवश्यक कार्रवाई और इससे जुड़ी जानकारी ली। साथ ही मामलों को जल्द ही निस्तारण कराए जाने के निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आपको ये कि लिखने होंगे हमें मेल्स और साथ ही अपने पसंद के गाने और अपना डेडिकेशन कि किसको वो गाने आप सुनवाना चाहते हैं। तो हमें लिख भेजिए अपने मेल्स। और आपको मेल्स कहाँ करने हैं? मेल्स करने हैं हमें हमारी मेल आईडी पर। हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com।

दोस्तों कहते हैं जब नाव फंस जाए मझधार में तो पतवार नहीं हौसला काम आता है। जब नाव फंस जाए मझधार में तो पतवार नहीं हौसला काम आता है। मुश्किलें आती हैं आजमाने के लिए, जो डर गया वो जमाने में हार जाता है। जी हाँ, इन्हीं इंस्पिरेशनल लाइंस के साथ आगाज हो चुका है कार्यक्रम रेनबो हॉटमेल का, जिसमें आज आपकी दोस्त शिखा रहेगी आपके साथ। तो इस घंटे होगा फुल म्यूजिकल धमाल और बजेंगे आपके ही पसंद के गीत, और उसके लिए करना होगा

तो 2:11 का वक्त और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल में। और आपके ढेर सारे मेल हमारे पास आ चुके हैं, और ये मैंने अभी पहले भी कहा था पहले प्रोग्राम में कि ये जो मुझे मेल है ना, जो ये मेल मुझे दिखते हैं स्क्रीन पे, लेकिन वो मेल नहीं होते हैं सिर्फ, वो आपका प्यार होता है कि आप उसको शब्दों में पिरोकर हमको भेजते हैं। और हमारे पास पंकज शर्मा जी ने मेल कर दिया है, होस्ट जी गुड आफ्टरनून जी, फिल्म इन्होंने एक प्यारी सी गीत की फरमाइश करी है, तो हमारी कोशिश है कि वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। और बबलेश पनवार जी ने हमें मेल किया है, हॉटमेल प्रस्तुत करता आरजे जी नमस्ते, प्लीज प्ले माई रिक्वेस्ट, और इन्होंने बहुत ही प्यारा सा गाना हमें भेजा है। पारस बड़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर रात से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान डांगरी से, बाबूराम जयपाल खलीफों की बावड़ी से, खुदा बख्श खलीफा जी इन्होंने मेल किया है। उषा रावत जी का मेल आया है हमारे पास, शुभ दोपहरिया माय डियर शिखा मैम, भैया आपको भी शुभ दोपहरिया, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं और हमारी आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप हो सके तो मेरी भी पसंद का गाना बजा दीजिएगा। इन्होंने एक प्यारे से गाने की फरमाइश करी है, मीनाक्षी इंडियन सरोजनी राजपूत जी को अमेठी, तो भी आई रिक्वेस्ट तो आप करते हैं लेकिन ये प्रोग्राम भी आपका ही है और आपके ही पसंद के गाने बजते हैं। प्यार भरा आदाब, मोहसिन रजा जी ने हमें मेल किया है, आपकी पसंद का सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए सनावत से, शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बुड़ाना। और हमारे पास मेल आया है मोहम्मद सादिक खत्री जी ने हमें मेल किया है, इन्होंने मेल में लिखा है आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत हमें सुना दीजिए, फरमाइश करते हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री और मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ मोहम्मद शादाब खत्री। तो हमें मेल करा है हीरामणि जी ने, और हीरामणि लिखते हैं सप्रेम नमस्कार पसंद दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से इन्होंने मेल किया है, हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा, और एक प्यारे से गीत की फरमाइश करिए, तो एक प्यारा सा गीत तो हम आप तक भेजेंगे लेकिन एक और जानकारी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, वो अभी बताते हैं।

जी, तो भाई देखिए, आप इतने प्यारे हैं और हमारे दिल के हैं बहुत करीब, तो जितना एंटरटेनमेंट का आपका ध्यान हमें रहता है, उतनी ही ज़्यादा हेल्थ की भी चिंता रहती है। तो यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते पीते समय बार बार खांसी आती है, तो यह डिस्फेजिया का संकेत है और इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के एफएम रेनबो 100.7 MHz पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन जी होंगे।

देंगे आपके जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना ना भूलें हमारे चैनल यानी एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। और हमारा जो फोन नंबर है वो हम आपको बता देते हैं 0522-2238-845 और दूसरा नंबर है 0522-2238-852। तो ये हमारे दो नंबर हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जितनी भी जिज्ञासा हैं आपकी उसका सरल और उपयोगी उत्तर आप पा सकते हैं। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। तो सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।

हुई ना जानकारी, बहुत अच्छी यूजफुल। तो बस कॉल करिए और हमें मेल भी कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर भी हमने आपको बता दिए, मेल करने की मेल आईडी भी आपको बताया। और अब हमने भाई मेल्स तो पढ़ लिए हैं और हमारे जितने भी श्रोता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका गाना बज जाए। तो ये रहा आपका गाना। और जब आप ये, मैं नाम स्पेशली नहीं लेती क्योंकि जब आपका गाना आप तक पहुँचता है तो वो खुशी ही अलग होती है। तो चलिए इंजॉय करते हैं। आप में से ही किसी ने जो फरमाइश करा था प्यारा सा ट्रैक।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जी 2:22 का वक्त और आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेनबो हॉटमेल चल रहा है, जिसमें आज आपकी अपनी दोस्त शिखा है आपके साथ और पढ़ रही है आपके प्यारे प्यारे मेल्स। और संदीप मकर जी ने हमें मेल करा है और एक फिल्म का नाम लिखा है। उन्होंने कहा कोई भी सॉन्ग इस फिल्म का हम तक भेज दें, तो बिल्कुल हमारी कोशिश है कि हम आप तक भेजें ये सॉन्ग। ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गौरैयास, जलंधर से इन्होंने हमें मेल किया है। और रामेश्वर जी ने हमें मेल किया है। हॉट मेल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शिखा बहन जी को हमारा मेल शामिल कर लें, कोई भी गीत में शामिल ज़रूर ज़रूर कर लें। हम बराबर इंतज़ार कर रहे हैं कब होगा हमारा मेल शामिल। तो ये लीजिए आपका भाई मेल शामिल हो गया है। ग्राम व पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहात से इन्होंने हमें मेल किया है। रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास शहरूर नूर अंसारी जी ने मेल किया है और लिखा है कोई भी गीत सुनवा दीजिए, धन्यवाद। ग्राम व पोस्ट हर हरपुर मटकली जिला बरेली से इन्होंने मेल किया है। शहरूर नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, इदरिसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ताज मोहम्मद जी ने हमें मेल किया, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। आदरणीय प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने हमें मेल किया है। और सुरेश जी का मेल आया है हमारे पास, रिस्पेक्टेड RJU, सो स्वीट वॉइस जी, थैंक यू सो मच। गीत तो अच्छा, इन्होंने एक गीत तू इस तरह, अच्छा इन्होंने एक प्यारा सा गीत लिखा है, सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग जी। और हमारे पास आफताब अंसारी जी का मेल आया है, शिखा बहन जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए। और हमारी भी यही आशा है कि हमारे जितने लिसनर्स हैं, हमसे जुड़े हैं, वो हमेशा खुश रहें। इन्होंने लिखा है एनी सॉन्ग, शेरवानी स्कूल, गुंज डंडवारा, उत्तर प्रदेश, आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। और हमारे पास मेल तो इतने ढेर सारे, मेरा मन करता है मैं मेल ही पढ़ती रहूं, लेकिन आपको भी तो इंतज़ार रहता है।

आपके ट्रैक का। तो चलिए एक मेल ये पढ़ते हैं, फिर आप तक आपका ही सॉन्ग पहुंचाते हैं। बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रोग्राम, बेहतरीन प्रस्तुतिकरण, किसी भी खूबसूरत नगमे पर शामिल कर लीजिए प्लीज़। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी। भाई आपके साथ जब हम रहते हैं ना, इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि मतलब हम शब्दों में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। और प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, आप में से ही किसी ने भेजा है आपकी पसंद का ये ट्रैक आप तक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

जी 2:34 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेनबो हॉटमेल और प्यारे प्यारे आपके मेल्स पढ़ रहे हैं। सतीश अनेजा जी ने हमें मेल कर दिया है, नमस्कार शिखा बहन जी को प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और एक प्यारे से गीत की फरमाइश करी है, चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा बिमला अनेजा धन्यवाद। और इतना मतलब मैं शब्दों में आपके जो एफर्ट्स है ना उनको बयां नहीं कर पा रही हूँ, इतना प्यारा इतना डेकोरेटिव मेल आप भेजते हैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ये आपका प्यार ही है जो आपका आपके मेल्स के थ्रू हमें मिलता है। अहमद फूलवाले जी ने हमें मेल किया है, शुभ दोपहरी शिखा बहन जी, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, हमें निराश और नज़रअंदाज मत करिए, मेरे मेल ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। लीजिए बिल्कुल आपका मेल शामिल हो गया है और इन्होंने एक गीत लिखा है, कोशिश है कि आप तक पहुंचाएंगे। प्रेषक छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कपड़ा हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नासरीन आसमा परी

यमंतशाह, आशु, अहमद, फूलवाले और समस्त फूलवाले फैमिली। और बोधराज खुरवाल जी ने हमें मेल किया है और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की फरमाइश करी है, कोशिश है कि आप तक पहुंचेगा वो ट्रैक। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खुरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका, नीशु। और हमारे पास मेल आया है पंजाब, राम टेके जी का। आदरणीय उद्घोषक जी, प्यार भरा नमस्कार, इस गीत में या अन्य गीत में जरूर शामिल करें, इनायत होगी। और सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से इन्होंने हमें मेल किया है, पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके, श्रव्या राम टेके, और कोशिश है कि आप तक गीत आपका जरूर पहुंचाएं। और हमारे पास मेल आया, एक्चुअली एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है जो आपसे करना चाहते हैं कि एक मेल करिए, हम कोशिश है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके मेल आप तक ज़रूर, आपको पढ़कर ज़रूर पहुंचाएं आप तक। नमस्कार जय जौहर, दीपेश वर्मा जी ने हमें मेल किया है, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और हमारे पास विजय महोबिया जी का मेल आया है, आज सभी गीत लाजवाब और सुरीले चल रहे हैं, इस सुंदर प्रस्तुति और जानदार पेशकश को सल्यूट करते हैं, कोई भी सुमधुर गीत सुनवा दीजिए, आपकी इनायत होगी। विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना शिवी, सलोनी ईशु, बाबा अन्य अनाया महोबिया और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। और हमारे पास मेल आया है मुकेश कश्यप जी ने हमें मेल किया, आपको मेरा नमस्कार, और इतना प्यारा मेल है, लीव बनी है, हाथ मतलब हार्ट्स बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। आपका ये मेल देखकर ना दिल खुश हो जाता है और दिल गाता है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। जी हाँ, बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाता है। आपको मेरा नमस्कार, मुकेश कश्यप जी ने लिखा है, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और एक और मेल पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपका गीत आप तक पहुंचाते हैं। जावेद जी ने हमें मेल किया है और लिखा है, लिखा है, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई, 1999 से हम आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, रेडियो हमारा सच्चा जीवन साथी और बहुत ही जानकारी हमें मिलती है, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से मेल किया है इन्होंने। और हमारे पास एक और मेल पढ़ लेते हैं। अच्छा, मेरा मतलब मन करता है पहले मैं मेल सारे पढ़ लूँ, क्योंकि वो आपका मन रहता है ना कि हमारे नाम हम तक जल्दी से पहुँच जाएं। गुड आफ्टरनून शिखा मैम, बाबू अंसारी जी ने मेल किया है, कैसी हैं आप, मुझे ये गाना सुनवा दीजिए फिल्म। हाँ बिल्कुल, कोशिश है हमारी, गाना डेडिकेट, नाम है, शामिल कर लीजिए, फैज़ अंसारी, कुलदीप गुप्ता, महेंद्र दीपन, एडवोकेट वारिस जी। तो एक प्यारा सा गीत आप में से ही किसी की पसंद का है, तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं इस प्यारे से ट्रैक को।

0: चना छुम छुम
1: कोई लड़ता है जब वो गाता है सावन आता है।
2: जी ये प्यारा सा गीत आप में से किसी ने फरमाइश किया था और इस गाने को सुनकर शायद बारिश हो जाए। भाई हम लोग का जो हम लोग हर दिन उठते हैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि शायद थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए। तो जय जी ने हमें मेल कर दिया है तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। और हमारा नंबर कब आएगा जी? हॉली चौक उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने हमें मेल किया है। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म इन्होंने एक लिखी और गाना लिखा है। कोशिश है कि आप तक पहुँचाएँ वो। उदयभान पाल जी का मेल आ चुका है। कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार। किसी भी गीत में शामिल करें। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल किया है। उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार। और हमारे पास भाई मैंने अभी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करी थी अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स से कि आप एक मेल भेजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़रूर से आपका मेल शामिल कर लें। साई गायकवाड़ जी ने हमें मेल किया है और लिखा है, नमस्कार जी शिखा दीदी जी, कैसी हो आप? हम हॉट मेल अच्छा चल रहा है, सभी गाने बारिश के सुनवा रहे हैं, हमको गीत सुनवा दीजिए। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मेल किया है। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। और हमारे पास मेल आया है मोहम्मद रिजवान जी ने हमें मेल किया। गुड आफ्टरनून शिखा सिस्टर, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, कोशिश है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मोहम्मद रिजवान संडीला फरिंदा हरदोई, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ऑनलाइन सुन रहा हूँ, UAE से मिलते रहें। अच्छा गाना इन्होंने एक लिखा है तो ज़रूर कोशिश है कि इन्होंने दो तीन गाने लिख दिए हैं तो कोशिश है कि हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। और एमके राज जी का मेल आ चुका है। सेवा में आरजे जी, कार्यक्रम रेनबो हॉट मेल, सादर शुभ दोपहरिया मैम जी, आपको भी शुभ दोपहरिया। दो लाइन अर्ज है मैम, हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। मैं FM रेडियो से में रिक्वेस्ट रेनबो हॉटमेल में भेजते भेजते 2 महीने के ऊपर हो गए मगर अभी तक रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई। बाकी मैं हर घंटे हर दिन आपका कार्यक्रम सुनता हूँ। ईमेल और रिक्वेस्ट तो रोज़ भेजता रहता हूँ मैम। महान कृपा होगी अगर आप मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लें। तो ये बहुत ही प्यारी सी एप्लीकेशन टाइप की आपने ये जो रिक्वेस्ट भेजी है, पूरी कोशिश है कि हम इसको ज़रूर से शामिल करें। और

बहुत ही प्यारे से गीत की भी फरमाइश करी है, तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। और मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरौवा लखीमपुर खीरी से इन्होंने हमें मेल किया है। बिट्टू गगनेजा जी ने हमें मेल कर दिया है। शिखा बहन, सिर्फ वही मेल शामिल करें जिसमें खूब, ऐसा नहीं है भाई, आप देखिए हमने ये तो मैं हर उसमें कहती हूँ और हमारे जितने भी आजीज हैं वो सब कहते हैं आपसे कि आप सभी लोग हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और सबके ही मेल कोशिश रहती है कि शामिल कर लिए जाए। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि एक ही लोग दो दो चार चार मेल शामिल करते हैं एक ही टाइम पे, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अदरवाइज़ आप सब लोग इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब हैं। तो चलिए, कमलकांत गुप्ता जी का मेल आ गया है। किसी भी गीत में शामिल करें पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। तो अभी ये मुझे लगता है मेल तो हमने शामिल कर लिया और टाइम भी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अभी आप हमें मेल कर सकते हैं, 9 मिनट हैं हमारे पास और गाना एक भेजते हैं आप तक। तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आप में से ही किसी की पसंद का।

दोस्तों 2:54 का वक्त, और देखिए आपसे बातें करते करते, आपके मेल्स को पढ़ते पढ़ते, आपके गाने प्ले करते करते समय का पता ही नहीं चला। और हमारे पास जो मेल बहुत ढेर सारे आ गए, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम सबके नाम ले लें। वारिस अली खान जी ने हमें मेल किया है, तुलसी मस्कीन जी ने मेल किया है, शहरूर नूर अंसारी, नवी हसन, नरेश, रोजी डिकेस्ट्रो जी ने हमें मेल किया है, स्वरण सिंह जी ने मेल किया है, कमल कांत जी ने मेल किया है, नवी हसन जी ने मेल किया है।

बिट्टू गगनेजा जी ने हमें मेल किया है, लालगिरी जी ने मेल किया है, मोहम्मद रजवान एन के राज जी ने, साई गायकवाड़ जी ने, अजमत अंसारी जी ने, और जय ने हमें मेल किया, उदय भान जी ने हमें मेल किया है, तेज बहादुर यादव जी ने हमें मेल किया है, राज किशोर जी ने मेल किया, उषा मोहन जी ने मेल किया है, और तुलसी मस्कीन जी ने मेल किया है, राजकुमार दूधी जी ने मेल किया, राधे कुमार विद्यार्थी जी ने मेल किया, महेंद्र दीपन जी ने मेल किया है, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेल किया। और एक प्यारी सी मतलब रिक्वेस्ट है या क्षमा मांगना चाहते हैं कि जिनके गाने आप तक नहीं पहुंच पाए, तो इसके लिए सॉरी कहना चाहते हैं, तहे दिल से सॉरी, लेकिन आपको नाराज़ नहीं होना है, बस हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि ये प्रोग्राम रोज़ आता है और आपका ही प्रोग्राम है, जितने भी गीत बजे हैं और आपकी ही पसंद के वो गीत हैं, तो बस मेरा इतना कहना है, हम सब इतना ही चाहते हैं कि आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और साथ ही जुड़े रहें, और साथ ही जितने भी गाने बजते हैं ना, आप उन सबको इन्जॉय करते रहें, क्योंकि वो आपके ही पसंद के होते हैं और आप तक पहुँचते हैं। तो चलिए इसी के साथ दीजिए शिखा को इजाज़त, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अगला प्रोग्राम भी आप इन्जॉय करेंगे अपनी दोस्त शिखा के साथ। तो एक प्यारा सा ट्रैक आप तक आ रहा है, फिर उसके बाद हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम ने कहा है कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत ने अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह जानकारी आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने दी। उन्होंने कहा कि विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भी भारत शामिल है और उनके मुकाबले भारत का ग्रोथ रेट तेज है। केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास 3 के लिए पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

वर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने दी। उन्होंने कहा कि विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भी भारत शामिल है और उनके मुकाबले भारत का ग्रोथ रेट तेज है। केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास 3 के लिए पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा का आज दूसरा दिन है। ये परीक्षा कल और आज राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मेरठ, आगरा समेत सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई। सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है। भर्ती बोर्ड निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए शासन और जिला प्रशासन के साथ पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष SB शिरडकर ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन के लिए प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज के इन सत्रों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, खेती और कृषि नवाचार पर चर्चा से टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के निर्माण में मदद मिलेगी। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जी 3:05 का वक्त और आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया लेकर हाजिर हो गई है आपकी दोस्त शिखा, जिसमें आप सुनेंगे बेहतरीन ट्रैक्स और साथ ही बातें होंगी ढेर सारी। जी हाँ, चटपटी गपशप होगी शिखा के साथ। तो चलिए बिना देर करे भाई शुरू करते हैं ये प्रोग्राम का ये प्यारा सा सफर इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ।

जी 3:10 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जी हाँ, सतरंगी दुनिया। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ें तो आप तक पहुंचती हैं, ब्यूटीफुल ट्रैक आप तक पहुंचते हैं, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट का हमें रहता है बहुत ज़्यादा ध्यान। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न हमें रहता है आपके लिए, जी हाँ, और वो है आपकी हेल्थ। तो अगर यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते

पीते समय बार बार खांसी आती है तो यह डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। जी हाँ, डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार को दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 पर, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट होंगे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन जी, देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। सुनना ना भूलें हमारे चैनल यानी एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम, और हमारा फोन नंबर है 0522-2238-845। तो ये दोनों ही नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 0522-2238-845, 0522-2238-852। तो ये दोनों कॉलिंग नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। तो सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य आकाशवाणी के साथ। तो देखा, हुई ना काम की बात, जो पहुंच गई आप तक। तो बिल्कुल आप कॉल करिए और अपनी जिज्ञासाओं का सरल उपाय हमारे जो डॉक्टर रहेंगे, हमारे जो विशेषज्ञ रहेंगे, वो आपको उसका समाधान देंगे। तो दोस्तों, वो प्यारा सा ट्रैक मेरा मन कर रहा है आप तक पहुंचा दें, तो चलिए एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, क्योंकि बहुत मेरा फेवरेट है और मुझे लगता है कि जितने हमारे लिसनर्स सुनेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम सब इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

जी दोस्तों, 3:17 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया, अपनी दोस्त शिखा के साथ। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हम ना चाहते हुए भी किसी दूसरे को तकलीफ दे देते हैं, होता है ना। कभी कभी हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो हम जान ही नहीं पाते, ये कैसे हो गया और क्यों हमारा काम नहीं हो पाया, या यूं कहें कभी कभी हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो हो सकता हो कि इन बातों के पीछे आपकी जुबान की कड़वाहट हो। कहने का मतलब है कि हम अपनी भाषा से काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो भाई कहते हैं ना कि मीठा बोलिए, जो मीठा बोलेंगे ना तो जो बात नहीं भी सुनने वाली होगी वो भी सुनी जाएगी। तो एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, तो चलिए वो एंजॉय करते हैं और आगे बात करते हैं कि भाई जो काम है वो हमारे क्यों नहीं बनते और ये जुबान की जो कड़वाहट है उसको कैसे दूर करें। तो चलिए, एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, एंजॉय करते हैं हम और आप दोनों।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी 3:23 का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सतरंगी दुनिया, जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं कि जो आपकी वाणी है, जी हाँ, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी बोली है, वो कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक हम लोगों ने दोहा सुना हुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीर दास जी के इस दोहे को सुनकर शायद आप जीवन का सार समझ पाए होंगे, क्योंकि ये मान लीजिए जितनी मीठी आपकी बोली होगी ना, उतना ही सरल और सरस आपका जीवन होगा। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से मतलब इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे आपको किसी एक ग्लास पानी मांगना है और आप किसी से कह रहे हैं, अपने किसी खास से ही कह रहे हैं, एक ग्लास पानी दे दो, तो ये थोड़ा सा रूड हुआ, प्लीज़ एक ग्लास पानी दे दो। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना लैंग्वेज में, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को जो कन्वे कर। और इससे एक चीज़ और भी है दोस्तों, कि जो फील दूसरा करेगा ना, वही खुशी आपको भी महसूस होगी। तो आप इस बात के लिए ज़रा सोचिए कि आपका काम कहीं अटक तो नहीं रहा है, कहीं कोई रुक तो नहीं, और उसके पीछे का रीज़न कहीं आप ही तो नहीं, कहीं आपकी ही तो लैंग्वेज नहीं है इस जो काम ना नहीं हो रहा है उसके पीछे का रीज़न। तो इस रीज़न को आपको समझना होगा, और अगर आप समझ गए तो बस और क्या है जीवन में, और सक्सेस ही सक्सेस मिलनी है आपको। तो चलिए एक प्यारा सा ट्रैक भेजते हैं आप तक और फिर बातें करते हैं।

0: डंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है।

0: हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
1: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
1: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है।
1: सप्रेम नमस्ते जी, गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
1: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है।
1: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है, वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
1: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
1: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है।
0: हुँ?
1: और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
1: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए।
0: हुँ?
1: और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
1: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
1: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
1: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
1: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
1: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
1: दूसरा शब्द है केई।
0: जी,
1: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
1: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
1: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
1: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
1: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
1: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें

0: दिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेत

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
2: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
3: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।
3: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: भाई साहब,
1: हाँ,
0: थाना भीमपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना भीमपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोग

0: के दर्शन कर लूं।
1: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
0: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
1: सो तो है।
0: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
1: अरे हर गोविंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवाला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
1: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। अब बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: हर गोविंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोविंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोविंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोविंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
0: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
0: अच्छा, राम राम।
3: राम राम
0: राम राम।

0: हरगोविंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है?

0: से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिन बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिन भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिन भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश। अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिन भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिन भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्रप्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए साकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज के ही दिन 2024 में लगातार तीसरी बार

भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भी भारत शामिल है और उनके मुकाबले भारत का ग्रोथ रेट तेज है। केंद्र की मौजूदा सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास 3 के लिए पहल शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के सीतापुर पूर्व छावनी क्षेत्र में लगभग 850 एकड़ रक्षा मंत्रालय का खाली पड़ी जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने

एकड़ रक्षा मंत्रालय का खाली पड़ी जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। योजना के माध्यम से अगले 3 वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर CM ने कहा कि ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाने के साथ ही विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। श्री योगी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार व्यापक कार्यक्रम चला रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा की आज दूसरा दिन है। यह परीक्षा कल और आज राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा समेत सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई। निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए शासन और जिला प्रशासन के साथ पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष SB शिरडकर ने बताया कि इस परीक्षा के लिए 28,86,997 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज के इन सत्रों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार पर चर्चा से टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली के निर्णय में मदद मिलेगी। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। और इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

रहिए। और स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बता दें कि आज हम कुछ बातें भी करते हैं, कुछ प्रश्न भी पूछते हैं, तो प्रश्नों के लिए आप अपने पेपर और पेन लेके बिल्कुल रेडी रहिए। हाँ, फोन से दूरी जरूर रखिएगा। फिलहाल ये बेहतरीन सा गीत, आप जो मेरे गीत और मीत ना होते, ये बेहतरीन सा गाना और उसे मीत बना लीजिए। सुनते रहिए और इस दोपहर की गर्मी को थोड़ा सा कम करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए गाना।

जी हाँ, 4:06 हो रहा है और ये चंद सेकंड जो अब 7 मिनट की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल मेरा नाम शिवम है और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, और जिस पे होने वाला है और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसे आप और हम सब कहते हैं यूथ वेव। और जैसा कि आपको ये आज पता है कि आज है मंगलवार, तो भाई भंडारे का दिन तो है ही, लेकिन उसके अलावा यूथ वेव में क्या होता है खास वो भी आपको बताते चले। आज है प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित दिन, तो आज करेंगे ढेर सारी बातें आपसे, तो आप बस सुन

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: 4:15 हो गया है। शिवम आज आपके साथ है प्रोग्राम यूथ वेव लेकर। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया गया था भाई, आज प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित बातें होने वाली हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं पर अगर आपसे बातें होंगी तो आपको भी कुछ करना होगा, आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि भाई आज अगर ये प्रोग्राम है तो कुछ स्पेशल जरूर होगा। और वैसे अगर मैं आया हूँ तो मैं जरूर करूंगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी जब समाचार जब चले जाते हैं 3:30-4:30 के बाद हम आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। फिलहाल हम बातें कर रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो प्रतियोगी जीवन होता है वो कहीं ना कहीं तपस्या से कम नहीं होता है। तपस्या मतलब कि आपको अपने जीवन में बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है और इन सब के अलावा तटस्थ रहना पड़ता है अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट और अपने गोल के प्रति बिल्कुल तैयार रहना होता है। तमाम तरीके की परेशानियां जो आपके जीवन में बाधाएं बन के खड़ी हो जाती हैं, उन सब का सामना सिर्फ आपको अकेले ही करना है। आपके फैमिली वाले सिर्फ और सिर्फ आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन वो जो असली सामना, जो असली युद्ध लड़ना है वो आप

ही लड़ना है, चाहे वो समाज से हो, चाहे रिश्तेदारों के ताने बाने से हो, चाहे वो कठिन सवालों से ही क्यों ना हो, लेकिन लेकिन लेकिन लड़ना सिर्फ आपको ही है। तो छात्र जीवन जो होता है वो बहुत ही संघर्षशील तपस्या से भरा होता है, तो कोशिश करिए कि इस तपस्या को कोई भी भंग न कर पाए।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: pmsuryaghar.gov.in।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow, Dhadkan Lucknow ki.
2: चार बजकर 22 मिनट। जी हाँ, आपको जल्दी से बता दें कि यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते पीते समय बार बार खांसी आती है तो यह डिस्फेजिया के संकेत हो सकते हैं। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण और लक्षण और इसके बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम, जो कल यानी कि बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को सुबह 11:02 से शुरू होगा, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो बिल्कुल भी सुनना ना भूले हमारा ये प्रोग्राम, क्योंकि बहुत होने वाला है स्पेशल। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं और सरल उपयोगी उत्तर। जो आप प्रश्न पूछेंगे उसके सवाल आप तक पहुंचाएंगे, जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आपको करना क्या है, आपको बस ट्यून इन रहना है 100.7 FM रेनबो पर 11 बजे। तो ये स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। और जैसा कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाई प्रोग्राम में कुछ प्रश्न भी पूछने होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे से बहुत साधारण साधारण से सवाल हैं जो आपसे हम आज पूछने वाले हैं। आपको बता दें कि आज का जो पहला सवाल है वो ये है, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में आया था। ह्वेन सांग जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन एक है, जो मतलब ऑप्शन ए है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके शासनकाल में, या समुद्रगुप्त के शासनकाल में, या हर्षवर्धन के, या स्कंदगुप्त। ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए, चंद्रगुप्त ए, बी है समुद्रगुप्त, सी है हर्षवर्धन और डी है स्कंदगुप्त। तो ह्वेन सांग के बारे में आप बताइए हमें। फिलहाल हम आपको सुनवाने वाले हैं रोजगार समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, तो कहीं मत जाइए, यहीं जुड़े रहिए, वापस लौट के आएंगे और बहुत सारी बातें करनी है आपसे।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तां, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब अली।
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
6: शहर आपका, धुन आपकी, सुनते रहिए 100.7 FM।

नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। निरस्तीकरण संबंधी सूचना 25 अप्रैल 2026 को रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में ये सूचित किया जाता है कि संविदात्मक आधार पर टीजीटी

0: सामाजिक विज्ञान की रिक्ति को प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया है। ये रिक्ति सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के लिए प्रकाशित हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। डीजीएम उत्पादन विकास, डीजीएम अनुसंधान एवं विकास, वरिष्ठ प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक, वरिष्ठ प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, वरिष्ठ प्रबंधक विपणन और कंपनी सचिव। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और नियम और शर्तों के लिए देखिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.glidersindia.in। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जयसिंह रोड नई दिल्ली 1 आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कनिष्ठ अभियंता, कुल पदों की संख्या 6, कनिष्ठ अभियंता 1 पद, कनिष्ठ अभियंता QS एवं C 1 पद, कनिष्ठ अभियंता योजना 2 पद और कनिष्ठ अभियंता बिलिंग तथा अनुबंध 2 पद। गैर तकनीकी पद कर्मचारियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। सहायक प्रबंधक प्रशासन 1 पद, लेखाधिकारी 1 पद, सहायक 1 पद, कंप्यूटर प्रोग्रामर 1 पद, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी 1 पद, कनिष्ठ सहायक 2 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर 2 पद। विस्तृत नियम शर्तों और आवेदन तथा आरक्षण संबंधी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.dphcl.com और www.delhipolice.gov.in। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम इंडिया ऑप्टल लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है एक पद के लिए आवेदन। पद का नाम है सलाहकार फील्ड ट्रायल कोऑर्डिनेशन। थल सेना के सेवानिवृत्त मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी जो कि इन्फेंट्री डिवीजन से संबंधित हों केवल वही आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा है 62 वर्ष। विज्ञापन का विस्तृत विवरण देखा जा सकता है इंडिया ऑप्टल लिमिटेड की इस वेबसाइट पर, जिसका पता है www.indiaoptal.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: शहर आपका, धुन आपकी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, 4:30 और जैसा कि वादा रहा था आपसे कि हम लौट कर आएंगे 4:30 पर ढेर सारी करने के लिए बातें। फिलहाल ये बेहतरीन सा ट्रैक सुनिए, लौट के आते हैं कुछ और बातें और कुछ और प्रश्नों के साथ।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर
3: 4:38 प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित आज कार्यक्रम होने वाला है। तो भैया, आपको ढेर सारी बातें भी हमने बता दी है और भी बातें बची हुई हैं। एक सबसे खास बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं अपने शहर या दूसरे शहर में या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे ये अपील जरूर ये रहेगी कि आप जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं, जिस भी शिक्षक से पढ़ते हैं, उन पर पूरा भरोसा बनाकर ही पढ़िए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे मन में तमाम तरीके की बातें टीचरों को लेकर चल रही होती हैं कि भाई पता नहीं कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। होना भी चाहिए। आप इस बात पर बिल्कुल फोकस्ड रहिए कि आपके सिलेबस में या आपकी जो तैयारी है, जिस बेस के लिए, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के लिए जो टीचर है वो बेहतर है कि नहीं। अगर वो बेहतर है, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर उनसे एडमिशन ले लेते हैं तो भरोसा रखिए कि अगर वो पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाएंगे। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते टीचरों पे भरोसा नहीं होता है, लगता है कि हम इनसे भी पढ़ लें, उनसे भी पढ़ लें। तो सबसे बड़ा चीज़ होती है ना कि हमें जब किसी टीचर से पढ़ने का होता है तो हमें 2-4 दिन 5 दिन हमें उन्हें पढ़ाने की शैली में ही टाइम लग जाता है कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है। हमें 5-6 दिन लगभग तो यही लग जाता है समझने में कि सर किस तरीके से पढ़ाएंगे, पहले नोट कराएंगे या पहले समझाएंगे या पहले प्रश्नोत्तर का होना है या किस तरीके से हमें पढ़ाना है। तो कभी भी इस चीज़ से ना घबराइए कि हम अगर 1 महीना पढ़ रहे हैं किसी टीचर से तो ऐसा लग रहा है कि वो 1 महीने में ही आपको सारा सिलेबस जो है वो हमारे देसी अंदाज में कहते हैं ना कि घोल के पिला दे, तो ऐसा कतई भी नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको चाहिए धैर्य, विश्वास और भरोसा। ये तीनों का दामन थाप कर आप जब चलेंगे तो बेशक आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलने को होती हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम पेपर में जाते हैं और कोई सवाल देख लेते हैं तो दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है, मतलब पेपर से, क्वेश्चन से अलग ही हमारा दिमाग चल रहा होता है। तो ऐसे में लगता है ना कि भाई याद आ जाओ, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, लेकिन वो जो प्रश्न का उत्तर होता है वो हमारा दिमाग जो है वो दिखाता नहीं, तो ऐसे में बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसा ही कुछ गाना मैंने ढूंढ के लिया है, हालांकि ये गाना कुछ और लैंग्वेज में है, कुछ और उनका कहना है, लेकिन अगर जो विद्यार्थी जीवन है उनके लिए अगर देखा जाए तो एक व्यंग के तौर पे ये जो गाना है बिल्कुल सेट होने वाला है। तो इस गाने को सुनिए और सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा।

4:48 हो गए हैं और ये चलते हुए कुछ सेकंड जो बिल्कुल एकदम धड़धड़ा के भाग रहे हुए हैं। यूथ वेव प्रोग्राम चल रहा है, शिवम आज आपके साथ है और ढेर सारी बातें हो गई हैं और ढेर सारी बातें अभी बची हुई हैं। फिलहाल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया। क्या इतना भारी भरकम सवाल मैंने पूछ लिया है? फिलहाल अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए रेडी है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि ये सवाल बहुत ही साधारण है और ये आपके दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। केसर की प्राप्ति कहाँ से होती है? सबसे आसान सवाल, केसर की प्राप्ति कहाँ से होती है? इसका ऑप्शंस हैं, ए पत्ती से, बी कलिका से, सी पुष्प वर्तिका से या डी बाह्य दलपुंज से। ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए, पत्ती से ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कलिका से, ऑप्शन सी है पुष्प वर्तिका से और ऑप्शन डी है बाह्य दलपुंज से। तो आपको बताना है कि केसर की प्राप्ति कहाँ से होती है। जरूरी हो जाता है कि जब हम दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं वस्तुएं उनके बारे में जानने की कि वो कैसे कहाँ से मिलते हैं। फिलहाल आज एक स्पेशल खगोलीय घटना होने वाली है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे बेहतर एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद हम लौट के आते हैं पूरी डिटेल के साथ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, तो आपको अब जल्दी से उन सवालों के जवाब दे दे जिनके सवाल हमने आपसे पूछे थे, और उसके सवाल के जवाब भी आने लगे हैं। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी ने हमें ईमेल किया है, उनका ईमेल पढ़ेंगे, लेकिन आपको जवाब दे दे। तो सवाल था भाई कि हुएन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो उसका जो आंसर है वो है हर्षवर्धन। जी हाँ, 606 से 647 ईस्वी के समय ये भारत आया था, और अपनी बहुत सारी किताबें और बहुत सारे दार्शनिक थे ये भारत आए थे। अगला सवाल है कि केसर की प्राप्ति कहां से होती है? तो भाई केसर की प्राप्ति जो है पुष्प वर्तिका से होती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। केसर जो है वो पुष्प वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, और इसे सैफरान के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि भाई हम आपको एक खगोलीय घटना के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो ये शाम को होने वाला है, लेकिन अभी हम आपको सूचना दे दें कि आप पूरी तैयारी कर लीजिए, कि जैसे अगर आपको खगोलीय घटना देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, या कभी आप आसमान की तरफ टिमटिमाते तारों को देखते हैं, तो लगता है कि भाई इनके बारे में जानना कितना ही अच्छा होगा, तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आज इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ द्वारा यानी कि 9/6/2026 को शाम 7 बजे से 9 बजे तक खगोल प्रेमी जा सकते हैं, क्योंकि आज सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम उत्तर दिशा में शुक्र ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह एक दूसरे के एकदम करीब दिखाई देंगे। वैसे इस घटना को प्लेनेटरी कंजक्शन कहते हैं। आप जरूर जाइए पूरी फैमिली के साथ इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, जहां टेलीस्कोप की मदद से निशुल्क इस घटना का अवलोकन कराया जाएगा। है ना काम की खबर? तो इस घटना का अवलोकन करने के लिए जरूर जाएं। टाइम याद जरूर रखिए, 7 बजे से 9 बजे तक ये होना है, तो आप और अपनी फैमिली के साथ जरूर जाएं। और एक और खास बात ये भी है कि यहाँ एक अतिरिक्त शो का भी आयोजन होगा, जो ग्रीष्म ऋतु में कराया जाना प्रारंभ हो गया है। यह शो 2D

नमस्कार, 5 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर आज सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि सरकार के प्रति 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे, अथक प्रयासों का ही परिणाम है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के लिए पहल शुरू कर दी है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालयों द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियम कानून की जानकारी भी दी जा रही है। इससे पहले लखनऊ में भी राज्य उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़ी पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पाद सुविधा का विकास शामिल है।

ने कहा कि 2000 माफ कीजिएगा मंत्रालय ने कहा 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और साथ ही बिजली खर्च में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बचत भी करेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, कौशाम्बी, झांसी, लखनऊ, गोंडा एवं गौतम बुद्ध नगर जनपदों में संचालित जनगणना कार्य की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों एवं नगर आयुक्तों

कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ये परीक्षा आज और कल राज्य के सभी जिलों में आयोजित की गई थी। नकल विहीन परीक्षा के लिए लखनऊ, कानपुर, हापुड़, आगरा समेत सभी जिलों से बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी द्वारा की निगरानी रखी गई। इसके लिए शासन और जिला प्रशासन के साथ पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए थे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। 7 से 9 जून तक आयोजित लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। आजमगढ़ बलिया, आजमगढ़ गोरखपुर, बलिया आजमगढ़ तथा वाराणसी सिटी गोरखपुर मार्गों पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया है। उधर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में भी 50% की छूट प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। योजना के माध्यम से अगले 3 वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, डेवलपमेंट की गति भी उतनी ही फास्ट होगी, लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

5:05 और ये 50 सेकंड जो निकल गए बिल्कुल अभी अभी फिलहाल। अच्छा, ये सब ऐसे घड़ी में ना जो ब्लिंक करने वाली घड़ी होती है उसमें ये सब चीजें देखने के, या कैलेंडर देख रहे हैं तो उसमें ऐसे क्यूरोसिटी होती है आपको, मतलब कि देखिए 5:05 या 5 सेकंड हो रहे हैं ऐसे वाला, या कोई डेट स्पेशल होती है कि भाई देखिए आज ये डेट है, 5 का तारीख है, 5 का महीना है, ऐसा वाला फील होता होगा ना। फिलहाल आज हम जो प्रोग्राम में आज बातें करने वाले हैं वो एक गायक पे है, उनके टॉप मोस्ट फेवरेट जो पॉपुलर उनके सॉन्ग रहे हैं, जो लोगों ने पसंद किया है, उन गीतों पर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे प्रोग्राम का नाम है FM Top 10 100.7 FM रेनबो पर। मैं शिवम आपका फिर से स्वागत करता हूं, और ये बेहतरीन सा गाना सुनिए और इन गायक की आवाज को जरा समझिए कि इस आवाज को हमने कब, किस सन में और किस पर्पज पे सुना था। फिलहाल ये गाना जो आपको हम भेज रहे हैं आपको बहुत कुछ याद दिलाने वाला है।

जी हाँ, 5:13 और ये 14 भी हो गए। मोनू भैया का मैसेज आया है कि नमस्ते भैया जी, कैसन हैं आप? और भंडारे में थे इस वजह से मेल करने में दिक्कत हो गई, जय महाकाल। और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी ने, जिनका नाम है पिंकू सोनी टिकैत नगर से, ये पिछले प्रोग्राम में इन्होंने आंसर दिया था, डी ऑप्शन सही है। और वैसे हम बता दें कि आज का प्रोग्राम जो हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जिन गायक की आवाज़ FM टॉप 10 में, उनका नाम है अभिजीत भट्टाचार्य। आपको बता दें कि अपने करियर के दौरान इन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों के लिए 6000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, और उनके कुछ गानों को जो सूची है वो BBC के सर्वकालिक शीर्ष 40 बॉलीवुड साउंड ट्रैक सूची में शामिल किया गया है। और आपको एक बता दें बहुत ही खास बात, ये अपने उत्तर प्रदेश से ही हैं भैया जी।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

वैसे आपको रोने और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ट्यून इन किया है 100.7 एफएम रेनबो और ये बेहतरीन सा गाना आप अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुन रहे थे। जी हाँ, अभिजीत का जो जन्म स्थान है वो कानपुर अपने उत्तर प्रदेश यानी कि यहाँ हमारे यहाँ से हैं ये भी। अच्छा, अभिजीत को अगर आपने कभी देखा होगा तो इनके स्माइल बड़ी प्यारी है। ये कभी भी जब गाते हैं तो ये बिल्कुल मुस्कुराते हुए, बिल्कुल शान को देखा है गाते हुए आपने, शान वाली फीलिंग बिल्कुल आती है, मतलब जब गाते हैं तो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा। फिलहाल आपको बता दें कि अभिजीत भट्टाचार्य बचपन में ये सिंगर और गाना और ये एक्टिंग ऐसा कुछ इनके जीवन में कुछ था ही नहीं, ये थे चार्टर्ड अकाउंटेंट। सुन के चौंक गए ना, पूरी डिटेल बताते हैं, एक गाना और सुनिए फिर ढेर सारी बातें हैं इनके बारे में भी।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

जी हाँ, 5:32 प्रोग्राम FM टॉप 10 में शिवम आज आपके साथ है और हम अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में बातें कर रहे थे, उनके गाए हुए गाने सुन रहे थे। आपको बता दें कि 90 के दशक के मशहूर रोमांटिक गायकों में से ये एक हैं और हिंदी के अलावा इन्होंने कई अन्य भाषाओं में भी 6,000 से अधिक गाने इन्होंने बॉलीवुड को दिए हैं। ये भी आपको जानकर बहुत हैरानी हुई होगी कि भाई ये कानपुर उत्तर प्रदेश से ही है। और इनका शुरुआती जीवन, वैसे ही हम बताएं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने के लिए मुंबई 1981 में आए। बाद में संगीत के प्रति जुनून के कारण उन्होंने अपना करियर बदलकर गायन यानी कि गायकी में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। उनका जो पहला गाना था, जो पहला ब्रेक मिला था, महान संगीतकार आरडी बर्मन ने देव आनंद की फिल्म आनंद और आनंद में गाने का पहला मौका मिला। और भाई एक बात क्या ही होगी जब आपके अपने फेवरेट या यूं कहिए कि गुरु के साथ अगर गाने का मौका मिल जाए तो क्या ही बात होगी। किशोर कुमार के साथ, जो ये अपना आदर्श मानते थे, उनके साथ गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बस उसके बाद तो इनकी गाड़ी चलती ही चली गई। तो एक बेहतरीन सा गाना उनकी ही आवाज में आप तक ये रहा।

5:45 और ये 42 सेकंड हो गए भाई साहब। फिलहाल हम अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में बातें कर रहे थे। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज आपको अगर याद हो तो बहुत काफी टाइम तक शाहरुख खान के लिए ये गाना गाते रहे, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल शाहरुख खान की ही आवाज है, क्योंकि भाई शाहरुख खान जब गाना गाते थे और उनकी एक्टिंग में और उनके जो एक्सप्रेशन में जब इनकी आवाज मिक्स होती थी तो वो बिल्कुल सच ही होता था। फिलहाल हम आपको बता दें कि 1997 में यस बॉस के लिए अभिजीत को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। फिल्म बादशाह, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, धड़कन, राज, तुम बिन, चलते चलते, मैं हूं ना जैसी कई फिल्मों में अभिजीत को बॉलीवुड में एक नया मुकाम हासिल किया। अभिजीत ने अपने टाइम में बहुत ही स्ट्रगल किया, काफी टाइम तक इनके पास काम करने के लिए काम नहीं मिलता था। बाद में इन्हें कॉल आया, इनका काम देखा गया, इनको पसंद किया गया और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि इनका जादू बिल्कुल चल ही गया। तो फिलहाल इनके ही एक फिल्म के गाने आप तक।

0: क्या बात है, आजकल टाइम से घर।
1: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
0: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
1: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
2: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।
3: अगर आपके मन में भी है टेरेस गार्डनिंग यानी छत पर बागवानी से

जुड़ी जिज्ञासा, समस्या या कोई सवाल, तो प्रत्येक रविवार गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपके सवालों का विशेषज्ञ देंगे जवाब। तो लिख भेजिए हमें अपने प्रश्न हमारी ईमेल आईडी पर fmrainbowhelpline@gmail.com। आपके प्रश्नों का हमें है इंतजार, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

नमस्कार, शाम 6 बजे के मुख्य समाचारों के साथ मैं शिवम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे। अथक प्रयासों का ही परिणाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर बधाई दी है। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के 3 के लिए पहल शुरू कर दी है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालयों द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास शामिल है। प्रधान मंत्रालय ने कहा कि यह 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। योजना के माध्यम से अगले 3 वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर CM ने कहा, इंटरनेट जितना फास्ट होगा डेवलपमेंट की गति भी उतनी ही फास्ट होगी, लोगों के जीवन में ही उतना व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच 2 पालियों में संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। साल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए UPSTF लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस को सक्रिय किया गया। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी

मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया। इस महीने की 21 तारीख को फिर से होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ

प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 7 बजे सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

6:04 प्रोग्राम शाम में अवध लेकर एक बार फिर से मैं शिवम आप सभी को बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारा स्वागत। जी हाँ भाई, 6:04 हो गया है। बहुत सारे भंडारे अभी भी चल रहे होंगे। लोग अगर वापस अपने ऑफिस से या कहीं से घूम के भंडारे के रास्ते से निकल रहे हैं तो भंडारे का आनंद जरूर ले, लेकिन साथ साथ आपका ये कर्तव्य बनता है कि भंडारा अगर खा रहे हैं तो उसके जो दोने प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो सब निश्चित जगह यानी कि कूड़ेदान में ही डालें। और एक आवश्यक सूचना ये भी है कि बहुत से लोग देख रहे हैं कि भंडारे के चक्कर में लोग गाड़ियाँ जो है जहाँ तहाँ तितर बितर खड़ी करके ट्रैफिक समस्या को भी थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भंडारा लेते समय आपका जो वाहन है, आपका जो साधन है, वो साइड में किनारे खड़े करें और बहुत ही कम समय में लेके आप तुरंत अब गाड़ी को स्टार्ट करिए और चलते रहिए, क्योंकि रास्ता कहीं भी बाधित ना हो, क्योंकि आने वाले जाने वाले लोगों को परेशानी होगी तो बहुत सी प्रॉब्लम होगी। तो ये सूचनाएं आपको हर बार हम बताते हैं, तो क्या आप इस पे अमल करते हैं या बस यूं ही गाने की तरह सुन के निकाल देते हैं? जी नहीं, एक जागरूक नागरिक की पहचान यही होती है कि सूचना जो आपको दी जाती है उस पर सच में अमल करे। 6:05 शिवम आज आपके साथ है। ओ भाई, जब शिवम है तो धमाकेदार गाने ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये गाना सुनिए और लखनऊ की खोज खबर और लखनऊ के बारे में ढेर सारी बातें करने के लिए है बिल्कुल तैयार। तो वॉल्यूम थोड़ा साफ कर लीजिए क्योंकि तपिश तो कम होने को नहीं।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: जी हाँ, 6:11 हो गया और ये धमाकेदार म्यूजिक के साथ एक खबर ये भी है कि धमाकेदार वाली, कि क्या आप भी आसमान में रात में टिमटिमाते तारों को देखकर जिज्ञासा उत्पन्न होती है तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में जानने के लिए? तो उसके लिए आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बिल्कुल एकदम बहुत ही पसंद आने वाला है। जी हाँ, तो लोग जिस तक घूमने जाते हैं ना, भैया थिएटर देखाएं, आज मूवी देखाएं, या आज मॉल घूमाएं या मार्केट घूमाएं, भंडारा पहले नंबर पे है आज भी। तो फिलहाल हम आपको आज बता दें कि आज इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ द्वारा 9 तारीख को यानी कि आज शाम 7 बजे से 9 बजे तक खगोल प्रेमी जा सकते हैं, क्योंकि आज सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिम उत्तर दिशा में शुक्र ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह एक दूसरे के एकदम करीब दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, वैसे इस घटना को प्लेटनरी कंजक्शन कहते हैं। आप जरूर जाइए पूरी फैमिली के साथ इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, जहां टेलीस्कोप की मदद से निशुल्क इस घटना का अवलोकन कराया जाने वाला है। समय बिल्कुल याद रखिए, 7 बजे से 9 बजे तक यह घटना होगी, तो उसको देखने के लिए आप जरूर जाएं। और एक अतिरिक्त शो जो गर्मियों के समय में दिखाया जाता है 2D का, वो बिल्कुल शुरू हो गया है, तो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। और साथ में भाई साहब मंगलवार का भंडारा तो है ही, तो शुरू कीजिए। चलिए 6 बजे

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, हरे राम हरे कृष्ण करते करते हुए बिल्कुल, अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि 6:24 हो गया है और ये बस 25 सेकंड होने को है। तो आज का जो शाम का समाचार है, लखनऊ में क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में सुन लीजिए। गुरु का सिमरन गुरुद्वारा आलमबाग शाम 6:30 पर होने वाला है, तो अगर आप आसपास कहीं रास्ते में हैं तो वहां आप अपने अभी भी निश्चित समय से वहां तक पहुंच सकते हैं। महाकाल की आरती राजेंद्र नगर स्थित महाकाल मंदिर शाम 7:30 पर होने को है, तो अगर आज आप वहां या उधर आसपास जाने को है तो इस महाकाल की आरती में शाम को 7:30 महाकाल मंदिर राजेंद्र नगर पर जरूर विजिट करें। तो 6:25 हो गया है और बहुत सारी बातें अभी आपको और बतानी है कि बीएससी एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। तो जो लोगों ने परीक्षा दी थी, अगर वो आंसर की मिलाना चाह रहे हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करें और बड़े इत्मीनान से महाकाल का नाम लेकर आप अपनी जो आंसर की है उसे मिलाइए और हमें भी जरूर बताइएगा। फिलहाल ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं, मुझे लगता है आपने ये गाना बहुत दिनों बाद सुना होगा, या अगर हाल फिलहाल में भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए क्योंकि ये गाना बहुत ही शानदार होने वाला है।

जी हाँ, 6:30 पर एक जानकारी आप ये भी सुनते जाइए कि यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते पीते समय बार बार खांसी आती है तो यह डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। जी हाँ, डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 FM पर विशेष फोन इन कार्यक्रम जो कल यानी कि बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11 बजे जिसमें होंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन जो देंगे आपके जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना न भूलें हमारे चैनल यानी FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप मेल भी कर सकते हैं और हमारा चैनल FM रेनबो 100.7 FM पर। तो नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम, हमारा फोन नंबर है 0522-2238-845 और दूसरा फोन नंबर है पिन कोड के साथ 0522-2238-852। और हमने अपनी ईमेल आईडी आपको बता ही दी थी, एक बार फिर से सुन लीजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।

0: हेलो FM,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए.
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर.
3: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं. अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे.
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
5: और धड़कन लखनऊ में आपको बताते चले कि 12 तक जमा करें लखनऊ विश्वविद्यालय की PhD पार्ट टाइम प्रवेश 2025-26 के तहत बायोकेमिस्ट्री व एजुकेशन विषय में चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं. चयनित अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी से फीस जमा कर सकते हैं और फीस जमा करने की तिथि 12 जून है. तो इस खास बात का ध्यान रखें कि भाई आप टाइम से फीस जमा कर दीजिए. फिलहाल 6:40 पर आप अपना ख्याल रखिए. और हाँ, ये भी याद रखिए कि अभी गर्मी की जो टेम्परेचर है वो अभी और बढ़ने वाला है. कहीं कहीं आंधी और बारिश के भी अनुमान है. तो इस बात का ख्याल रखिए कि कभी भी आप निकलिए तो इस बात को लेके मत परेशान होइए कि भाई हम गमछा लगा के चल रहे हैं या टोपी लगा के चल रहे हैं तो हमारा फैशन खराब हो जाएगा या थोड़ा सा हम कम गुड लुकिंग दिखेंगे. तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि गर्मी में जो आपके कपड़े हैं वो कॉटन के होने चाहिए, ढीले ढाले होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए और पूरी तरीके से ढके हुए. अब वो जैसे सर्दियों में हम फुल बांह के बिल्कुल स्वेटर पहन के निकलते हैं, गला बंद रहता है, सर ढका रहता है, वैसा टाइप वाला. तो आप गर्मी में भी कॉटन के कपड़े, तौलिया, गमछी या होता है ना कि आप कैप वगैरह अगर वेयर कर रहे हैं तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी दोपहर क्या, अभी आप मान के चलिए कि 9:30-10 बजे से ही धूप जो है इतनी तेज लगने लग रही है कि क्या ही बताया जाए. और ख़ासकर जो है आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान ज़रूर रखें. समय समय पर पानी पीते रहें, प्यास ना लगे तब भी आप पानी पीते रहें, क्योंकि जो है डिहाइड्रेशन कब हो जाए, कैसे हो जाए, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको. तो ज़रूरी है खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना और लोगों को भी बताते रहना. खासकर अभी जो टेम्परेचर चल रहा है उसका कोई भरोसा ही नहीं है, कब बादल लग जाए, कब धूप हो जाए. तो इस बात का ध्यान रखिए. बच्चों को कोशिश करिए कि शाम को अगर वो निकल रहे हैं तो प्रॉपर पानी तरीके जो कपड़े हैं वो पहने रहें, पानी पी के निकले और ग्लूकोज वगैरह उनको ज़रूर देते रहें. और साथ में हमारे पशु पक्षी जीव जंतु भी तो हैं, उनका भी तो ख्याल रखना है.
6: देख राजा, ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है.

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: छह बजकर 48 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और भाषा विश्वविद्यालय में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा के आवेदन 15 तक। पूरी जानकारी इस तरह से है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 25-26 की स्पेशल बैक पेपर परीक्षा के लिए मंगलवार से 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो छात्र छात्राएं पूर्व सेमेस्टर या वर्ष की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे हैं या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, उस पर जाकर आप परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, और उसकी वेबसाइट पर सारी जानकारी अपडेट कर दी गई है। तो इसी जानकारी के साथ आप अपने पेपर की फुल तैयारी भी करिए। और हाँ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की। और ये गाना बेदर्दी तेरे प्यार में दीवाना कर दिया, बहुत ही बेहतरीन सा गाना, और सुनिए इसे और बताइए कैसा लगा।

दोस्तों 6:54 हो गया है, अब प्रोग्राम को यही वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नई आईटीआई प्रवेश नीति से युवाओं को अब मिल सकेगा पसंदीदा ट्रेड। जी हां, पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और 5 चरणों में होगा सीटों का आवंटन। अभ्यर्थियों के लिए अपने जिले में आरक्षित होंगी 75% सीटें। तो जिनको भी आईटीआई में एडमिशन लेना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी के साथ आप पढ़िए और अप्लाई करिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं। 6:55 पर अब हम इस प्रोग्राम यानी शाम में हवा से लेंगे आपसे विदा। सुनते रहिए 100.7 FM पर शिवम को, और अगला प्रोग्राम बातों वाला होने वाला है हेलो FM। तो बढ़िया सा गाना सुनते जाइए और दिल को धड़काते जाइए, क्योंकि हम है धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सरकार को बधाई। उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में की प्रेस वार्ता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को लेकर दी महत्वपूर्ण जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, इस पहल से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल संचालित कर रहा है 8 स्पेशल ट्रेनें। प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की फरुखाबाद, गाजियाबाद, कौशाम्बी, झांसी, लखनऊ, गोंडा और गौतम बुद्ध नगर में संचालित जनगणना कार्य की विस्तृत समीक्षा। प्रदेश सरकार 3 तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं को देगी घर और मुफ्त इलाज की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने विभागीय स्तर पर शुरू की कार्रवाई। पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NTA मुख्यालय का किया दौरा। 21 जून को फिर से होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की करी समीक्षा। कहा, चूक और खामियों को रोकने के लिए सरकार राज्यों के समन्वय से कर रही है काम। प्रदेश में बने 31 स्मारक

स्थलों को संरक्षित घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी करने को लेकर सरकार से मिली संस्तुति। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, पुरातात्विक महत्व को ये स्मारकें समेटे हैं, इतिहास के गौरवशाली क्षण। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्यों में देखने को मिलेगा मौसम में आंशिक बदलाव। आगरा, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में मेघा गर्जन के साथ ही मध्यम बारिश की संभावना। और इसी के साथ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर अगला कार्यक्रम।

0: हेलो FM,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए.
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर.
3: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं. अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे.
4: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
5: जी हाँ, हमें पता है कि आपके दिलों की धड़कनों को बिल्कुल लगाम मिलने वाली है, क्योंकि अब प्रोग्राम शुरू हो चुका है हेलो FM. और ये जो धड़कते हुए दिल जो है उंगलियों पे बिल्कुल एकदम फोन लेके बैठे हुए हैं कि मेरा नंबर फोन आने वाला है, तो भाई बिल्कुल ये जज्बात हम आपके समझ सकते हैं कि भाई हेलो FM में लोग कितने बेचैन होकर फोन मिलाते हैं. फिलहाल 7:05 पर प्रोग्राम हेलो FM में मैं शिवम आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और कोशिश करेंगे आज के पहले कॉलर से बात करने की, क्योंकि उन्होंने बड़े ही देर से इंतजार किया है. और ये 74 वर्ष की उम्र है और इन्होंने बड़े ही देर तक लाइन पे हैं. देखते हैं क्या है नाम. हेलो.
6: हाँ भाई साहब, नमस्ते.
5: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप ये बताइए.
6: हम बिल्कुल ठीक है भाई साहब.
5: अच्छा, और नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए.
6: श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव से भाई साहब बोल रहे हैं.
5: श्री प्रकाश तिवारी जी, ये बताइए करते क्या हैं आप, और अभी जो जी
6: हम खेती बाड़ी काम करते हैं भाई साहब.
5: जी, अभी आपने बताया कि भाई हमारी उम्र जो है 74 साल हो गई है और खेती किसानी में अभी भी आप कार्य करते हैं.
6: हम भी करते हैं, हमारा लड़का एक लड़का है वो भी करता है.
5: अच्छा, तो ये बताइए कि इतनी गर्मी हो रही है, कैसे मैनेज करते हैं ये तापमान को, इतनी गर्मी हो रही है खेती किसानी के लिए.
6: भाई साहब सुबह सुबह जल्दी उठ के मतलब करते हैं काम, और वही 9 बजे के लगभग घर पे आ जाते हैं.
5: 9 बजे तक, हाँ, धूप होने से पहले आप सारा काम घर पे चले आते हैं.
6: और शाम को फिर वही 4-5 बजे
5: फिर से खेतों में. चलिए, बहुत शुक्रिया. ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारा पहला जो फोन कॉल है वो एक किसान का लगा, क्योंकि भाई उनकी मेहनत से ही हम जितने भी लोग हैं उनको खाने को मिलता है, अन्न मिलता है. दिन रात मेहनत करते हैं आप सब. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सल्यूट, आपने हमें फोन किया.
6: डेलीकेट कर सकते थे
5: जी. अच्छा, हमें गाना कौन सा सुनवाएंगे लोगों को.
6: लावारिस का अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी. अमिताभ बच्चन के थोड़ा हम फैन है.
5: अच्छा, अमिताभ बच्चन के फैन है आप. अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग याद है आपको.
6: डायलॉग तो भाई साहब कई थे. दीवार का एक डायलॉग है
5: जी.
6: जान का एक है.
5: हाँ, कोई एक छोटा सा डायलॉग हो तो उसे आप बोल सकते हैं तो बोल दीजिए.
6: अरे ये प्राण की वो आई थी कालिया पिक्चर.
5: हाँ, उसमें भी उनके डायलॉग है.
6: उसमें डायलॉग इतना बढ़िया है कि कुछ कहना नहीं.
5: चलिए,
6: कोई जेल ऐसी नहीं बनी है जो.
5: हाँ, बिल्कुल सही कहा. तो चलिए, हम आपके पसंद का गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे.
6: डेडिकेट भाई साहब हम सबको कर रहे हैं, सबसे पहले आप.
5: बहुत शुक्रिया
6: हमारे
5: यहाँ. बहुत शुक्रिया, और आप ऐसे ही अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो.
6: धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब,
5: बहुत शुक्रिया. तो देखिए, जब पहला कॉल लगता है ना, और बड़ी ही दिनों बाद, या यूं कहिए कि पहली बार लगता है ना, तो ये खुशी मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिलहाल उनका गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा.

0: जी हाँ, ये नमक हलाल का गाना आप सुन रहे थे और किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही बेहतरीन सा गाना, और इसमें अमिताभ बच्चन के भाई क्या डांस मूव है, क्या मजा आ जाती है देख के। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपनी ढेर सारी बातों के साथ, आइए उनका नाम जानते हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग सर।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, क्या नाम है आपका?
1: जी,
0: हाँ, ये है गुलबसा सिद्दीकी जी। ये अक्सर हमें ईमेल भी करती रहती हैं, हर कार्यक्रम में ये अपना फोन अपने विचार हमसे साझा करती हैं, और आज ये हमारी बनी है दूसरी कॉलर। तो गुलबसा जी, ये बताइए,
1: 8 दिन के बाद कॉल लगी है
0: ना? हाँ, वैसे ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाई जिनकी कॉल जो है बार बार लग जाती है, तो कृपया वो थोड़ा दिन रुक के फोन करें, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि और भी जो नए लोग हैं उनका फोन कॉल आए। और एक आपसे विशेष अपील ये भी है कि अगर आप फोन कर रहे हैं तो अपने फोन में किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन ऑन ना रखें, नेटवर्क एरिया में रहें, या कोशिश करिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आसपास ना रहें, क्योंकि उससे आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है या फोन कटने की संभावना भी बनी रहती है। फिलहाल गुलबसा जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: जी, हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए, आप कैसे?
0: बस बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये बताइए, मौसम कैसा है आपके यहाँ? धूप तो हुई होगी?
1: मौसम तो बहुत गर्मी है सर।
0: तो धूप से फिर अगर गर्मी हो रही है तो फिर घर का कैसा ख्याल रखती हैं?
1: लेकिन सर सुनिए, तो रात में 1:30 बजे ना हमारे यहाँ आंधी आई थी और बादल पानी भी बरसा था।
0: तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया होगा अभी?
1: नहीं सर, थोड़ा ही बरसा था तो और भी गर्मी बढ़ गई।
0: ना, बिल्कुल वैसा वाला कि तवे पे पानी छिड़का है, डोसा बनना बाकी है।
1: जी सर, ऐसा ही हो गया था मौसम।
0: अच्छा, ये बताइए क्या करती हैं आप?
1: हम घर पर रहते हैं, हाउस वाइफ हैं।
0: ओके, और गाना किसको किसको सुनवाना चाह रही हैं और कौन सा गाना सुनवाना चाह रही हैं?
1: लोहा फिल्म का सुना दीजिए।
0: जो
1: बताया था, और सबसे पहले आपको
0: बहुत शुक्रिया
1: जी। रोशनी रावत है, बबीता राव है, नीलू शर्मा है, और शमा परवीन है, साहिबा अंसारी है, साजिया अंसारी है, महक अंसारी है, निशा अंसारी है, और ममता गौतम है, जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को।
0: चलिए बहुत शुक्रिया। तो लोहा फिल्म का
1: आपने कॉल उठाई, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत थैंक यू। हम बस फोन उठाते हैं, कॉल किसकी लगी है ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है,
1: लोग पता लगा पाते, सही बात है सर।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गुलाब सर जी, आप हमें ऐसे ही फोन करते रहिए, जुड़े रहिए और सुनते

0: जी हाँ, 7:17 हो गए हैं और जल्दी से हम अपने और एक कॉलर से बात कर ले। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: सवीना।
0: वीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जिला
0: बाराबंकी से बात कर रही हैं। कैसी हैं आप ये बताइए?
1: अच्छा,
0: क्या करती हैं आप?
1: ऐसा घर पर रहते हैं, जरी का काम करती हैं।
0: जरी का काम करती हैं और रेडियो सुनती हैं। तो ये बताइए, आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है रेडियो पे?
1: सुबह और
0: शाम को रेडियो सुनती हैं कंटिन्यू। तो जरी का काम करते करते आप अपना गाना सुनती हैं, सबको भी सुनाती हैं या अकेले सुनती हैं?
1: सब सुनते
0: हैं। अच्छा, तो इसमें आपका कब ये जो आप फोन की हैं, क्या है अपने प्रोग्राम में फोन किया है आपने हेलो एफएम में, लास्ट आपका फोन कब लगा था?
1: बहुत दिन हो गए, मिलता ही नहीं है।
0: मिलता ही नहीं है फोन। तो अभी कैसा लग रहा है बात करके आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: और मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: बहुत गर्म
0: है। तो गाना कौन सा सुनवाएंगी आज?
1: बेवफा मूवी का।
0: बेवफा मूवी का गाना किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: आपको
0: जी, चलिए तो इन सबकी तरफ से और सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके फेवरेट मूवी का फेवरेट गाना ये रहा। फिलहाल बहुत थोड़ा सा जाएगा क्योंकि 7:20 पे प्रादेशिक समाचार जाएगा, है ना? तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और पूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग

0: लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
2: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास ही के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए उसका एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
1: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
3: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
4: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, आप रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए UPSTF, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है।

ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: हेलो एफएम,
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
3: हेलो, आप एफएम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।
4: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: 7:30 पर एक बार फिर शिवम आपके साथ है प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर, और हमारे साथ एक कॉलर भी बने हुए हैं, जानते हैं उनका नाम और पूछते हैं उनका, ढेर सारी बातें करते हैं। हेलो हेलो, थोड़ा सा तेज बोलिए। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है आपकी, क्या नाम है आपका? एक बार और कस के बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। प्रीति नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: सरोजनी नगर।
0: सरोजनी नगर से प्रीति बात कर रही हैं। तो ये बताइए प्रीति जी की करती क्या हैं आप?
1: घर पर रहती हैं, हाउसवाइफ।
0: हाउसवाइफ हैं और घर पे रहती हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, और गाना कौन सा सुना दे आपको?
1: वो तलाश मूवी।
0: तलाश मूवी का गाना हम आपको सुनवा दे, और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: हमारे बच्चे
0: जी,
1: हमारी
0: भाभी, चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये गाना जो है आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: सात बजकर 36 मिनट और अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। हेलो
4: हेलो
3: हेलो जी, क्या नाम है आपका?
4: मिंटू तिवारी।
3: मिंटू जी, मिंटू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो एफएम में।
4: जी जी जी,
3: क्या करते हैं मिंटू तिवारी जी और कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए।
4: हम ग्राम बखाना तहसील सागर जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
3: अच्छा, तो फतेहपुर से आप बात कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद आपसे मुझे लग रहा है आपसे बात भी हो रही है। मिंटू जी,
4: नहीं अभी कल भी लग गया था फोन, लेकिन आपसे बात काफी दिन बाद हो रही है।
3: अच्छा, मतलब आपका फोन लगता रहता है, बड़े लकी हैं आप।
4: नहीं, 10-12 दिन के बाद कल लगा था फोन।
3: अच्छा, ये बताइए कोई ट्रिक तो नहीं है फोन लगाने, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई फोन नहीं मिल रहा है, बहुत से लोगों का फोन मिल जाता है, कोई जादू वादू तो नहीं कर देते?
4: ट्रिक नहीं है इसमें, आज लगा है तो कहा 10-12 दिन ऐसा हो जाता है, लेकिन कभी कभी लग जाता कभी नहीं लगता।
3: बिल्कुल सही बात, ये तो अच्छी बात है कि आप जो सच्चाई बता रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों को गलत फहमियाँ रहती हैं कि भाई हमारा फोन नहीं लगता है, बड़े नाराज होते रहते हैं, शिकायती मेल भेजते रहते हैं।
4: नहीं, फोन उठाया भी नहीं जाता ना, घंटी जाती तो उठाया भी नहीं जाता, कभी कभी कभी कभी उठा लेते हैं।
3: नहीं ऐसा नहीं है, जब भी फोन आता है उठाया जाता है, लेकिन ये बताइए करते क्या है आप?
4: बस ये खेती किसानी के काम करते हैं, घर पर रहते
3: हैं। बढ़िया है, रेडियो सुनते हैं तो रेडियो किसी को सुनवाते हैं कि बस अकेले के लिए सुन लेते हैं?
4: नहीं, सब लोग सुन रहे हैं, हमारे इधर घर के जितने अगल बगल कम से कम 500-600 घर हैं, सब लोग सुन रहे हैं।
3: 500-600 घर, क्या स्पीकर में बांध रखा है क्या रेडियो भाई साहब?
4: रेडियो रेडियो सबको खरीद कर मतलब खरीदवा दिए है ना कि सब लोग सुनिए प्रोग्राम हमारा। हाँ बढ़िया।
3: अच्छा, मतलब लोगों को रेडियो आपने खरीद के दिया है या लोग खरीद लिए?
4: नहीं है, कुछ 2-4 लोगों को खरीद के दिया है, 2-4 लोग अपना खरीद लिए, इसी तरह प्रोग्राम आता है तो सब लोग सुनते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें फोन भी उठाते।
3: तो अच्छा जी,
4: सब लोग सुनते हैं।

0: रिश्तेदार जितने लोग हैं ना कानपुर में भी सुना जाता है आपका प्रोग्राम।
1: अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपका प्रोग्राम की बड़ी तारीफ हुई है, कह रहे भैया हम आपका सुने रहीन और रेडियो में बोलत रही ना आप?
0: नहीं नहीं क्यों नहीं, सब लोग कहते हैं कि आप मतलब रेडियो हम ही सुन, मतलब हम ही स्टार्ट किए हैं हमारे घर में ना, इसलिए सबको मतलब रेडियो के जरिए जो भी है सब हाँ। लोग सुनते हैं, आज में आजकल प्रोग्राम सुना जाता है कानपुर में है, रिश्तेदार हमारे सब सुनते हैं।
1: तो ये बताइए कि आपका फेवरेट कार्यक्रम कौन सा है जो रेडियो पे आप सुनते हैं?
0: नहीं रेडियो में जितने मतलब आता है रेम्बो का रेम्बो वाला प्रोग्राम हम सब सुनते हैं।
1: एकदम हनहनुआ टाइप वाला कौन सा प्रोग्राम है आपका?
0: यही हनहनुआ वाला तो यही है रेम्बो कैफी, रेम्बो वाला रेम्बो कैफी जो शाम को 9 बजे आता है फिर रेम्बो ये हेलो फरमाइश वाला ये रहता है, ये इसको बहुत सुनते हैं हम लोग।
1: अच्छा, तो धान उनकी बेड़ उड़ पड़ रही होगी कायदे से आपकी एकदम बढ़िया बिल्कुल?
0: नहीं, हाँ बेड़ तैयार होगा ये बस 22-23 तारीख से लगने लगेगा धान इधर।
1: 22-23 तक धान कौन सा लगाए?
0: धान तो मतलब पतरिया भी लगा बोए हैं, उसके बाद मोतिया भी लगाए हैं बोए।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो अब गाना बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
0: गाना हमको सुनाइए जवाना दीवाना का, जवाने को अब तक नहीं पता, किसी को डेडिकेट करना चाहते तो नाम ले ले।
1: जल्दी से नाम लीजिए एकदम।
0: पहले तो होगा रसूलपुर गुलरा से प्रभाकर तिवारी जी, मेरे भाई भाई विनोद तिवारी, प्रमेश तिवारी, मुन्ना तिवारी और मनु तिवारी और होगा बेटू अवस्थी भी अभी यहाँ है कानपुर, तो वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं इस समय। और होगा प्रेम कुमार सिसोदिया जी, परमार जी होगा, राहुल भाई टावा से होगा और जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए गाने डेडिकेट रहेगा, खासकर आपको आपके फिल्म की टीम को और जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए।
1: कोई रह तो नहीं गया?
0: नहीं, और प्रकाश पासवान जी सुन रहे हैं, उनके भी समय प्रोग्राम उनका नाम भूल गए थे, उनको भी डेडिकेट रहेगा।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी लंबी बातचीत हुई और ये गाना जल्दी से आप सुनिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर धड़कन लखनऊ पर ये बेहतरीन सा प्रोग्राम और गाने।

0: भी बता दे कि भाई साहब क्या क्या चीजें गड़बड़ हो रही हैं और क्या क्या चीजें सही हो रही हैं। फिलहाल ऐसा ही कुछ बातें हम करने वाले हैं, हमारे और एक कॉलर हैं जुड़े हुए। हेलो।
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, क्या नाम है आपका?
1: सर मेरा नाम है रोशनी रावत
0: जी,
1: नामा पोस्ट बमना, तहसील सतीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम करते
0: जी। तो मुझे लग रहा है कि मेरे कार्यक्रम में पहली बार हम जब इनका नाम और इनका जो एड्रेस है ये खुद स्वयं अपने आप से बता रही हैं, क्योंकि अक्सर इनका ईमेल हम अपने माध्यम से हम खुद पढ़ते हैं कि भाई ये उन्नाव की रहने वाली है और चंडीगढ़ में शिफ्टेड हैं। तो ये बताइए चंडीगढ़ में मौसम कैसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो है जी
1: मौसम बहुत अच्छा है, और वैसे तो जैसे उत्तर प्रदेश में वैसे यहाँ भी है।
0: अच्छा, मतलब वहाँ पे भी गर्मी है?
1: जी सर।
0: वैसे यहाँ पे तो एकदम झुलसने वाली गर्मी है, और आपको बताते चले आज मंगलवार था, लखनऊ में एकदम भंडारे बट रहे थे, एकदम पूड़ी सब्जी कचौड़ी।
1: जी सर, बड़े मंगल की सर सभी को बहुत बहुत बधाई, और हमारी बबीता जी गई थी आज लंगर खाने।
0: अरे बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि गाना कौन सा सुनेंगी और किसको डेडिकेट करना चाह रही हैं?
1: सर सबसे पहले आपको डेडिकेट रहेगा
0: और जी, बहुत धन्यवाद।
1: उनको डेडिकेट रहेगा, बबीता राव लखनऊ से चल रही है आपको, और गुलत्ता दीदी चंडीला से, नीलू शर्मा दीदी रूपुर चंदेला से, और समा परवीन जी ताजिया, और जितने भी लिसनर हमारे सुन रहे हैं ना सभी को डेडिकेट रहेगा सर।
0: अच्छा चलिए बढ़िया है। क्या वैसे ये बताइए कि चंडीगढ़ में करती क्या है आप, मतलब पढ़ाई लिखाई करती क्या? अच्छा साइबर कैफे है आपका, चलिए बढ़िया है। तो फ्रीक्वेंसी आप वहाँ से सुनती हैं, लखनऊ से जुड़ी रहती हैं?
1: सुनती हूँ, और पूरा दिन ही एफएम रेनबो चलता रहता है हमारे ऑफिस में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसे ही प्रचार प्रसार करते रहिए, बढ़िया है, सुनते रहिए।
1: रावत डिजिटल कम्युनिकेशन नाम है हमारी।
0: चलिए बहुत शुक्रिया। तो आप हमें ऐसे ही फोन करते रहिए, ईमेल करते रहिए, और सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। दोस्तों आप भी हमें फोन कर लीजिए अगर आपके पास अभी भी वक्त है, बहुत सारा वक्त है। और कुछ ईमेल आए हैं, मोहम्मद फैज जी का है, अशोक कुमार, संतोष कुमार चौरसिया, मोनू भैया हमारे ईमेल किए, लिखते हैं कि इस समय बजरंग बली के भंडारे चल रहे हैं और एक भंडारे में आया हूँ, प्रसाद वितरण कर रहा हूँ, आपको सुन भी रहा हूँ। संतोष चौरसिया लिखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे हैं, और ये यूपी के बलिया के रहे वाला हवन भैया यो। और अशोक कुमार जी ने लिखा है गुड इवनिंग, और आंदोलन मूवी का इनको गाना सुनना है, और साथ में है अजय राय, गुड्डू राज, आशीष, सभी लोग सुन रहे हैं, मितौली लखीमपुर खीरी से ये हमें ईमेल कर रहे हैं, और आकाशवाणी की अच्छा मोहम्मद फरहान जी हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए, और हम ये जो आपने लिखा है इस पर हम अपने टेक्निकल टीम को ज़रूर संपर्क करेंगे। फिलहाल गाना सुनते हैं बेहतरीन सा।

0: सात बजकर 51 मिनट हो गए हैं दोस्तों, और प्रोग्राम के कुछ ही मिनट बाकी हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी भी हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी आवाज जुड़ी हुई है, और सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और उनका नाम पता जानते हैं। हेलो।
1: हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो, दुनिया में अगर जीना है तो अपने को किसी से कम मत समझो।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन लाइन, बहुत ही बेहतरीन लाइन। वैसे ये जो बेहतरीन, वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग जी, क्या नाम है आपका?
1: रोहिणी देवी। और सर हम बोल रहे हैं ग्राम प्रभा जिला हरदोई से।
0: जिला हरदोई से बोल रही हैं रोहिणी जी, और ये बताइए रोहिणी जी आप क्या करती हैं?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: किस क्लास में?
1: 10th में, अभी 11th में आ गए।
0: अच्छा, मतलब 10th के रिजल्ट आ गए हैं और आपने 11th में प्रवेश कर लिया है। तो ये बताइए कि जब रिजल्ट टाइम था तो ऐसे धक धक वाली फीलिंग या डर वाला फीलिंग ऐसा आपको हुआ कि नहीं?
1: नहीं सर, डर बिल्कुल नहीं लगता था।
0: अरे वाह क्या बात है, और रिजल्ट को लेके आपका कुछ कहना?
1: नहीं सर
0: जी, अभी आपने बताया था कि आप स्कूल में फर्स्ट आई हैं, तो कैसा लगा जब आपको पता
1: बहुत
0: चला?
1: अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, स्कूल में पूरा टॉप किए थे।
0: अरे वाह, तब तो मिठाइयाँ उठाइयाँ खूब खाने को मिलेंगे, खूब तारीफें बटोरने को मिली होंगी आपको।
1: हाँ सर, मिठाइयाँ तो खूब खाने को मिली थी।
0: तो बताइए गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: और सर आप भी आइएगा, आपको भी खिलाएंगे।
0: बहुत शुक्रिया, हम बिल्कुल, एक गाने देखिए आप सुना रही हैं, मिठाइयाँ ही तो हैं हमारे लिए, तो गाना कौन सा सुनेंगे आप ये बताइए।
1: हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे।
0: गाना किसको डेडिकेट करना चाह रही हूँ इसे?
1: हाँ सर, ये गाना सुनना है।
0: अच्छा सुनना तो है, सुना ही देंगे हम, डेडिकेट किसको करना चाहेंगी, कौन कौन है जो इस गाने को सुनने के लिए बिल्कुल बेकरार बैठा हुआ?
1: हमारे फ्रेंड है वैशाली एंड आयुषी, और हमारे सिस्टर है मोहिनी, और आपको सर और सभी सुनने वालों को सर, ज्योति मैम को।
0: ज्योति मैम को गाना सुनवाना है, ठीक है, ज्योति मैम भी सुन रही हैं। तो ये बताइए कि अब 10th आपका पूरा हो गया, 11th में आ गई हैं, तो 12th के बाद क्या करना है आपको? मतलब जीवन का कुछ ऐसा गोल बनाया होगा ना कि मुझे भाई ये करना है, ये बनना है, यहाँ जाना है?
1: हाँ सर, मैं टीचर बनना है।
0: टीचर बनना है?
1: हाँ।
0: अच्छा, बच्चों को शिक्षा देनी है, पढ़ाना है। तो ये बताइए कि अगर आप टीचर बन गई और कोई बच्चा अगर बदमाशी करे तो उसकी पिटाई लगाएंगे कि नहीं?
1: नहीं सर, पिटाई तो नहीं करेंगे।
0: क्योंकि पिटाई करना बिल्कुल गलत बात है बच्चों का, है ना?
1: और सर हमारे बहन से भी थोड़ा बात कर लीजिए।
0: जल्दी से बात कराइए, जल्दी से बात कराइए।
2: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, आप लोगों की दोनों लोगों की आवाज बिल्कुल एक जैसे ही है। क्या नाम है आपका?
2: मोहिनी।

0: नाम है।
1: अच्छा, मोहिनी और रोहिणी दोनों दो बहनें। तो मोहिनी जी, आप किस क्लास में पढ़ती हैं, क्या करती हैं आप?
0: जी सर, हम सर पढ़ाई करते हैं।
1: अच्छा, पढ़ाई करती हैं। तो आपका फेवरेट मतलब क्या काम है, मतलब आप गाने सुनना, रेडियो सुनना, लिखना, पढ़ना, कढ़ाई सिलाई, क्या करती हैं आप?
0: पढ़ते भी हैं, रेडियो भी सुनते हैं।
1: अच्छा, आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है जो आप बहुत अक्सर सुना करती हैं रेडियो पे?
0: जी सर, रेडियो भी सुनते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, दोनों हमारे फेवरेट हैं।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको अब आपका गाना सुनवा दें?
0: जी सर, सुनवा दीजिए।
1: चलिए फिर, आप अपना गाना सुनिए और इंजॉय करिए हर एक प्रोग्राम 100.7 FM रेनबो पर। दोस्तों, 7:54 हो रहा है, प्रोग्राम को इसी गाने के साथ मैं वाइंड अप करूंगा। मिलूंगा कल सुबह गुड मॉर्निंग लखनऊ में। तो अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। सब मिलके बोलिए एक साथ, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़ी पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को फिर से होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित NTA मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर सभी बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि परीक्षा सामग्री परीक्षा केंद्र तक सही और समय पर पहुंचे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कहा कि प्रत्येक शिशु को गर्भावस्था के प्रत्येक चरण में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने लाखों गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके सुरक्षित मातृत्व को एक जन आंदोलन बना दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

0: धड़कन लखनऊ की।
1: और अभी एक आवश्यक सूचना, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के

बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना न भूलें हमारे चैनल यानी एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। हमारे फोन नंबर है 0522223885 और 0522223852 और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।

गुलाबी सर्दियों में ओढ़ी हुई हल्की शॉल, ठिठुरती ठंड में जलता अलाव, कड़कती धूप में गदराए गुलमोहर अमलतास, या फिर तपती जमी पर बारिश का एक कतरा। हाँ, मैं हूं रजनीगंधा। सतरंगी चैनल का एक ऐसा एहसास जो है हर दिल के लिए खास, सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर रात 10 से 12। रजनीगंधा।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

धीरे धीरे इश्क होता गया, धीरे धीरे इश्क होता गया, मैं उसमें वो मुझ में खोता गया। धीरे धीरे इश्क होता गया, मैं उसमें वो मुझ में खोता गया। बढ़ने लगी दिल की धड़कने उसके नाम से, बढ़ने लगी दिल की धड़कने उसके नाम से, वो मेरी मैं उसका होता गया।

शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब बात मोहब्बत की आती है तो गज़ल उसमें सबसे एक ऐसा ज़रिया बनती है जो आपकी बात आपके दिल भर तक पहुंचा सकती है। कहते हैं गज़ल सिर्फ गायकी नहीं, ये दिल की धड़कनों का हिसाब है, वो हिसाब जहां किसी की आमद उन धड़कनों को और भी बढ़ा देती है। किसी की आहट, किसी से मिलने का वक्त, किसी से मिलन की बात या फिर

मुलाकात का दौर, ये वो तमाम सारे वक्त हैं जब दिलों की धड़कनें सिर्फ बढ़ती नहीं बल्कि ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 8:24 का वक्त, आप शार आप सुन रहे हैं आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी मेज़बान रिचा के साथ।

वैसे सच है ये बात, जब आप किसी से बहुत मुद्दतों बाद मिलते हैं तो ये सवाल जवाब का दौर होना बेहद लाजमी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद ये सवाल जवाब उस इश्क को बताते हैं जो दो दिलों में कहीं ठहरता है। कहते हैं गजल जब भी कामने पड़ती है वक्त जैसे थम सा जाता है। गजल की खूबसूरती यही है कि वो कह जाती है जो हम अक्सर कह नहीं पाते। मिसाल के तौर पर जब आप किसी से मिलें और ये कहना चाहें कि आप को देख कर देखता रह गया और कह ना पाए, तो गज़ल यहाँ बिल्कुल मुफीद साबित होती है आपकी बात उस जगह तक पहुँचाने के लिए। रात के 8:38 का वक्त, आप शार इस वक्त आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी मेज़बान रजा के साथ।

वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता ना, खासकर तब जब महफिल इतनी हसीन हो, आप हमारे साथ हों। आज की शाम गज़ल को बस अब यहीं थामना होगा। रात के 8:41 का वक्त हो चुका है। ठीक 8:45 पर समाचार संध्या के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद ठीक 9 वापस हाजिर होंगे हम लेकर आपके लिए आपका मोस्ट अवेटेड और फेवरेट शो जिसे आप कहते हैं रेनबो कैफे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए बस हमेशा की तरह आपको सिर्फ और सिर्फ रहना होगा यहीं हमारे साथ, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। फिलहाल आज के आबशार से इजाज़त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।

0: मोमेंट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में

0: बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ॉन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना

0: में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing company.
2: यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहाँ हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।

0: इसी बीट पे दिल फिर धड़का।
1: पॉप और रॉक की सिज़लिंग केमिस्ट्री,
0: या फिर मिलियंस ऑफ लिस्नर्स ने क्रिएट कर दी हिस्ट्री।
1: द वन स्टॉप सेंटर फॉर गंदा म्यूजिक।
2: तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा हुसैन, तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
1: सिर्फ रेनबो कैफे में हर रात 9 से 10।
0: ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो।
1: धड़कन लखनऊ की।

इसमें कोई शक है कि इसकी चाल से बच के जाना मुश्किल होगा. किसकी चाल से? यस, आपके अपने रेनबो कैफे की चाल से, जो हर मंगलवार हम लेकर वापस आप तक आ जाते हैं. तो 9:04 का वक्त हो चुका है. बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार है, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि आपके बिना कोई द्वार इस वक्त वाला पूरा होता नहीं है. तो जहां कहीं भी आप आइए, क्योंकि आपके साथ वापस आ चुकी हूं मैं, आपकी दोस्त, आपके रिचा, लेकर आपके लिए आपका मोस्ट अवेटेड, मोस्ट फेवरेट शो, जिसे आप कहते हैं रेनबो कैफे. उस रेनबो कैफे में पहला गाना आप तक, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर है. मुझे आपके ईमेल्स का इंतजार, क्या समझे? आइए.

तो सिर्फ यूपी बिहार नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया इस वक्त आपके साथ, हम चाहते हैं यहाँ रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए आप कहीं से भी जुड़कर हमें सुन सकते हैं।

एग्जैक्टली आप सभी के दिल का करार लूटने के लिए आपका रेनबो कैफे बिल्कुल आपके साथ आ चुका है. बड़े सारे ईमेल्स भी आ चुके हैं मेरे पास. कितने अच्छे हैं आप सब मुझे पता है. मेरे कहने से पहले ही आपके ईमेल्स आने शुरू हो जाते हैं जो इस बात को सीधा बताते हैं कि हाँ भैया जो है ये वाला शो आपके दिल के जो बेहद करीब रहता है वो शुरू हो चुका है. तो आपके हम ईमेल्स तक भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले फाइनली एक बार वापस आपको बता दूं कि fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आपके ईमेल्स का बेसब्री से इंतजार करते हुए हम जुड़ चुके हैं आपके साथ. हम यानी आपके दोस्त, आपकी रुचा. तो जहां कहीं भी हैं आप आइए, और ये सिलसिला आपके बिना हमेशा अधूरा ही रहता है. क्या समझे आप? तो चलिए कहीं मत जाइए. पहला ईमेल किसका आ चुका है बताऊंगी अभी, लेकिन उसके पहले गाने हैं बड़े सारे जो आप तक पहुंचाने हैं. और फिर कहना यही है कि जब रेनबो कैफे शुरू होता है ना, तो कमर अप कमर डाउन करते रहना बनते रहना चाहिए. और ये वाला गाना आप तक भेज रही हूँ, इस गाने के साथ साथ आप इंजॉय करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे. और ये जो कहने वाली बात ही नहीं है, मुझे पता है कि जब रेनबो कैफे शुरू होता है तो आप कमर अप कमर डाउन यूं ही करने लग जाते हैं. फिलहाल गाना आप तक.

हाँ तो आपको किसने रोका? अगर आपको ऐसा आपका ऐसा मन कर रहा है कि आपको साथ में डांस करना है तो बिल्कुल आइए भाई, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, रेनबो कैफे आपके लिए है। 9:16 का वक्त हो चुका है, बड़े सारे ईमेल्स मेरे पास आ चुके हैं, चलिए अब हम बढ़ते हैं उनकी तरफ भी, क्योंकि ये सिलसिला पता है कि आपके साथ आपके बिना कभी पूरा होता नहीं, आपका रहना हमेशा ज़रूरी होता है। पहला ईमेल जो मेरे पास आया है ये हम तक पहुँचाया है मोहम्मद शहीर साहब ने, और लिख रहे हैं कि बड़े दिनों बाद अपने भाई के मोबाइल से ईमेल भेज रहा हूँ। कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, देखिए आप भाई साहब के मोबाइल का, कितनी अच्छी बात है। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने उनके मोबाइल से रेनबो कैफे में आपका ईमेल भेजा है, बड़े खुश हो जाएंगे, आपको सच बता रहे हैं। कह रहे हैं भाई साहब का नाम है मोहम्मद फैज़ और रामपुर कटरा ज़िला बाराबंकी से आप ईमेल भेज रहे हैं, आपको आबशार अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये शो पसंद आ रहा है, इसका आपको इंतज़ार था, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने लिखा अच्छे अच्छे गाने बजाना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब कितना हो पाएगी पूरी ये आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है। दोस्त का नाम ले लेना, उन्होंने कहा है मेरे दोस्त हैं बाबू अंसारी, तो क्यों परेशान है अभी, बाबू अंसारी जी भी हैं हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अभी हम उनका ईमेल नहीं पढ़ेंगे। बहरहाल आपने कहा है तो आपकी तरफ से एक दोस्त ने एक दोस्त को याद किया, तो आप उनका नाम हम ले लेते हैं, बाबू अंसारी जी आपको मोहम्मद शहीर साहब याद कर रहे हैं, ठीक है। साथी शमा परवीन एंड गुलाब एस, क्या लिखा है पूरा नाम, और रिंकी पिंकी, ये तब अच्छा गुलफसा का नाम लिखा होगा आपने मेरे ख्याल से शायद, और पिंकी रिंकी को भी याद किया है, तो थैंक यू सो वेरी मच आपकी ईमेल के लिए। आंचल सेठ आ चुकी है मेरे पास, मेरे साथ एक्चुअली, क्या लिख रही है, लिख रही है आबशार आपको बहुत अच्छा लगा, और मंद मंद हवा और रेनबो कैफे पर गाने दोनों आनंदमय होगा, कोशिशें हैं, बाकी कितनी पूरी होंगी ये आप हमको बता दीजिएगा जब शो एंड अप करेंगे, ठीक है। बहरहाल आपने ईमेल भेजा, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। जयपाल यादव आ चुके हैं हमारे पास और लिख रहे हैं कि शो आपको अच्छा लग रहा है, आबशार की सारी गजलें आपको पसंद आई और अच्छी लगी, और इस वक्त रेनबो कैफे भी आपको अच्छा लग रहा है, आवाज़ एंड प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच आपके द्वारा दी गई प्रशंसा के लिए। और आपने हमेशा की तरह में जिला खीरी ललहवा से आपका ईमेल भेजा है, आपके साथ विजयपाल यादव, बबलू यादव और इंद्रपाल मिश्रा जी हैं आपके साथ, शुक्रिया धन्यवाद ईमेल्स के लिए आपके। इंद्रपाल मिश्रा जी भी आ चुके हैं, लिख रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सभी लोग साथ मिलकर सुन रहे हैं, धन्यवाद। ग्राम अमृता महोली सीतापुर से आपका ईमेल हर बार की तरह वापस हमारे पास पहुंच चुका है। नेक्स्ट ईमेल किसका है, अश्नूर नूर अंसारी जी रोज की तरीके से आज फिर जुड़े हैं और आपके साथ हैं, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी, बहुत शुक्रिया आप सब रोज जुड़ते हैं, सुनते हैं हमें, ये अच्छी बात है और कोई मौका नहीं आप चूकते, ये मैं कह सकती हूँ आपकी ईमेल्स के लिए, इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है ना। सौरभ त्रिपाठी क्या लिख रहे हैं, चलो पढ़ देती हूँ, लिख रहे हैं कि आपके द्वारा प्रस्तुत सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, दिल से धन्यवाद इसके लिए, ये लो। अच्छा लगता है जब आप ऐसा कुछ लिख देते हैं, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है आपके साथ। आपने में लिखा है जमुराव जिला रायबरेली से आपका ईमेल है और गौरव तिवारी हैं आपके साथ, साथ में मिलके सुनिए बड़ा मजा आएगा, और जब डांस करते समय दो चार लोग साथ में आ जाते हैं तो फिर तो क्या ही कहने होते हैं ना, मतलब अलग ही माहौल जम जाता है, अकेले डांस करना कभी कभी लगता है अकेले डांस कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कोई तो साथ में आ जाए। इसीलिए कहती हूँ बार बार कि आप सब आइए, आप सब आइए, आप सब रहते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है माहौल। बाबू अंसारी जी देखो हमने कहा था ना कि अभी आपका नाम आपके दोस्त ने लिया, पर क्यों परेशान है, वो खुद आ जाएंगे थोड़ी देर में, और अहमदपुर बाजार बाराबंकी से सीधा हमारे पास आ गए हैं।

रेनबो कैफे के जरिए यहाँ जुड़ गए हैं और एक बड़ा GIF अच्छा सा भेजा है जिसमें बड़ी मस्ती से डांस भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको देख के। और आपने लिखा है कि आप कैसी हैं, तो मेरे ख्याल से मैं ठीक हूँ, आप बताइए आवाज से कैसी साउंड कर रही हूँ, ठीक है। और आपने हमें लिखा है मूड बिल्कुल मस्त मस्त हो रहा है, बारे इससे अच्छी बात और क्या होगी, जब माहौल है रेनबो कैफे का दौर है तो ये होना तो जरूरी है ना। तो चलिए, हाई हील्स जिनको पहनना है वो हाई हील्स पहन लें, जिनको बढ़िया घाघरे वाघरे अच्छे जिन्होंने सिलवा के रखे अब रेनबो कैफे के दौर में उनको पहनिए, और नहीं तो काला चश्मा लगा लीजिए और काला चश्मा लगाकर मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो फिर ये समा है, और इस समा में जो रेनबो कैफे का जब दौर बनता है ना, तो भैया इसकी बात ही अलग होती है। चलो, ये अगला गाना भेज दिया है आपके सबके रेडियो सेट्स पर, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आपके ईमेल्स का है मुझे बेसब्री से इंतजार। क्या समझे आप, आइए मेरे साथ।

जानते हैं तो बच गए 31 मिनट का वक्त, थोड़ा सा सांस ले लेनी चाहिए क्योंकि लगातार एक के बाद बैक टू बैक तीन गाने आप तक पहुंचा दिए ताकि आप जो है डांस के मूड में बिल्कुल बने रहे हो। ये जो डांस नंबर्स हैं इस वक्त जो रेनबो कैफे के दौर से हैं, इसमें आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, ये वाली बात हो रही है, अच्छी वाली बात हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है जो आपके ईमेल्स मुझे बता रहे हैं। सदाशिव जी का भी ईमेल आ चुका है, लिख रहे हैं 9 बजे का ये अलार्म बड़ा ही कमाल है और जैसे ही 9 बजता है मचता धमाल है। देखा, तभी हमने कहा कि हम नहीं कह रहे, ये आप खुद ही हमसे कह रहे हैं। और आपने हमें लिखा है सलेमपुर पोस्ट मुंडेरी जिला सीतापुर से आपका ईमेल आपने भेजा है, तो शुक्रिया करम मेहरबानी सदाशिव जी आपके ईमेल के लिए। ऐसे ही आगे भी आपका ईमेल हम तक पहुंचाते रहिए और हम इसे वापस आप तक देते रहेंगे। राजकमल यादव आ चुके हैं, राजकमल यादव बरैया है ना ये नाम है आपका, और आपने हाँ बरैया ये नाम है, और आपने लिखा है हमें सूरतगंज बाराबंकी से आपका ईमेल, लिख रहे हैं कैसी है आप, प्रोग्राम की धमाकेदार शुरुआत। और आपने आगे लिखा है जब आप आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, धमाकेदार गाने बजते रहते हैं। अरे धीमे से पढ़ ली हमने ये बात बट बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। और ये जो प्रशंसाएं आप सब लिख के भेज देते हैं ना, यकीन मानिए ये बड़ा धमाल और कमाल कर जाती है, क्योंकि फ्यूल एक जैसा होता है ना, वो मिल जाता है कहीं आप सबकी ऐसी बातों के जरिए। अब अगला ईमेल जो है, तो इनके ईमेल के लिए मैं पहले ही बोलती हूँ नॉक नॉक, और जब हम ये कहते हैं तो आप सभी समझ जाते हैं कि ये ईमेल किसका है, हम किसका ईमेल आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। जी ये कोई और नहीं बल्कि अनिल कुमार दीक्षित जी हैं, LDA कॉलोनी कानपुर रोड से आपका ईमेल मेरे पास जब आता है तो लिख कर आता है हाउस दीक्षित, और हम खटखटा देते हैं उस दरवाजे को और फिर अंदर से एक ईमेल निकलता है बड़ा प्यारा सा। आप लिख रहे हैं गुड इवनिंग, कैसी हैं, और अच्छा लगा आवाज़ सुनकर और आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इसके लिए शुक्रिया। अविका इस वक्त आपके साथ है जो डांस कर रही है, हेलो का कैसी है आप, उम्मीद करती हूँ कि आपके पैर लगातार थिरक रहे होंगे, और जब तक अभी हम आधे घंटे और हैं आपके पास इस शो में तो उम्मीद करती हूँ कि आप लगातार उस कंटिन्यूटी को बना करके रखेंगी। बहुत शुक्रिया, ढेर सारा प्यार, यूं ही हमारे साथ जुड़ी रहिए और हमें क्या चाहिए, है ना। नेक्स्ट ईमेल किसने भेजा है, मेरे पास ये आया है सुधांशु जी का, और सुधांशु जी ने हमें लिखा है ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, लिख रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, सब कुछ पसंद आ रहा, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, और आपके साथ सुमन और हिमांशु ये दोनों लोग मिलकर प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, तारीफों के लिए धन्यवाद, बस ऐसे ही लिखा करिए, भेजा करिए, अच्छा लगता है। कमल पांडे जी मिल गए ढूंढ करके हमको, और आपने हमें लिखा है ग्राम मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल भेजा है। रेनबो कैफे आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है जो आपको वाकई पसंद है, और इसमें बजने वाले सारे गाने आपको बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ईमेल के लिए, और आपका ईमेल शामिल हो गया है, ठीक है। आई गेस आई होप कि आपने जरूर सुन लिया होगा। मोनू सेठ जी आ चुके हैं, आपने जो लिखा है मोनू सेठ जी, मुझे लगता है कि हम कोशिश वही कर रहे हैं कि हाँ आपके रेनबो कैफे में और आपके जो डेली जो आप सुनते हैं पॉप टाइम उसमें कुछ वो चीज़ें अलग होती और हैं, क्योंकि आज जो गाने आप सुन रहे हैं वो हरियाणवी हैं या भोजपुरी हैं या पंजाबी हैं या फिर कुछ अलग भाषाओं से हो सकते हैं या होते हैं, पॉप टाइम में आप डिफरेंट मूड के गाने सुनते हैं, तो आई होप कि ये जो आपने बात रखी है ये

पहुंच गई होगी आप तक. वकील अहमद जी मेरे साथ हैं. आपने लिखा कि आवाज़ अच्छी लग रही है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, गाने बढ़िया बज रहे हैं, और आपने हमें मंसूरी कटका हथूरी ज़िला सीतापुर से आपका ईमेल भेजा. और आपके साथ साहिबा अंसारी, साजिया, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और एमन नवाब भी हैं. गर्मी बहुत हो रही है, ये क्या मतलब? एमन नवाब से बताना चाह रहे हैं गर्मी बहुत हो रही है, कम से कम कॉमा पॉज कुछ तो लगा देते तो हम समझ जाते. बहरहाल थैंक यू सो वेरी मच आपकी ईमेल के लिए. हाँ, गर्मी है तो खास ख्याल रखिए, पानी वानी का इंटेक लगातार आप लेते रहिए, जरूरी है वो आपके लिए, है ना. और अगला ईमेल जो आया है ये है राम राज जी का. हमेशा की तरह आपका ईमेल रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से है और आपके साथ राजू भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका सभी हैं जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आपने ढेर सारा आशीर्वाद भेजा है. इसके लिए भी बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका. जावेद अख्तर साहब भी आ चुके हैं, क्या लिख रहे हैं चलो पढ़ देती हूँ. उन्होंने लिखा है कार्यक्रम की शानदार शुरुआत, आप आई तो आपका खुमार रेनबो कैफे में खूब धमाल मचाएगा. यार देखिए हमने कोशिश की है, बाकी तो आपके ईमेल बता देते हैं कितना अच्छा कितना नहीं, है ना. और लिखा है गाने तो ऐसे हैं कि झूम कर जरा बोर हो सकते हैं, तो बस भी ठीक है, ऐसे ही बने रहिए, यही करते रहिए, और हमें क्या चाहिए. रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपका ईमेल है. शमशूल कमर राही और बेगम रुखसार हैं जो साथ में इस वक्त हमें सुन रहे हैं. रोशनी रावत का भी ईमेल आ चुका है, पढ़ेंगे अभी वापस जब आएंगे. फिलहाल 9:36 का वक्त हो चुका है. रेनबो कैफे इस वक्त आप सुन रहे हैं आपकी अपने 100.7 FM रेनबो पर, आपकी दोस्त आपकी रुचा के साथ. और ये जो गाने हैं ना, ये बस यूं ही आप तक पहुंचाने की कोशिशों में हम हैं और इन गानों पर आप डांस करते रहें, आप थिरकते रहें, इस उम्मीद में भी हैं मैं. चलिए गाना भेज दिया आप तक, इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को.

0: अच्छा तो ठुमके लगा लगा कर आप थोड़ा थक गए होंगे, तो एक गाना थोड़ा सा डिफरेंट मूड का हम आपको दे रहे हैं। इस गाने को भी सुनिए, एंजॉय कीजिए, और सुनने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको गाना लगा कैसा। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप जो थक गए हैं थोड़ा सा कहीं आप यू नो थम भी जाएं, लेकिन फिलहाल हम नहीं थमेंगे। इस गाने के बाद वापस लौटेंगे, आपके ईमेल्स होंगे। 9:44 का वक्त हो चुका है, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी आरजे रचा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। सुनते रहिए न्यूज़, जुड़े रहिए।
1: क्यों तरसावे हो मने सकल दिखावो जी थारी शरारत।
0: अच्छा ये गाना उनके लिए भी है जिनको थोड़े हल्के हल्के स्टेप्स आते हैं डांस करने में ना, तो उनके लिए भी भेज दिया, हल्के फुल्के हाथ हिलाकर डांस कर लीजिए, ऐसी क्या बात है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने इस गाने को बहुत बहुत बहुत इंजॉय किया होगा. यकीन मानिए हमने यहाँ वाकई बैठ करके, भले ही मैं इस वक्त हॉट सीट पर, लेकिन उसके बावजूद मेरे प्यार यहाँ बिल्कुल रुके नहीं है. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपने भी इस गाने का जो सेंस है, इसका जो एसेंस है ना, इसको उतना ही इंजॉय किया होगा. और अगर किया है तो आपकी ईमेल्स मुझे इस बात को बिल्कुल बताई देंगे. बहरहाल 9:49 का वक्त हो चुका है. अगला ईमेल मेरे पास जिसका है, ये है गुलफ़ज़ा सिद्दीकी और लिख रही है, कैसी है आप? तो आपकी दुआओं से बिल्कुल बढ़िया है. आपने लिखा कि एकदम झकझकुआ, एकदम प्रोग्राम चल रहा है, मजा आ रहा है सुन करके, अच्छा लग रहा है जब इस तरीके

क्योंकि ईमेल आते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है. आपने लिखा कि छत पर है, गर्मी है तो मौसम का आनंद भी ले रहे हैं, और आपके साथ रोशनी रावत, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, अनशमा परवीन, महक अंसारी, ममता, गौतम, निशा सभी हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त. थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए. बस ऐसे ही ईमेल्स भेजते रहिए, फिर देखिए आपके हिवड़ा में भी ना ऐसे ही मयूर नाचेंगे जैसे अब इस गाने के साथ जो भी आपने सुना था. यकीन मानिए मेरे बड़े फेवरेट वाले गानों में से ये गाना अब बन गया है. एग्जैक्टली. और अगला ईमेल जिन्होंने भेजा ये है कृष्णकांत सिंह जी, और हमेशा की तरह आपका ईमेल बड़ा प्यारा सा आया है, खूबसूरत रंग बिरंगी चीज़ों के साथ. आपने लिखा है कि प्रोग्राम की खास बात यह है कि तन और मन दोनों नाच उठता है, तभी तो कहते हैं कि रेनबो कैफे जब शुरू होता है तो पैरों को रुकने की इजाज़त मत दिया कीजिए. उनसे कहा करिए भैया इसी बहाने थोड़ी वर्जिश कर लो, थोड़ा सा वैसा दिन भर करोगे नहीं तो थोड़ा सा डांस के बहाने कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, आप क्या समझे. आपने लिखा या तो शादी के पार्टी में डीजे वाले बाबू के धुनों पर मन तक धिना धिन नाच उठता है, या फिर रेनबो कैफे को सुनकर मन एकदम खुश हो जाता है. 110% आपकी इस बात से हम भी इत्तफाक रखते हैं. और आपने हमेशा की तरह आपका ईमेल कैसरगंज बहराइच से भेजा है, बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद ईमेल के लिए. सोनू परवाना जी क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम रेनबो कैफे, बहुत उम्दा शुरुआत, सराहनीय, प्रशंसनीय, थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए. अगला ईमेल किसने भेजा है ये भी देख लेते हैं. गीता सेठ जी क्या लिख रही हैं आप. आंचल सेठ जी कह रही है अच्छा ठीक है आपकी बात हम तक पहुंच गई है और हमने बस उसको करके रखा हुआ ऐसा है ना. और आपने लिखा है, गीता सेठ जी लिख रही हैं प्रोग्राम में धमाल ही धमाल है, धन्यवाद शुक्रिया. और लिख रहे हैं आकाशवाणी ने रिश्तों को मजबूत किया, जिस प्रकार पौधों को पानी की जरूरत होती है हम लोगों को मनोरंजन जानकारी के लिए रेडियो आकाशवाणी की जरूरत होती है, तभी तो कहते हैं कहीं मत जाइए, इससे बेहतर आपको कहीं कुछ मिल नहीं सकता, बेजोड़ है ये, पता है. लिख रहे हैं घर में पकवान बनाते रहते हैं, घर के काम भी होते रहते हैं और साथ साथ रेडियो सुनते सुनते जो है मजा आ जाता है. हम जानते हैं इस बात को. मोनू सेठ जी आपका ईमेल वापस मिला, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रशंसनीय, सराहनीय है, आपने ऐसा लिखा, दिल से शुक्रिया. जितेंद्र नामदेव जी क्या लिखते हैं पता है, 9:52 हो गए, इसीलिए बिल्कुल फास्ट स्पीड से आपके ईमेल्स आप तक पहुंचाने की कोशिशों में हैं हम. और जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, कनक आरूही, सौम्या नामदेव, ये सब हमारे साथ हैं और आपने हमें जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आपका ईमेल भेजा है. आगे की बात बड़ी अच्छी लिखी है, आपका आना यानी थकान मिट जाना, आप आती हैं तो कार्यक्रम में बहुत मजा आ जाता है, दिल से धन्यवाद इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए. यकीन मानिए दिल से धन्यवाद, आप हमें सुनते हैं और उसके बाद आपके जो शब्द है ना प्रशंसा के तौर पर ये जब भेज देते हैं वाकई हौसला बढ़ जाता है. मनोज विश्वकर्मा जी लिख रहे हैं रेनबो कैफे प्रस्तुत करने वाली मीठी आवाज को प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच, जबरदस्त प्रस्तुति. मजे की बात यह है कि आप सभी लोग इस वक्त नदी के किनारे बैठे हैं, ठंडी हवा और मस्त जो काली वो क्या घटाएं और लहरें उनका आनंद ले रहे हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, अब क्या बताएं, यहाँ बैठे बस उम्मीद क्या इमेजिन कर सकते हैं. छत्तीसगढ़ से आपका ईमेल है, जिला बलौदा बाजार, ग्राम ताराशिव, मोहल्ला ठाकुर चौक से, शुक्रिया धन्यवाद. अगला ईमेल टाइगर खान यानी नीलू का आ चुका है मेरे पास, नहीं टाइगर खान ही कोई और है. इन्होंने लिखा है नरगिस वाली बिलाई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आप हमें ईमेल कर रहे हैं और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया दिल से. तेज बहादुर यादव जी भी आ चुके हैं और लिख रहे हैं हम सबके पसंदीदा आरजी, अरे वाह क्या बात. धन्यवाद. आपने लिखा जब आप आती हैं तो बहुत धमाल मचता सुपर से ऊपर, दुकान में थोड़ा बिजी होने के बावजूद समय निकाल के मेल कर रहा हूँ आपको, सच बताऊँ ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि आप हमारे लिए वक्त निकाल पाते हैं, कहाँ किसी के पास इतना वक्त है ना आज की डेट में. थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए. और आपने हमें गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा में इस वक्त आप हैं लेकिन रहने वाले रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए. विजेश सिंह जी आ चुके हैं कैसरगंज बहराइच से और लिख रहे हैं रेनबो कैफे जबरदस्त आपके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ और बड़ा मजेदार अच्छा लगता है, धन्यवाद इसके लिए भी. रोशनी वापस आपने क्या लिखा है, आपका ईमेल मुझे मिला रोशनी, मैंने पढ़ा ना नहीं पढ़ा, छूट गया, चलो वापस पढ़ देते हैं. आपने लिखा कि आप शायर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद आप आती हैं लेकिन इंतजार का फल अच्छा हो जाता है. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. और आपने लिखा कि गजब शुरुआत और एक शब्द में बोलूं तो लाजवाब बिंदास कमाल धमाल लग रहा है, पढ़ना जरूरी था पढ़ दिया. और हमेशा की तरह आपने आपका ईमेल सफीपुर जिला उन्नाव से, चंडीगढ़ में इस वक्त आप हैं वहां से सुन रही हैं, रहने वाली आप सफीपुर जिला उन्नाव की हैं. बबीता, नीलू, गुलफशा सभी के ईमेल्स आ चुके हैं तो राधे राधे आपकी तरफ से भी हम बोल दे रहे हैं. 9:54 का वक्त, अगला ईमेल उषा रावत का है, बड़े दिनों बाद उषा आप दिखाई पड़ी यहाँ मतलब हमें ईमेल्स के जरिए, और आपने लिखा है कैसी हैं.

और अभी रेडियो को ट्यून किया, कोई नहीं अब 12 बजे तक रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। शिवराज जी भी आ गए हैं और आपने हमें लिखा है आपका नाम शिवरतन है और बाबू रिहा पोस्ट बरौली मालिक जिला बाराबंकी से हैं और एफएम को धन्यवाद कि हर मेल हर प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, आपके लिए है इसलिए ऐसा होता है ना। और गाने की जो रिक्वेस्ट आपने की, आपको पता है रिक्वेस्ट इशू नहीं है, बट हाँ किसी दिन किसी और रोज़ ज़रूर से हम बजाने की कोशिश करेंगे। रजनीश पासवान जी आ चुके हैं, वेरी क्लाउडी गुड इवनिंग, अच्छा बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगरा से मेल कर रहे हैं और सीतापुर के रहने वाले, बहुत शुक्रिया रजनीश जी, मेरे ख्याल से आपने पहली बार आपका मेल भेजा है, आगे भी आप भेजते रहें हम दिल से ये चाहते हैं। 9:55 हो चुके हैं, क्या कहते हैं गाना आप तक पहुंचाया जाए, इस गाने को सुनिए और उसके बाद देखते हैं अगर ईमेल्स का वक्त हुआ वापस आएंगे आप तक कुछ ईमेल्स और पहुंचाने के लिए। बहरहाल पवन सिंह जी आपके रेडियो सेट तक पहुंच चुके हैं, इनको सुनिए और कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आपके अपने 100.7 FM रेनबो के साथ।

चलिए 9:57 का वक्त फाइनली शो को वाइंड अप करने की है बारी. मैं देख रही थी किसी का ईमेल छूट तो नहीं गया इस बीच, और मेरे ख्याल से मैंने सबके ईमेल आप तक पहुंचा दिए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल हम तक पहुंचाने के लिए. आगे भी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए. फिलहाल आज के लिए दिस इज आरजे रिचा साइनिंग अप फॉर नाउ इस शो से, लेकिन अगले घंटे और उसके बाद भी हम रहेंगे आपके साथ लेकर आपका अपना शो रजनीगंधा. और आपको पता है कि आपका रहना बेहद जरूरी. सुनते रहिए, न्यूज़ जुड़े रहिए.

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और एक रूप बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपीकॉस की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपीकॉस की कार्यप्रणाली एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए इसके माध्यम से आउटसोर्स व्यवस्था को तकनीक आधारित, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, प्रक्रियाओं और मानदेय व्यवस्था में एक रूपता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ दर्शन पूजन किया। शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन भी किया गया। अयोध्या स्थित हनुमान गढ़ी मंदिर में आज बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। वाराणसी नगर निगम ने शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय राहगीरों को राहत देने के लिए पहल की है। नगर निगम की ओर से दशाश्वमेध घाट से लेकर काशी विश्वनाथ गली के मोड़ तक विशेष रूप से हरा पर्दा लगवाया गया है। इससे बाबा के दर्शन पूजन के लिए कतारों में खड़े होने वाले और तंग गलियों से गुजरने वाले देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं को सीधी धूप से बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा मलदहिया, रथयात्रा, तेलिया बाग सहित शहर के अन्य प्रमुख तिराहे व अन्य प्रमुख चौराहे पर भी छांव के लिए नगर निगम ने बड़े बड़े हरे पर्दे लगवा दिए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 107.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ के, जिस पर अगला कार्यक्रम है रजनीगंधा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: रात के खामोश पहर में

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 एफएम रेनबो।

दिलों में प्यार का पैगाम लिख देते हैं, दिलों में प्यार का पैगाम लिख देते हैं, मोहब्बत में डूबी एक हसीन शाम लिख देते हैं। महकती रहे आपकी ज़िंदगी रजनीगंधा की तरह, महकती रहे आपकी ज़िंदगी रजनीगंधा की तरह, इस हसीन रात को आपके नाम लिख देते हैं। तो रात के 10:09 का वक्त और एक बार फिर से ख्वाबों वाली खूबसूरत रात रजनीगंधा के फूलों की भीनी खुशबू से सजी हुई लेकर आपके साथ वापस हाजिर हूँ। मैं आपकी दोस्त, आपकी रचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। वो रजनीगंधा की रात जहाँ मोहब्बत के किस्से आँखों में सुंदर सपने की तरह सजते हैं और फिर बस जाते हैं दिल में कभी ना भुलाई जा सकने वाली याद की तरह। तो चलिए आज की इस खूबसूरत रात में कुछ सुंदर सपने, कुछ खूबसूरत बातें, कुछ खूबसूरत किस्से, कुछ खूबसूरत यादें हम यहाँ सदाबहार नगमों के ज़रिए आप तक पहुँचाएंगे। और आप जानते हैं आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना हमेशा की तरह गुजारिश रही कि आपको यहाँ रहना है हमारे साथ, क्योंकि आप जानते हैं इस सफ़र को पूरा करने के लिए आपका यहाँ होना बेहद ज़रूरी है। रात के 10:10 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, आपकी दोस्त आपकी रचा के साथ।

तभी तो मैंने आपसे कहा कि रजनीगंधा वो जगह है जहाँ मोहब्बत के किस्से आंखों में सुंदर सपने की तरह सजते हैं, वो आंखें जिनमें कभी किसी का अक्स है जो कभी दर्पण की तरह आपको दिखता है तो कभी सुंदर सपने की तरह आपको दिखाई पड़ता है। और ये दौर जब रजनीगंधा का हो तो क्या ही कहने, सदाबहार गीत कहीं जैसे पूरा कर जाते हैं उन्हें। और मुझे पता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। रात के 10:19 का वक्त हो चुका है, वो पहर जब लगभग आधी दुनिया सो सी जाती है। कहते हैं कि उस वक्त कायनात का सबसे खूबसूरत दौर शुरू होता है, वो दौर जहां दिन का शोर थमा थमा सा होता है लेकिन सन्नाटे को जैसे जुबान मिल जाती है, जो धीमे से कानों में मोहब्बत की राग को घोलते हुए से मालूम पड़ते हैं, खासकर उन दिलों को जो इस वक्त भी कहीं किसी की याद में धड़कते हुए रजनीगंधा के इस दौर में मेरे साथ यहाँ जुड़े होंगे। कभी आपने सोचा है कि रात इतनी खामोश क्यों होती है? शायद इसीलिए ताकि जब दो दिल आपस में बात करें तो उनके बीच जमाने की कोई भी आवाज़ कहीं खलल ना डाल सके। शब्दों से परे उस दुनिया में जा बसे वो दिल जहाँ सिर्फ तुम, मैं और हम दोनों के बीच बहती हुई ठंडी हवा हो, जिसका झोंका जब जब दिल के पास से गुजरे, कानों के पास से गुजरे, तो हर बार ये एहसास कराए कि हाँ, कोई है तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुम्हारे लिए। और इस दौर को जीने के लिए यकीनन रजनीगंधा भी है आपके साथ। रात के 10:20 का वक्त, ये सफ़र आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रजा के साथ।

वैसे सच है ये बात, कहीं अगर आप देखें तो ये रात का सफ़र कुछ कहानी सा ही तो लगता है ना। कई बार मन करता है बस चुपचाप बैठकर यूं ही किसी चांद के तले, आसमां के तले उन कहानी को दो दिल सुनते रहें। कहते हैं रात जब अपने सबसे खूबसूरत शबाब पर होती है तो उस वक्त आसमान से एक मखमली नूर ज़मीन पर उतरता है, वो मखमली नूर जो चांदनी रात बनकर अपनी खूबसूरत चांदनी को बिखेरता है इस धरती पर, इस ज़मीन पर। एक ऐसी रात जहाँ वक्त मानो कहीं थम सा जाता है, ठहर सा जाता है, दो दिल कहीं जैसे एक दूसरे की तरफ खिंचते चले से जाते हैं। कई बार मन को जैसे अरमानों के पंख से लग जाते हैं, वो अरमानों के पंख जिनके साथ वो उड़ जाना चाहता है दूर कहीं सपनों की दुनिया में, वो सपनों की दुनिया जो रजनीगंधा के इस दौर में कहीं ज़्यादा और खूबसूरती के साथ आपकी आंखों में सजती है। तभी तो कहती हूँ कि रजनीगंधा के इस दौर में जब सदाबहार नगमों का एक किस्सा चलता है, ये वक्त चलता है, तो आप साथ जुड़ते हैं तो ये सफ़र और ख़ूबसूरत होता है। तो बस यूं ही रहना आपको हमारे साथ, और ये जो गाने हैं ना, यकीन मानिए दिल के किसी कोने को हर बार कहीं छू के जाते हैं, और ये बताते हैं कि ये गाने सिर्फ गाने नहीं बल्कि कहीं दिलों की कहानियाँ भी हैं। वो कहानियाँ जो मोहब्बत के दौर से निकल कर आती हैं, मोहब्बत की वादियों से निकल कर आती हैं।

अच्छा, खुशी में मन अगर मयूर बनता है ना, तो मोहब्बत में आपने कई बार गौर किया होगा कि दो दिल जैसे हंसों के जोड़े जैसे हो जाते हैं। वो हंस का जोड़ा जो बस एक दूसरे के साथ रहते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी को बसर कर देना चाहते हैं। होता है ना ऐसा? मुझे पता है। खामोश रात में जब दुनिया सो जाती है, तब इस माहौल में हवा का कोई झोंका रजनीगंधा की खुशबू लेकर जब आपकी सांसों से गुजरता है, तब दिल के किसी कोने में दबे हुए सपने जैसे जाग से उठते हैं। वो सपने जो इस खुशबू के साए में कहीं बुने जाते हैं। यकीन मानिए, ये वो सपने हैं जो ना तो बंद आंखों के मोहताज हैं और ना ही खुली आंखों के, क्योंकि ये सपने मन की आंखों से जो बुने जाते हैं। वो सपने होते हैं ये जो किसी के कांधे पर सिर रखकर उम्र गुजार देने के हैं। ये वो सपने हैं जो बिना किसी शर्त के किसी के वजूद का हिस्सा बन जाने के हैं। ये वो सपने हैं जो तमाम उम्र किसी से ना जुदा होने की किस्से, कहानियों, बातों और यादों और वादों को ले चल के साथ में चलने के सपने हैं।

ठीक इस गीत की तरह, जहाँ एक दिल प्यार है तो दूसरा प्रीत। और ये भी तो इस बात की वानगी है ना कि दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तू प्यार तू प्रीत, तेरा मेरा साथ तेरा मेरा जुदा होना मुश्किल है। ना यकीन हो तो इस गाने को सुन लीजिए, आपको बिल्कुल यकीन आएगा।

वैसे सच बताऊं, मोहब्बत से भरे दिल हमेशा यही चाहते हैं कि जिस वक्त वो मोहब्बत के दौर में हो, उस वक्त ना तो वो दिन बीते और वो ना रात बीते। ये समा, ये सफर हमेशा हमेशा उन दो दिलों के बीच चलता सा रहे। अक्सर लोग मोहब्बत को बड़े बड़े इजहारों का मोहताज मान लेते हैं। हालांकि मोहब्बत हमेशा बड़े इजहारों में मिले ये जरूरी नहीं। कभी कभी वो रोज की छोटी छोटी बातों में छुपी सी होती है, जैसे बिना वजह एक दूसरे को याद कर लेना, थके हुए दिन के बाद सिर्फ एक आवाज सुनकर कहीं दिल को सुकून सा मिल जाना, या फिर भीड़ भरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान के पास या किसी एक इंसान के पास दिल का ठहर जाना और उस ठहराव में कहीं गहरा सुकून महसूस करना, उसकी खामोशियों को बिना बोले बिना कहे समझ जाना, या यूं कहो कि समझने लगना। धीरे धीरे जब किसी की मौजूदगी दुआ जैसी लगने लगे, जिसके बिना हर खुशी थोड़ी अधूरी सी लगने लगे, तब समझ लेना कि मोहब्बत हो चुकी है, क्योंकि मोहब्बत

शोर नहीं करती, वो तो बस धीरे धीरे असर करती है। ठीक इस गीत की तरह जो ये कहती है कि उठेगी तुम्हारी नज़र धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नज़र धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे।

मैं तबाह हूँ तेरे प्यार में, मैं तबाह हूँ तेरे प्यार में और तुझे किसी और का ख्याल है। मैं तबाह हूँ तेरे प्यार में और तुझे किसी और का ख्याल है। कुछ तो मुझ पर गौर कर, मेरी जिंदगी का सवाल है।

सच है ये बात कि मोहब्बत कोई बड़ी कहानी नहीं होती, वो तो बस दो दिलों का धीरे धीरे एक दूसरे में कहीं घर बना लेना जैसा होता है। फिर दिल चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता, खिंचा चला जाता है उस अजनबी से एहसास की तरफ, ना चाहते हुए भी, जिसे वो जानता तक नहीं था, जिससे कभी मिला भी नहीं था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वही अजनबी कहीं दिल को अपना सा लगता है। शायद दिल में उस वक्त ये ख्याल भी आता है कि जैसे कोई साजिश हो तकदीर की, जो मिला देना चाहती हो उन दोनों को, जो लिख देना चाहती थी हाथों की लकीरों में उन दोनों को एक साथ। और फिर दिल बस कुछ यूं ही कह बैठता है कि तेरा यूं मेरी जिंदगी में आना, तेरा यूं मेरी जिंदगी में आना, फिर मेरी रूह में उतर जाना, तेरा यूं मेरी जिंदगी में आना, फिर मेरी रूह में उतर जाना। कुछ तो साजिश थी हवाओं की जैसे, कुछ तो साजिश थी हवाओं की जैसे, वरना आसा नहीं था दिल में मका बना पाना।

और अगर इस बात को आपको महसूस करना है ना तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. याद करिए वो दौर जब हम और आप पहली बार मिले थे एक दूसरे से अनजाने, लेकिन आज के दौर में एक दूसरे को बखूब जानते हैं. रात के 10:57 का वक्त हो चुका है. रजनीगंधा के फर्स्ट आपको वाइंड अप करने की है बारी, लेकिन बस यही गुजारिश कि आप कहीं मत जाइए, आपका रहना है बेहद जरूरी. अगले घंटे भी रहेगा मुझे आपका इंतजार रजनीगंधा के इस दौर में. सुनते रहिए, जुड़े रहिए.

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इसमें रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है।

प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और एक रूप बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपीकॉस की भूमिका को और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपीकॉस की कार्य प्रणाली एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए इसके माध्यम से आउटसोर्स व्यवस्था को तकनीक आधारित, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाने के निर्देश दिए। कानपुर में मेट्रो स्टेशनों के निर्माण में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। जकरकटी से नौबस्ता तक सभी स्टेशनों पर यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक साइनेज और पब्लिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम के इंस्टॉलेशन का काम पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा एवं संचालन संबंधी सभी मानकों के अनुरूप अनुमोदन के बाद कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक यात्री सेवाओं के विस्तार का शुभारंभ कर दिया जाएगा। ये जानकारी आज उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने दी। मथुरा जनपद में वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की गली में आज शाम एक छज्जा टूट कर गिर गया। मंदिर के गेट नंबर 5 की ओर जाने वाली गली में मकान का छज्जा गिरने से 9 श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके का निरीक्षण करने के साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: रात के 11:04 का वक्त एक बार फिर से वापस आपके साथ में आपकी दोस्त आपके रचा आपके अपने 107.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम रजनीगंधा में

जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये आप ही हैं वो जो रोज़ पलकों की दहलीज पर आकर किसी खूबसूरत सपने की तरह दस्तक देते हैं, और वो सपने जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा हमेशा साथ चलते हैं। रात की 11:08 का वक्त हो चुका है, बाहर खामोशी है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ दिल ऐसे हैं जो अभी भी धड़क रहे हैं किसी की याद में, कुछ आंखें हैं जो अभी भी जग रही हैं किसी के इंतजार में। पर वो जो आसमान है ना, उस तरफ अगर नजर उठा के देखेंगे तो बाहर आप समझ पाएंगे कि आसमान ने भी जैसे सितारों की चादर ओढ़ ली है। अभी शायद अब रात की बाहों में कहीं सुकून से जाकर सो जाना चाहते हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन इस खामोशी में भी एक जानी पहचानी सुगंध है, खुशबू है, वो खुशबू जो आपके पसंदीदा शो की है। जी हाँ, आपका मनपसंद शो जिसे आप रजनीगंधा कहते हैं, और रजनीगंधा के इस सफ़र में, इस दौर में वापस आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी रजा, हर बार की तरह उसी गुजारिश के साथ कि आप यहाँ ठहर जाइए कुछ देर और मेरे साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बिना ये सफ़र मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि आपके बिना दिल जो कहीं लगता नहीं। तो 11:09 के इस वक्त में रजनीगंधा के सेकेंड हाफ में वापस आप सभी का स्वागत, और मैं आपकी दोस्त, आपकी रिचा, आपके साथ, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है कि तेरे बिना जिया जाए ना? सिर्फ और सिर्फ सीधा सा कारण इसका यही है कि आपसे मोहब्बत जो है, सच में। कभी सोचा आपने कि मोहब्बत को लोग अक्सर क्यों सपनों जैसा कहते हैं? क्योंकि मोहब्बत वाकई में खुद एक ख्वाब ही तो है। जब हम किसी से दिल लगा बैठते हैं तो हकीकत के बीच ख्वाबों की एक नन्ही सी दीवार खड़ी हो जाती है। उस वक्त हर चेहरा उस जैसा लगने लगता है, हर गीत में जैसे उसी का एक अक्स होता है, हर बात में जैसे कहीं उसी का जिक्र होता है, वो जिसे आपको जिससे मोहब्बत सी हो जाती है। हाँ, उन सपनों के दौर में कई बार दिल से ये आवाज़ भी आती है कि ये सपनों का दौर है, ख्वाबों का दौर है या फिर कोई हकीकत है, पर बावजूद उसके भी दिल उन सपनों में कहीं बंधा रहना चाहता है, उन्हें जीना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है, बंद आँखों से, खुली आँखों के दौर से भी, क्योंकि मोहब्बत की तासीर कुछ होती ही ऐसी है, क्योंकि मोहब्बत खुद एक ख्वाब जैसी जो होती है। रात 11:15 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

कहीं बंद आंखों से किसी पहर में जरूर जीते हैं मोहब्बत के तौर पर। रात ढलती रही चांद चमकता रहा, रात ढलती रही चांद चमकता रहा, दिल में उनकी यादों का चिराग जलता रहा। ये इश्क है या रजनीगंधा का कोई जादू, ये इश्क है या रजनीगंधा का कोई जादू जो बिना कुछ कहे भी हवाओं में महकता रहा।

यादों की यही तो खूबसूरती है ना, कि वो दिन भर के उस पहर में जागती हैं जब सब सो जाते हैं। रात का ये पहर इन्हें शायद खासा पसंद है। लोग कहते हैं मोहब्बत वक्त के तराजू से जब गुजरती है ना, तो पीछे ढेर सारी यादें छोड़ जाती है। वो यादें जो अतीत का वो झोंका है जो वर्तमान की खिड़की को अचानक खोल देता है। कभी किसी के साथ बिताए हुए लम्हों के दौर में, तो कभी किसी के साथ गुजारे हुए पल के दौर में। कभी कोई पुराना खत, कभी कोई भूली भिसरी धुन, कोई गीत, या फिर डायरी के पन्नों में मिलता वो गुलाब का सूखा फूल। जब भी कभी आंखों के सामने आते हैं ना, तो जैसे बरसों पीछे ले जाते हैं हमें। हाँ, ये और बात है कि इन पलों में बसी हुई यादें कई बार होठों पर एक बेसाख्ता मुस्कान छोड़ती हैं, तो कभी कभी यादें

आंखों में नमी भी छोड़ कर जाती हैं। भले ही यादें एक खूबसूरत कोलाज की तरीके से हैं, लेकिन फिर भी सच तो ये है कि इन यादों के बिना हमारा कोई वजूद नहीं, हम और आप कुछ भी नहीं। ये यादें ही हैं जो हमें जीने का सबब देती हैं। उन पुराने दौर से लेकर तमाम खूबसूरत यादों को आज के दौर में लाकर फिर से जीने का एक मौका देती हैं। इसीलिए यादें शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनती हैं, और उस दौर में जब भी कभी वो भूला लम्हा याद आता है तो यकीन मानिए शिद्दत से याद आता है। 11:32 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

0: बहुत याद।
1: सच है ये बात कि इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त क्यों ना कर ले, लेकिन जिससे उसने प्रेम किया है वो उसकी यादों से कभी नहीं बच सकता। उसका ख्याल रहता है हर वक्त आपके साथ, आपके पास। भले ही वो जिंदगी में हासिल ना हो सका हो, लेकिन यादों में वो हमेशा हासिल रहता है। शायद

इसलिए क्योंकि वास्तविक प्रेम शरीर नहीं बल्कि आत्मा का स्पंदन जो है, और इसीलिए सिर्फ एक जन का नहीं बल्कि जन जन का बंधन भी कहा जाता है। जहां प्रमाण नहीं भरोसा बोलता है, जो रहता है आज भी कल भी और युगों युगों तक भी।

तो अगर ऐसे में मैं आपसे ये कहूँ कि मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि मोहब्बत असल में खामोश इबादत है तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। मोहब्बत वो धुरी है जिस पर पूरी कायनात टिकी है। मोहब्बत जो किसी इंसान से भी हो सकती है, कभी किसी चीज़ से भी हो सकती है, खुद से हो सकती है या फिर इस खूबसूरत कुदरत से भी हो सकती है। कहते हैं कि मोहब्बत का दौर जब गुजरता है ना दिल की गलियों से तो यकीन मानिए आप खुद को पूरा महसूस करते हैं। मोहब्बत का पहला कतरा जब दिल में उतरता है तो ज़िंदगी मुकम्मल सी लगने लगती है, इतनी मुकम्मल कि जहाँ वो सिर्फ मोहब्बत नहीं रहती बल्कि इबादत बन जाती है। कैसे बताऊँ मैं कि तुम मेरे लिए क्या हो, कैसे बताऊँ मैं कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम मेरी ज़मीं मेरी धरती मेरा आसमां हो, तुम याद हो तुम बात हो, तुम दिन हो मेरे तुम रात हो, तुम्हें पाकर दिल ने जो सुकून पाया तुम वो सौगात हो, हाँ तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा तुम ही मेरी कायनात हो। और जब कभी दिल में ये ख्याल उठे तो फिर मान लेना चाहिए कि मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं रही

लगे इसका सफ़र उतना ही लंबा और गहरा है। मोहब्बत सिर्फ किसी को पा लेना नहीं है, वो जो रास्ते से में चलते हुए किसी की याद में मुस्कुरा देना है ना, वो भी मोहब्बत है। किसी की परवाह में खुद को भूल जाना मोहब्बत है। इस सफ़र में कभी धूप तो कभी छांव भी मिलती है, लेकिन याद रखिए हमेशा इस बात को कि जो मुसाफिर मोहब्बत की राह पर एक बार निकल पड़ता है ना, वो फिर कभी खाली हाथ नहीं लौटता। या तो उसे हम सफ़र मिलता है या फिर ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा, वो फ़लसफ़ा जो कभी तेज़ रफ्तार तो कभी धीमे कदमों से ज़िंदगी को जीने का हुनर देता है, वो फ़लसफ़ा जिसके बोर्ड पर हर बार हम कुछ नया सीखते हैं राहों पर चलते चलते।

तो रात का एक खामोश पहर अब अपनी ढलान पर है, लेकिन रजनीगंधा की खुशबू अब भी मानो हवा में तैर रही है, जैसे हमसे कह रही है कि वक्त कम है, नफ़रतें छोड़िए, ज़िंदगी को मोहब्बत के दौर में लेकर चलिए, वो मोहब्बत जिससे प्यारा शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ज़रूरत है, दरकार है तो उस मोहब्बत को समझने की, अक्सर जिसे हम यूं ही ज़ाया कर देते हैं। तो चलिए थामिए ज़िंदगी का हाथ एक बार फिर से पूरी सच्चाई के साथ और जी लीजिए उस पल को जो आज के दौर में है। तो आज के रजनीगंधा में बस इतना ही, अपने भीतर की खुशबू को जगाए रखिए और आपसे होगी इसी उम्मीद पे वापस मुलाकात फिर किसी दिन किसी और रोज़ की खामोश पहर में, कुछ और अनकही बातें आपके साथ बांट सकेंगे हम। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, ज़िंदगी से प्यार कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए ज़िंदगी में प्यार से बढ़कर और प्यार से बेहतर कुछ भी नहीं। तब तक जब तक हम वापस मिलें, इसी प्यार को अपने दिल में सहेज कर रखिए। शुभ रात्रि, शुभ बखैर।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 2

डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा और ये सामान्य से लगभग 2 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त 7 बजे होगा। इसी के साथ ये समाचार